परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आस्था के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको आस्था।
1: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ अहम खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के समाचारों में। घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने के लिए डोमेस्टिक अब्यूज बिल लेकर आ रही है ये नया कानून। मौजूदा प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जगह लेगा और घरेलू हिंसा से

0: बदलते स्वरूपों को ध्यान में देखा जाएगा। इसके तहत शारीरिक हिंसा के साथ साथ आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन और अन्य संचार उपकरणों के उपयोग को लेकर बनी जो स्थिति है उसको दूर करने के लिए सरकार कानून की समीक्षा करेगी। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि रोड ट्रैफिक एक्ट और उससे जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन लाए जाएंगे ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हैंड्स फ्री डिवाइस और गाड़ी में लगे कम्युनिकेशन जो सिस्टम का उपयोग ड्राइविंग के दौरान किया जा सकता है या नहीं। सरकार ने निजी प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए ग्रांट इन एड स्कीम में बदलाव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी खर्च कम करना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और कर्मचारियों की नौकरियां सुनिश्चित करना तथा निःशुल्क प्री प्राइमरी शिक्षा को जारी रखना है। कैबिनेट ने कल नोट किया कि मॉरिशस में वर्तमान में 8,975 बांग्लादेशी कामगार कार्यरत हैं। इसके अलावा भारत से 15,840, नेपाल से और 14,821 और मडागास्कर से 9,995 कामगार देश में काम कर रहे हैं। वक्वा, क्यूपिप और सैंपिया के निवासियों के लिए पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव लाया जा रहा है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी यानी CWA ने घोषणा की है कि इन तीन इलाकों में पानी वितरण के लिए नए समय 17 जून से लागू होंगे। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है और पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को आज रात्रि से प्रभावित करने लग जाएंगे। सुबह के दौरान केवल ऊंचाइयों पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है, अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर आज दोपहर बाद वर्षा हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगे। हवा हल्की बहेगी, पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में नहीं जाएं। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 23 से 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहिली इलाकों पर 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:42 पर हुआ है और सूर्यास्त होगा शाम को 5:37 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
1: Your news on NBC Play. NBC Play.
2: Center 94. North South 95.6. 95.6. East West 98.2. 98.2. You are listening to your RM3 Radio.

कर रही हैं। महफिल हम्द व नात का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करने जा रहे हैं। मसनद अहमद की रिवायत है, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए 1000 आयात की तिलावत करे, उसे क़यामत के दिन अम्बिया, सिद्दीकीन और शुहदा और सालेहीन के साथ लिखा जाएगा। तिलावत कुरान मजीद समात फरमाएं।

फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला के ज़िक्र के सिवा ज़्यादा गुफ्तगू न करो, क्योंकि अल्लाह ताला के ज़िक्र के बग़ैर ज़्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बाइस है, और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर होता है। बहवाला तिर्मिज़ी शरीफ।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील किया जहां उसकी इज्जत की जाती थी, अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां वो अल्लाह की मदद चाहता होगा। बहवाला सनन अबू

हज़रत उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो शख्स आप पर सिद्क़े दिल से ईमान लाए और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की गवाही दे, तो आप उसके दिल में अपनी मुलाकात का शौक़ डाल दीजिए, उसके लिए मौत आसान कर दीजिए और उसको दुनिया का सामान बकदरे ज़रूरत फराहम कीजिए।

हो। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तूने रहमत की नज़र फरमाई, तो वो सआदतमंद हो गए। जिन्होंने तेरा ज़िक्र किया तो दिल मुतमईन हो गए, और जिन्होंने तुझ पर भरोसा किया तो उनके लिए काफ़ी हो गया। अगर हमारे दिलों में कोई खौफ हो तो उसे अमन व मोहब्बत से बदल दे, और अगर हम में कमज़ोरी हो तो हमें कुव्वत अता फरमा, और अगर हमारी दुआएं हलाल हों तो हमें उनकी कबूलियत की खुशखबरी अता फरमा। सामईन कराम, सवाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। तकनीकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

0: जज्बा।
1: कसा काय मंडळी?
2: कसा काय मंडळी?
3: कसा काय मंडळी? कसा काय मंडळी?

0: Club Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से सादर नमस्ते. आपका हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में जो है भक्ति में शक्ति. जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ विदिता और आज शनिवार का पवित्र दिन है. ये दिन हमें धैर्य, सेवा और कर्म की महत्व सिखाता है. जीवन में कभी कभी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन भक्ति और विश्वास हमें हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देते हैं. याद रखिए, भगवान पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता. हर प्रार्थना, हर अच्छा कर्म और हर सच्चा प्रयास अपने समय पर फल ज़रूर देता है. तो आइए आज का ये दिन जो है सकारात्मक सोच और प्रेम के साथ शुरू करते हैं.

नमस्कार श्रोताओं, इस समय आप भक्ति में शक्ति कार्यक्रम सुन रहे हैं। वैसे तो शनिवार का दिन वीर हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। हनुमान जी हमें बल, बुद्धि और निष्ठा का पाठ पढ़ाते हैं। उन्होंने हमेशा सेवा को अपना धर्म माना है और कभी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। अगर हम भी अपने जीवन में विनम्रता और समर्पण को अपना लें तो सफलता अपने आप हमारे कदम चूमेगी। आज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और अपने मन को शांति और ऊर्जा से भर दें। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।

तो श्रोताओं, इस समय आप वेदिता का साथ दे रहे हैं। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं होता, बल्कि अपने मन में अच्छाई और दया को जगाना भी होता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा हर काम सफल होने लगता है। आज एक संकल्प लीजिए कि किसी एक व्यक्ति की मदद आज आप जरूर करेंगे। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी तो एक महान सेवा ही है। भक्ति वही है जो मन को पवित्र और जीवन को सुंदर बनाता है। अगला भजन चलिए सुनते हैं।

रेडियो मनोरंजन पर इस समय विदिता के साथ आप कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब कर्म और भक्ति का संगम होता है ना, तब जीवन में अद्भुत सफलता मिलती है। आज का दिन याद दिलाता है कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर सच्चा प्रयास भगवान तक जरूर पहुंचता है, इसलिए आज अपने हर काम को पूरी लगन और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।

तो प्रिय श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति में शक्ति। मैं हूँ विदिता, आपका साथ दे रही हूँ। पता है श्रोताओं, कभी कभी हम अपनी प्रार्थना का परिणाम तुरंत देखना चाहते हैं, हमें बड़ी जल्दी होती है, लेकिन भगवान का समय हमेशा सबसे उत्तम होता है। भक्ति हमें धैर्य रखना सिखाती है। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह अच्छे कर्म और सच्ची प्रार्थना को भी फल देने में समय लगता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहिए। चलिए कार्यक्रम को आगे ले चलते।

चलिए श्रोताओं, आज की इस तेज भागती दौड़ती जिंदगी में सबसे बड़ा धन पता है क्या है? अंतरिक्ष शांति। भक्ति हमें वही शांति प्रदान करती है। कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके भगवान का स्मरण कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। जब मन शांत होता है तब हम सही निर्णय ले पाते हैं और जीवन को अधिक सुंदर बना सकते हैं। चलिए भाई, भक्ति में ही तो सच्ची शक्ति है, उसी शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं अगले भजन के साथ।

तो श्रोताओं, इस समय आप विजेता के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति। आज एक पल के लिए ना रुककर आप ईश्वर से उन सभी वरदानों के लिए धन्यवाद जरूर कहिएगा जो आपको प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य, परिवार, मित्र, जीवन के अनमोल अवसर, जी बिल्कुल, ये सब कुछ तो है आपके पास, तो ईश्वर को धन्यवाद कहना तो बनता ही है ना। और अगर हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं कहेंगे तो ईश्वर हमारी बाकी जो इच्छाएं उनको पूरा कैसे करेंगे, है ना। इसीलिए धन्यवाद कहना जरूरी होता है। वैसे ही जैसे हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप प्रेम से हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और हमारी बातों को अपने जीवन में उतारते भी हैं। आशा करती हूँ कि ईश्वर आप पर अपना कृपा बनाए रखे और जो भी आपके मन में दुख है, दर्द है, उनको खत्म करते हैं।

तो प्रिय श्रोताओं, इस पवित्र शनिवार पर एक छोटा सा संकल्प हम लेंगे, हम सत्य बोलेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे और जरूरतमंद की मदद करेंगे। भक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए। श्रोताओं, हर एक अच्छा कर्म एक प्रार्थना के समान है। भगवान हमें सद्बुद्धि, शक्ति और दया प्रदान करें, इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बड़े प्रेम के साथ आपने हमारे इस कार्यक्रम को सुना, भक्ति में शक्ति। बस आपको आपके भक्ति में शक्ति मिले, ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। विदिता आपसे आज्ञा चाहेंगे, हमें बस इतना ही प्रार्थना करना है कि आप हमेशा खुश रहें। आज्ञा दीजिए। शुभ

一段旋律暂歇，音乐旅途继续向前，不同曲风轮番登场，在音符流转间邂逅多样听觉风景，请再继续欣赏歌曲。

朋友，今天的音乐风景线就到这里，跟大家说再见了。愿美好旋律常伴左右，感谢收听，祝听众朋友周末愉快，我们下次再会。

0: सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। घरेलू हिंसा से जुड़े कानून को और मजबूत बनाने के लिए सरकार डोमेस्टिक अब्यूज बिल लेकर आ रही है। ये नया कानून मौजूदा प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जगह लेगा और घरेलू हिंसा के बदलते स्वरूपों को ध्यान में रखेगा। इसके तहत शारीरिक हिंसा के साथ साथ आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा। पीड़ितों और उनके बच्चों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने, दोषियों को जवाबदेह बनाने तथा घरेलू हिंसा की घटनाओं को कम करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार पुनर्वास कार्यक्रमों और अदालत के आदेशों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधान भी लागू करेगी। वहीं महिला हत्या और वैवाहिक बलात्कार को अलग अपराध के रूप में शामिल करने के लिए भी कानूनी संशोधनों पर काम चल रहा है। निर्यात को बढ़ावा देना जम्मू और कश्मीर की आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बढ़ते दौर में देश पारंपरिक बाजारों के साथ साथ नए अवसरों की भी तलाश कर रहा है। अफ्रीका जैसी उभरती मंडियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जबकि उच्च मूल्य वाली सेवाओं के निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से EDB विभिन्न पहलें उठा रहा है, जिनमें अफ्रीकी देशों में व्यापारिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, निर्यातकों को सहयोग तथा नए सहायता मंचों की स्थापना शामिल है। ये प्रयास मॉरिशस के व्यवसायों को नए बाजारों तक पहुंचाने में मदद कर रही है। वाक्वाक्यूपी पर सैंपिया के निवासियों के लिए पानी की आपूर्ति के समय में बदलाव। CWA ने ऐलान किया है कि इन तीन इलाकों में पानी वितरण के नए समय 17 जून से लागू किए जाएंगे। यह निर्णय जल भंडार में कमी की स्थिति को देखते हुए लिया गया है, जिसका उद्देश्य उपलब्ध जल संसाधनों का अधिक प्रभावी, संतुलित और न्याय संगत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। CWA के अनुसार इस नई व्यवस्था से प्रभावित इलाकों में पानी की आपूर्ति को ढंग से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं। उनकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में ऐतिहासिक शुरुआत के बाद उनकी कुल संपत्ति $1 trillion के आंकड़े को पार कर गई है। नास्दाक में सूचीबद्ध होने के बाद स्पेस एक्स का बाजार मूल्य लगभग $2.2 trillion तक पहुंच गया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एलन मस्क की कुल संपत्ति अब लगभग $1.11 trillion आंकी गई है, जिससे उन्होंने देश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। सूरतन रोड बुआशेरी में 57 साल के 57 years old के कृष्णा देवी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें संजय के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनकी अर्थी आज सपहर के 3 बजे उनकी पत्नी फिया देवी के मकान बुआशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांड बुआ की शमशान भूमि ले जाए जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। सीते रामपुर कॉम्बेटू ब्रिटानिया में 77 साल की 77 years old की चंद्रमणि भुजावन पैदाइश नाम बिहारी। लोग उन्हें दादी लाकौंसिन अमृता के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान ब्रिटानिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तैयार की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मामूलेन प्लेनमानियों में

0: 51 ईयर्स ओल्ड के 51 साल के संदेश कुमार मलू की मृत्यु हो गई है। संदेश कुमार मलू की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 3:30 बजे उन्हीं के मकान प्लेनमान्यो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमान्यो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: घड़ी मिला लीजिए, दिन के 12:05 हुए हैं।
5: सुहाना सफर।
4: हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को अनीता का प्यार भरा नमस्कार। हेलो और आदाब। 13 जून 2026 दोस्तों, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन, जहां हम सेट हो गए हैं पूरे रूप से आपका मनोरंजन करने के लिए। सुहाना सफर कार्यक्रम, जहां आप ही लोगों के पसंद के गाने होंगे और ऑफ कोर्स कुछ हमारी बातें भी होगी, और बेशक आपके मैसेजेस को कैसे भूल सकते हैं। वेल, आशा है कि शानदार रूप से आप लोगों का जो वीकेंड है शुरू हो चुका है, और इसको और हसीन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ज़रूर दीजिएगा। स्टे ट्यून ऑन रेडियो मनोरंजन। अब चलिए बढ़ते हैं एक खूबसूरत गाने की ओर, किशोरदा और लता जी की आवाज़ों में।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: यस दोस्तों, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और इन पुराने गानों को सुनते ही मानो जो है समय थम सा गया है। किंग एंड क्वीन ऑफ मेलोडी किशोरदा लता जी, सच ए स्वीट मेलोडियस रोमांटिक सॉन्ग। यह दर्द भरा नगमा 1974 की फिल्म आपकी कसम से लिया गया है। इस फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज ने भावपूर्ण अभिनय किया था और गीत को गाया था किशोरदा ऑफ कोर्स लता जी। संगीत आरदे बर्मन का और यह गीत एक टूटे हुए रिश्ते की बेचैनी और अहम की चुप्पी को बयां करता है। दो लोग जो हैं पास होकर भी दूर हो गए हैं और रात करवतों में कत रही है, ना नींद है ना सुकून है, दिल करता है कुछ बोल दूं पर जुबा जो है साथ नहीं देती। एक ऐसी रात की कहानी जहां प्यार अब भी जिंदा है पर घमन ने दरार बना दी है। इसमें संगीत और भावनाओं का जो अद्भुत संगम है उसका क्या कहना। यस दोस्तों, करवटें बदल रही हूँ मैं और यहाँ पर आजकल जो है वर्ल्ड कप चल रहा है और कई लोग जो है नींद उड़ गई है तो करवटें बदल रही है और मैच देखते देखते करवटें बदलते बदलते वे सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसने गोल क्यों नहीं डाला। इस प्रकार से आप लोग भी करवटें बदल रहे हैं आजकल। तो चलिए एक और खूबसूरत गाने की ओर बढ़ते हैं। फिल्म है स्वीकार किया मैंने,

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, फिल्म स्वीकार किया मैंने चांद के पास जो सितारा है। वंस अगेन किशोर दा और लता जी की आवाज़ों में चांद के पास जो सितारा है, और उनकी आवाज़ें जो हैं जिन्होंने बॉलीवुड में रोमांस को नई परिभाषा दी, उनकी जादुई आवाज़ों की दुनिया में मैं तो खो ही गई। दोस्तों काफ़ी लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कई दिनों के बाद किसी खास से बात हुई। ऑफ कोर्स नवीन जी मोताय ब्लॉन्श से साथ दे रहे हैं, और कितने दिनों के बाद आपकी आवाज़ हमने सुनी, और आपकी फरमाइश है कि आप फिल्म नमक हलाल का गाना सुनना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स यू आर फैन ऑफ आशा भोंसले जी, तो चलिए सुनते हैं रात बाकी बात बाकी आशा जी और बपी लहरी की आवाज़ों में।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, 12:28 हो चुके हैं और शीला जी जो हैं वो इनमें से साथ दे रही हैं और आप कहती है कि आज आपकी बहन अनीता किशनदयाल का जन्मदिन है, इसलिए आप उनके लिए एक गाना मांग रही है और साथ ही साथ जो है उनके बेटे हैं कमलेश, केविन, साथ ही साथ बहुएं हैं दीना है, संगीना है और सभी ग्रैंड चिल्ड्रन की ओर से, मकुना परिवार की ओर से, किशनदयाल परिवार की ओर से और बोला परिवार जो पेचित्राफे के रहने वाले हैं उन सब की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद प्यार बरसा रहे हैं अनीता जी के लिए। आज आपका जन्मदिन है और हम यही कहेंगे कि आपका यह दिन जो है वो खुशहाली से भर जाए। तो चलिए, आपके लिए एक प्यारा सा गाना है, फिल्म मस्जिद का गाना, तो चलिए इस गाने को हम भी सुनते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, अगर अभी आप अभी तक हमारे साथ कनेक्टेड नहीं हैं तो जुड़ जाए यहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर अभी से लेकर 2 बजे तक। एंड ऑफ कोर्स योर मैसेजेस ऑन 5250-6200 पर और फोन कॉल्स ऑन 4028070 पर। और घोंगुब से श्यामा जी जो हैं जुड़ गई हैं और आप कहती है कि आप भी जो है करवटें ले रही हैं, आँखों से नींद ओझल हो गई है और आँखें जो है बोझल बन गई है और आप सुनना चाह रही है फिल्म गूंज उठी शहनाई का प्यारा सा गाना। और यही गाना जाएगा खासकर आपके भाई राम प्रकाश के नाम, भाभी नम्रता हैं, नेफ्यूज़ हैं युधिष केशव, साथ ही साथ आपकी प्यारी सहेलियां हैं वीना खामफल जी, विश्वानी दुखी जी, नंदिनी ओकलू, तो उन सब के नाम। और जिन लोगों को यह गाना पसंद है उन सब के नाम यह गाना जाता है।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, इस गाने में मानो प्रेमी प्रेमिका के बीच जो विरह है, वह विरह की भावना है, वह झलक रही है। तो चलिए यहाँ पर फुलवंती जी वाकवा से, उन्होंने हमें फ़ोन किया और आप जो हैं अपने भाई को बहुत याद कर रही है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और उनके नाम एक प्यारा सा गाना डेडिकेट करना चाह रही है, फिल्म पुष्पांजलि का गाना। ऑफ कोर्स जो चले जाते हैं उनको हम सिर्फ याद के माध्यम से उनको महसूस कर सकते हैं, उनके साथ बिताए लम्हे को फिर से जी सकते हैं। तो चलिए उनके नाम यह प्यारा गाना, और हम यही कहेंगे कि खुराज आपको, और उनके नाम यहाँ श्रद्धांजलि गीत।

दोस्तों, कहा गया है कि जिंदगी में जो भी हो जाने दो यार, किसी भी चीज या इंसान को पकड़ कर नहीं बैठना है। किसी ने दिल दुखाया तुम्हारा, किसी ने ऐन मौके पर साथ नहीं निभाया तुम्हारा, तो कोई बात नहीं, जाने दो। जो साथ चले उसे साथ लेते चलो, और जो साथ ना चलना चाहे उसे जाने दो। जी दोस्तों, रिव्या जो रामपो से माला जी साथ दे रही है और आपकी फरमाइश है फिर महबूबा का गाना किशोर दा की आवाज़ में, और यही गाना जाएगा सत्यम के नाम। शिव हैं, कनील हैं, कनिष हैं, कविश हैं, किरण हैं और केविन के नाम।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, सुहाना सफर कार्यक्रम चल रहा है रेडियो मनोरंजन पर अनीता के साथ, और यहाँ पर बिना जी फ्लैग से हैं, और आप फिल्म अनारी का गाना सुनना चाह रही हैं, तेरा जाना। तो चलिए यह गाना आपके नाम।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर
1: जी। दोस्तों अगला गाना अनीता जी की ओर से, अनीता लाल जी की ओर से, जो मोतालबे से साथ दे रही हैं। और आप कहती हैं आज आप घर के बाहर घूमने गई हुई हैं और आप सुनना चाह रही हैं पत्थर का सनम। क्यों जी, क्या हुआ? इश्क में किसी ने धोखा दिया इसलिए आप कह रही हैं पत्थर का सनम। तो यह गाना जाएगा विशेषकर किसी खास के नाम, साथ ही साथ आपकी बहन है करुणा, अमृता और दोस्तों के नाम। तो चलिए सुनते हैं लता जी और मुकेश जी को, और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर, और उसके बाद कार्यक्रम जारी।

0: कैबिनेट की बैठक लगी। मंत्री परिषद ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल को राष्ट्रसभा में पेश किए जाने पर मंजूरी दी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानून को निरस्त करना और उसकी जगह एक आधुनिक और अधिक व्यापक तथा घरेलू हिंसा के पीड़ितों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर कानूनी ढांचा लागू करना है। रोड ट्रैफिक एक्ट और उससे संबंधित नियमों में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इन संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन चलाते समय हैंड्स फ्री उपकरणों और इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम के उपयोग की अनुमति स्पष्ट रूप से दी जाए। इसका मकसद इन उपकरणों को लेकर मौजूद किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर करना है। निजी पूर्व प्राथमिक स्कूलों के लिए GIA यानी ग्रांट इन एड कार्यक्रम की समीक्षा करने वाली अंतर मंत्रालय समिति की सिफारिशों को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। इन सिफारिशों में GIA योजना का लाभ प्राप्त करने वाले स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान जारी रखने का प्रावधान शामिल है। विदेशी समाचारों में वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशन राउंड में कल कनाडा और बोस्निया के बीच ड्रॉ रहा मैच 1-1। वहीं दूसरी ओर लॉस एंजलिस के स्टेडियम में यूएसए की टीम ने पराग्वे को 4-1 से हराया। आज रात ग्रुप बी में कतर का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। रात 11 बजे ये मैच खेला जाएगा। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Shok Samachar Sunye. Docteur Benedict Rode, l'espérance Pitomé. Docteur Benedict Rode, l'espérance Pitomé, qui a envie Salki, 91 years old, qui, Shmati Paidama, Ramana, Shmati Paidama, Ramana, Pedashinam, Durgana, or Jo Saraswati ki naam se zyada jaane jaate the, unki mrityu ho gayi hai, arthi, aaj dopahar 2:30 baje, unke bete, मनोरंजन रामाना के मकान डॉक्टर बेनेडिक रोड लिस्पेरेंस पीटों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। सीवरतन रोड बुआशेरी में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णा देवी जो संजय के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनकी पत्नी फिया देवी के मकान सीवरतन रोड बुआशेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। मामू लेन प्लानमायो में 51 साल के 51 ईयर्स ओल्ड के श्री संदेश कुमार मलू जो संदेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके मकान मामू लेन प्लानमायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM। नंबर 40 एवेन्यू लिए 4 बोन में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री दयाना अपाडू जो अविनाश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी सुपहर 3:30 बजे उनकी माँ नीला अपाडू के मकान नंबर 40 एवेन्यू लिए 4 बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल माँ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमशन टू डेट 3:30 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, 1:05 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन पर अनिता के साथ। और यहाँ पर हमारा दूसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है। ए वार्म वेलकम एवरीवन। एंड इस एक घंटे के सफर में हम यही कोशिश करेंगे कि आपका मैसेजेस हम पढ़ेंगे और आपके गाने बजवाएंगे यहाँ पर, जिससे आप लोग जो हैं इनको एंजॉय कर सके और अपने शनिवार को खूबसूरत बना सके। और यहाँ पर जो हैं बेल्जियम से प्रकाशवती जी

साथ दे रही है और आप कहती है दैट यू आर फाइन, द वेदर इज कूल 16 डिग्रीज और आप की फरमाइश है ये तेरा घर ये मेरा घर फिल्म साथ साथ ऑफ कोर्स जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह की आवाज़ों में।

0: सिखाना सफर सिखाना सफर
1: जी दोस्तों, जहां परिवार में प्यार हो, एकता हो, सद्भावना हो, वहां पर वो घर हसीन ही होता है। और लिस्पेरेंस ट्रेबुशे से मनोज सोहन जी साथ दे रहे हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का गाना, और यही गाना जाएगा आपकी प्यारी पत्नी नजीमा के नाम, पूरे सोहन परिवार के नाम, गाय सिंह आश्रम में जितने भी लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उन सब बुजुर्गों के नाम, जितने भी लोग अभी अस्पताल में हैं उनको खुराश देने के लिए उनके नाम यह गाना, और साथ ही साथ आपके भाई शिवन सोहन के नाम यह गाना जाता है, और सभी सुनने वालों के नाम। चलिए सुनते हैं यह गाना।

0: खाना सफर।
1: जी दोस्तों, जो जीवन में हार नहीं मानता है वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। और यहाँ पर हमने बात की विश्वानी दुखी जी से, कौते माँ से साथ दे रही हैं, और आपसे पहली बार बात करके बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू आपने फ़ोन किया। और कौफुखो से आंटी जी जो हैं, आप फिल्म गुमराह का गाना सुनना चाह रही हैं, यही गाना जाएगा आपके पतिश्वर लाल के नाम, बच्चों के नाम, सभी लिसनर्स के नाम, और यही गाना जाएगा देवयानी जी रिश्मा फ्लाग से आप साथ दे रही है, और यही गाना जाएगा पूरे छेड़ी और देवधारी परिवारों के नाम।

जी दोस्तों, कमला दीनू जी का फ़ोन आया मोहताबा से और आप कहती है कि आज सत्यावती मुसाई जी का जन्मदिन है, आज आप जो हैं 70 साल की हो गई है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू दादी। और आपके पति सूर्यदेव की ओर से, बेटा बहू बच्चों की ओर से जो हैं ढेर सारा प्यार आशीर्वाद, पूरे रामधानी रामरेखा मुसाई परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। साथ ही साथ सागर बैरव का भी जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं मामा की ओर से, पापा की ओर से और विशेषकर मौसी कमला की ओर से, पूरे रामजावन परिवार बोरप परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और यही कहेंगे तुम जियो हजारों साल।

जी दोस्तों, एक प्यारा सा मैसेज आया है अनीता जी की ओर से, फिका फ्लक से, और आप कहती हैं कि प्यारे प्यारे गाने चला रहे हैं। थैंक यू जी। और फिल्म बेताब का गाना, विशेषकर आपके पति राज के नाम बेते अंतिश अंकुश बहु मनीषा सीमा पोती हिमेशा आध्या पोते अंश, सभी रेडियो मनोरंजन की टीम के लिए और लिसनर्स के नाम यह प्यारा गाना।

जी दोस्तों, हम आपको भी याद करते रहते हैं और अंसनाल से वीना जी जुड़ गई है हमारे साथ और आपके नाम तथा पूरे नंदू परिवार के नाम फिल्म खानदान का गाना

जी दोस्तों, हरी जी बुबासन से जुड़ गए हैं और आप अपनी कली को फिल्म कश्मीर की कली का गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं, तो यह गाना जाता है बेशक अनु के नाम, दीवाना हुआ बादल।

पिता, देखा उसे पहली दफा, खो गया होश मेरा, पता कैसे बताऊं कैसा लगा, दिल रुक सा गया, सांसें थम सी गई, चलने लगी और ये हवाएं, पहली दफा ऐसा लगा, ऐसा लगा, हाँ जी हाँ ऐसा लगा, अब तो मुझे चैन कहाँ, नींद कहाँ, कहाँ है जान, धड़कनों की एक ही राग, ओ मेरी जान, ओ दिलरुबा, पहली दफा ऐसा लगा, ऐसा लगा, हाँ जी ऐसा लगा, कभी नहीं ऐसा सोचा था, उसकी नजर और प्यारी सी अता, कर जाएगी मुझे यूं फना, खो गया होश मेरा, पता पहली दफा ऐसा लगा, ऐसा लगा, हाँ जी हाँ ऐसा लगा। जी दोस्तों, अगला गाना अब जाएगा अनीता जी के नाम, जो पिछली वेजे से सुन कार्यक्रम को सुन रही हैं। आपकी फरमाइश है बात एक रात की, और यही गाना जाएगा आपके पूरे परिवार के नाम। आपकी तीन बेटियां हैं, शीतल, काजल, दीक्षा, पति बलदेव हैं, और पूरे जरी परिवार के नाम।

जी दोस्तों, हमारा तो हम सफ़र मिल गया, आप लोग हम सफ़र बन के हमेशा साथ देते हैं, थैंक यू इसके लिए जी। और यहाँ पर सरिता जी जो हैं, आपका प्यारा सा मैसेज आया है, थैंक यू, आपने कहा कि आपकी प्यारी प्यारी आवाज़ से आई बाहर, थैंक यू इसके लिए जी। और आप सुनना चाह रही है फिल्म सफ़र का गाना, तो चलिए यह गाना आपके नाम, आप गुडलैंड से हैं और सभी लिसनर्स के नाम।

0: सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, एक अंतिम गाना रह गया है और यह गाना जाएगा राधा जी के नाम जो मोचिदा से साथ दे रही है। यह गाना आपके नाम, और इसी गाने में हम सचिन जी का नाम जोड़ रहे हैं। समय की कमी के कारण आपका नाम भी इसी गाने में जोड़ रहे हैं। फिल्म है अनारी और ठीक 2 बजे आप सुन पाएंगे समाचार। और हमारे बाद आएगा अलका जी आएगी और कार्यक्रम होगा इतिहास के झरों को उससे और आपने

ना साथ दिया, प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनीता को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह को, और टेक केयर, नमस्कार।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मंत्री परिषद यानी कैबिनेट की बैठक कल लगी। डोमेस्टिक अब्यूज बिल को राष्ट्रसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दी गई है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानून को निरस्त करना और उसकी जगह पर एक आधुनिक और अधिक व्यापक तथा घरेलू हिंसा के पीड़ितों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर कानूनी ढांचा लागू करना है। रोड ट्रैफिक एक्ट और उससे संबंधित नियमों में संशोधन को लेकर कैबिनेट की बैठक पर इस पर गौर किया गया। इन संशोधनों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वाहन चलाते समय हैंड्स फ्री उपकरण और इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम के उपयोग की अनुमति स्पष्ट रूप से दी जाए। इसका मकसद है इन उपकरणों को लेकर मौजूद किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर करना। मॉरिशस और बांग्लादेश की सरकारों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके तहत बांग्लादेशी अधिकारियों द्वारा एक सार्वजनिक संस्था की स्थापना की जाएगी जो केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। श्रम बल की कमी वाले क्षेत्रों में भर्ती से संबंधित सभी प्रक्रियाएं इसी एजेंसी के माध्यम से संचालित की जाएंगी। गौरतलब है कि मॉरिशस में वर्तमान में लगभग 9,000 बांग्लादेशी मूल के श्रमिक काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशन राउंड में कल कनाडा और बोस्निया के बीच ड्रॉ रहा 1-1। वहीं दूसरी ओर लॉस एंजलिस के स्टेडियम में यूएसए की टीम ने पैराग्वे को 4-1 से हराया। आज ग्रुप बी में कतर का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। रात 11 बजे ये मैच खेला जाएगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
4: आइए जानते हैं NBC Play पर New World Sports Pack में सब्सक्राइब करने का तरीका। Step 1. सब्सक्राइबर को पहले NBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप 2. अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द NBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा NBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
3: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
4: इतिहास के झरोखों से

13 जून घड़ी मिला लीजिए 2:07 होने को है। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं सुमिता की ओर से। प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। इतिहास के झरोखे से इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपकी सेवा में, आपका साथ देने के लिए। कैसे हैं आप सभी? शनिवार का दिन कैसे बीत रहा है? ऐसे तो शनिवार का दिन सभी के लिए, ज़्यादातर सभी के लिए बहुत अच्छे से बीतता है, क्योंकि हम घर पर होते हैं, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और ऐसे में हमारे साथ भी जुड़ गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास के झरोखे इस प्रोग्राम में आज मैं आई हूँ आपका साथ देने के लिए। अलका जी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज हम किस पर बात करने वाले हैं आप सोच ही रहे होंगे, तो चलिए आपको बता देते हैं। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड से जुड़ी एक अभिनेत्री के बारे में। जी हाँ, आपको तो पता ही है इतिहास के झरोखे इस कार्यक्रम से हम किसी न किसी पर्सनालिटी पर बात करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए होते हैं। कभी कभार कोई विशेष विषय भी हम लेकर आते हैं। तो अभी के लिए जो है आज हम बात करेंगे नरगिस जी के बारे में। 1 जून 1929 को इनका जन्म हुआ था और 3 मई 1989 को ये चल बसी थी। ऐसे इनका जो नाम था जन्म के समय वो था फातिमा रशीद, और इन्हें निर्मला दत्त के नाम से भी जाना जाता था। और ऑब्वियसली नरगिस जी कौन है इसे इसके बारे में तो हर कोई जानता ही है। बॉलीवुड की एक पॉपुलर अदाकारा है और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खासकर पुराने फिल्मों में रुचि रखता होगा नरगिस जी को नहीं जानता होगा, या नहीं इनके बारे में, या इनकी फिल्में हमने नहीं देखी होंगी। ऐसे नरगिस जी की बात करें तो सिर्फ ये एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियन भी रह चुकी है और हिंदी सिनेमा में इनका जो है बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ऐसे महज ये 6 साल की थी जब इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया था और 3 दशक तक जो है इनका करियर रहा है फिल्मों में। और इनके बारे में बात करें तो 1935 में आई थी फिल्म तलाशे हक, इस फिल्म से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इनके शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो 1 जून 1929 को फातिमा रशीद का जन्म हुआ था कलकत्ता में, बंगाल में। और इनके पिता अब्दुल रशीद थे और जो है उस समय के काफ़ी जो है प्रतिष्ठित परिवार से थे। और बाद में इनकी माँ थी, इनका नाम था जद्दनबाई, जो बनारस से थी और क्लासिकल संगीत में इनकी काफ़ी रुचि थी इनकी माँ की, और वो भी हिंदी सिनेमा से जुड़ी रही थी। नरगिस जी की माँ जब इलाहाबाद से कलकत्ता आई तो फिर उसके बाद नरगिस जी का भी फिल्मों में का जो सफ़र है वो शुरू हुआ, और बहुत ही कम उम्र से ही जो है इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। महज वो 6 साल की थी जैसे कि हमने आपको बताया। और इनके जो मामा है अनवर हुसैन, इनके एक दूर के मामा थे, वो भी फिल्मों में जो है एक्टिंग करते थे। इसी तरह से जो है इनके करियर की शुरुआत हुई थी और बचपन ही से नरगिस जी को भी फिल्मों में काफ़ी रुचि थी। चलिए अगर आप भी नरगिस जी के बारे में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बेशक आप सभी का स्वागत हम करेंगे। अभी के लिए इस खूबसूरत गाने के साथ जो है हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: चलिए रेडियो मनोरंजन पर इतिहास के झरोखों से इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं और आज नरगिस जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस महीने की पहली तारीख

को इनकी जन्मतिथि थी। ऐसे वो आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी जो फिल्में हैं, उनके जो गाने हैं, जब भी चलते हैं उनका ख्याल आ ही जाता है। तो हमने सोचा कि आज इतिहास के झरोखे क्यों ना इन्हीं पर आधारित रखा जाए। तो जैसे कि हमने आपको बताया 1935 की फिल्म तलाशे हक से इन्होंने जो है बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया था, जब ये महज 6 साल की थी, और वहीं से जो है इनका फिल्मी सफ़र भी कह सकते हैं शुरू हुआ। उसके बाद काफ़ी फिल्में इन्होंने की। फिर 1943 में जब ये 14 साल की थी, तब ये फिल्म तकदीर में नज़र आई थी, महबूब खान जी की फिल्म थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस सक्सेसफुल थी और इनको इनके किरदार के लिए बहुत ही सराहा गया था। सोचिए, महज 14 साल की थी तब इन्होंने अपनी पहली फिल्म की थी बतौर डेब्यू एक्ट्रेस। और उस समय जब हम 1930s प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उस समय फिल्मी करियर को, फिल्म को एज अ करियर के रूप में देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि हर कोई जो है इस करियर को उतनी पॉजिटिविटी से नहीं लेता था। और ख़ासकर एक लड़की होकर फिल्मी जगत में उस समय काम करना, सोचिए कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि लोगों की नज़र में ये पेशा सिर्फ मर्दों के लिए था और उतनी इज्जत से इस पेशे को उस समय नहीं देखा जाता था, क्योंकि एक कंटिन्यूस कमाई का ज़रिया नहीं था ये। जब भी आपको काम मिले तब मिले, और काम नहीं है तो फिर तब तो मुश्किल हो जाती थी। तो उस समय एक लड़की का उस उम्र में पहली फिल्म करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भी रहा होगा इनके लिए ऑब्वियसली। और पहली ही फिल्म के बाद इन्होंने, इन तकदीर के बाद जो है इन्होंने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और इनके जो है परफॉर्मेंस को बहुत ही सराहा गया। और फिर ये 1944 में फिल्म अनबन में नज़र आई, और उस समय बैक टू बैक इन्होंने काफ़ी फिल्में की, जैसे कि हुमायूं, जिसमें अशोक कुमार साहब इनके ऑपोजिट थे एज एक्टर। फिर वहीं पर ये माइथोलॉजिकल फिल्म रामायणी में भी नज़र आई। और उस समय की इनकी जितनी भी शुरुआती दौर की फिल्में रही, काफ़ी कमाल की रही, और ज़्यादातर फिल्में जो हैं सक्सेसफुल रही। 1948 से जो है इन्होंने राज कपूर जी के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया। और अगर जब हम नरगिस जी की बात करते हैं तो राज कपूर साहब का जिक्र होता है, और राज कपूर साहब की बात करते हैं तो नरगिस जी का जिक्र होता है, क्योंकि दोनों ही ऑन स्क्रीन लोगों को इतने पसंद आते थे कि क्या कहें। तो वो पहली फिल्म आग थी जहाँ पर इन दोनों ने पहली बार के लिए काम किया था, और फिल्म की कहानी भी बड़ी कमाल की थी, जहाँ पर ये एक बेसहारा औरत रहती है जो बाद में जाकर एक्ट्रेस बनती है। फिल्म जो है एवरेज थी, मतलब कि उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी उस समय बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत सराहा था। और वहीं फिर ये बाद में नज़र आई ट्रेजेडी फिल्म मेला में, और उसके बाद उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थी। और उस समय की फिल्में, उस समय कहाँ लोग उतनी फिल्में देखने जाया करते थे, तो एक वर्ग के लोग ही थे जो उस समय जाकर फिल्में देखते थे। तो अभी है जो हर कोई जो है मोबाइल से जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़ा है, सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, और फिल्में देखना अभी एक आम जीवन का हिस्सा है। लेकिन उस समय फिल्में देखने हम कहाँ जाते थे, कभी कभार एक फिल्म देख लेते थे। मुझे तो याद है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शायद स्टैंडर्ड 9 या 8 या 9 में थी जब मैंने पहली फिल्म थिएटर में देखी थी। तो चलिए आप भी बताइएगा अपना कुछ ऐसा अनुभव। और ऐसे आज हम नरगिस जी के बारे में बात कर रहे हैं, और उस समय की जो है पॉपुलर एक्ट्रेसेस के साथ साथ हाईली पेड एक्ट्रेस भी ये हुआ करती थी। और यहाँ पर जो है एक और गाना हम आप लोगों के नाम जोड़ते हैं, और फिर जो है इस इतिहास के झरोखे इस प्रोग्राम को हम आगे ले जाएंगे, कुछ और बातें जोड़ेंगे।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: यकीनन इतिहास की बात हम करें और मुड़कर ना देखें ऐसा तो हो नहीं सकता है। मुड़कर नहीं देखेंगे तो इतिहास को हम कैसे जान पाएंगे, इतिहास को हम कैसे पहचान पाएंगे। और चलिए यहाँ पर आज नरगिस जी पर बात हो रही है तो लग रहा है कि नरगिस जी के फैंस जो है हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे श्रोता से। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार सुमित जी।
1: नमस्ते राधा जी, कैसी है आप?
2: जी मैं अच्छी हूँ, आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है हमारी तो यादें ही ताज़ा हो गई।
1: जी जी

0: इतिहास के झरोखे में चाहे कोई भी अब हम ले लें कोई भी विभाग ले लें तभी रोचक ही होता है। अब आज आपने फिल्मों की बात की है तो नरगिस जी उस जमाने की जो एक्ट्रेसें होती थी ना नरगिस जी या कोई भी उनका पहनावा उनकी सादगी उनके बाल
1: जी
0: अनोखे थे
1: बिल्कुल। और नरगिस जी की बात करें तो उनकी जो सफेद सूती साड़ी होती थी
0: हाँ बहुत सुंदर दृष्टि थी। हाँ
1: ऐसे पहले कहा जाता था कि सफेद साड़ी नहीं पहना करते या क्या लेकिन हाँ, इन्होंने सफेद साड़ी को जो है काफी पॉपुलर किया था उस समय।
0: हाँ उन्हें अपना स्टार बना लिया था।
1: हाँ उसके बाद हम देखते हैं अन्य एक्टर्स जैसे श्रीदेवी को भी फिर सफेद साड़ी में से लिंक किया जाता था ना कि अच्छी लगती लेकिन वो नरगिस जी थी जहाँ तक हमें लगता है जिनसे इसकी शुरुआत हुई थी।
0: हाँ। और फिर उनकी जो फिल्में आई थी बहुत पुरानी वो चोरी चोरी खासकर राज कपूर और दिलीप कुमार जी के साथ
1: जी, जी,
0: वो
1: जी।
0: चोरी चोरी अंबर 420 उनके गाने भी बहुत ही फेमस हुए थे जैसे चोरी चोरी के तो सभी गाने
1: जी
0: बहुत मशहूर हुए थे। और हमारी बात जो है जब हम फिल्म देखने जाते थे अब सिनेमा घर की बात कर रही थी हमारे घर के पास सिनेमा घर था यहाँ मोचिदा में दुगा पागादा इस गोवर्धन जी का
1: जी।
0: तो समझ लीजिए हम हर रविवार हर संडे को हम वहाँ पर होते थे सिनेमा घर में
1: ओके
0: फिल्म देखने के लिए। और बहुत पुरानी फिल्में की तो बात ही अलग थी हम बच्चे थे छोटे थे हम जाते थे वो जमाना कुछ और ही था। या फिर किसी के घर में टीवी होती थी एक सप्ताह में एक दिन
1: हाँ,
0: तो
1: हाँ,
0: एक फिल्म तीन सप्ताह चलाई जाती थी।
1: हाँ मुझे पता है यहाँ पर ऐसे ही होता था पहले।
0: हाँ तो हम जाकर देखते थे वो संगम जैसे ये सब फिल्में अभी आप बात कर रहे हैं ये सब। लेकिन नरगिस जी की अपनी कुछ खास हैसियत थी और उनकी धारी फिल्में बहुत अच्छी थी सारी गाने उनके फिल्मों के बहुत अच्छे थे जैसे हम तुम ये बाहर देखो रंग लाया प्यार चोरी चोरी के गाने पंछी बनो उड़ती फिरूं वो आज भी मशहूर है वो लोग
1: हाँ, हाँ,
0: है नहीं
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: लेकिन हाँ। वो अमर हो गए हैं सुमी जी और उनके गाने भी अमर और मशहूर है आज तक
1: जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी आप जुड़ी हमारे प्रोग्राम से और नरगिस जी के बारे में जानते जुड़ी
0: जो आपने ऐसा प्रोग्राम रखा
1: बहुत धन्यवाद। हम अलका जी को धन्यवाद कहेंगे ये विषय अलका जी ने जो है आज वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई है लेकिन थोड़ी देर बाद आप उनको सुन पाएंगे।
0: बहुत अच्छा कि आपने पुरानी यादें ताजा कर दी बहुत धन्यवाद।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी आपका भी शुभ दिन आपको। और चलिए यहाँ पर आज नरगिस जी पर हम बात कर रहे तो नरगिस जी की कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है आप हमें जरूर बताइएगा। कौन सा ऐसा गाना है जो आपको पसंद है या नरगिस जी की कौन सी फिल्म में कौन सा रोल है जो भी आपको याद है तो चलिए 4028070 पर आप बेशक हमें कॉल ही कर सकते हैं। और इनका जो करियर का शुरुआती दौर रहा काफ़ी कमाल का रहा जैसे कि हमने बताया लेकिन जब जो है इन्हें हमने देखा अंदाज इस फिल्म में भी इनकी अदाकारी बहुत ही जो है ये रही कामयाब रही। और यहाँ पर अन्य नाम यहाँ पर अभी राधा जी जुड़ी थी तो उन्होंने कितने नाम जोड़े बरसात अंदाज चोरी चोरी जैसे फिल्मों के ज़रिए जो है इन्होंने जो है अपना नाम बनाया अपना मुकाम बनाया। अभी के लिए एक और गाना हो जाए और फिर कुछ और बातें हम नरगिस जी के बारे में ज़रूर जोड़ेंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: इतिहास के झरोखों से।
1: और चलिए अभी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें यहाँ पर आ रहे हैं 402-808-7070 पर आप भी जुड़ सकते हैं। नरगिस जी के बारे में अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप बेशक हमारा साथ यहाँ पर दे सकते हैं। और नरगिस जी की बात करें तो ज़्यादातर फिल्में जो इनकी पॉपुलर हुई है या जो लोगों को याद है वो है राज कपूर साहब जी के साथ फिल्में जो भी इन्होंने की है, उन सभी फिल्में जो है बहुत ही पॉपुलर रही है और वही फिल्में जो है लोग बहुत याद भी करते हैं इनकी। चलिए एक और श्रोता है यहाँ पर, इनसे हम मिलते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्ते समीर जी, मैं कोटे से आशा जानी बोल रही हूँ।
1: कैसी हैं आशा जी?
2: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: बिल्कुल ठीक है जी, बताइए
2: जी। तो आज तो जितने भी हिंदी सिनेमा से जुड़े होते हैं वो तो आज बहुत खुश हो गए होंगे कि आज नरगिस जी के बारे में आप प्रोग्राम कर रही है। तो जब नरगिस जी की फिल्में आ रही थी तब तो मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था। मैं
1: बिल्कुल बिल्कुल हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था
2: पर मेरे माताजी पिताजी अक्सर उनकी फिल्मों की जिक्र किया करते हैं
1: जी।
2: तो माताजी कह रही थी कि उनकी एक फिल्म थी मदर इंडिया, उनके गाने भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं, खासतौर पर दुनिया में जब आए हैं तो जीना भी पड़ेगा
1: जी।
2: और मेरे ख्याल से इसी फिल्म के दौरान सुनील दत्त जी के साथ उन्होंने जब इस फिल्म को किया था तो दत्त जी भी उन पर फिदा हो गए थे।
1: हाँ, और मतलब एक हादसा हुआ था ना जहाँ पर वो आग लगी थी कुछ, जो हम सुनते हैं या जो हमने पढ़ा है कि एक सीन चल रहा था जहाँ पर आग लगी थी और सुनील दत्त जी ने जाकर इन्हें

0: चाया था, तो अच्छा, उसके बाद जो है दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई थी,
1: जब जाकर उन्होंने सुनील दत्त से शादी की थी और आज इन्हीं के बदौलत मशहूर अभिनेता संजय दत्त को भी हम, वो भी एक एक्टर है जो यानी कि नरगिस जी और राज कपूर जी की भी अभिनय जब यानी कि हम फिल्मों में देखते हैं तो उनकी दोनों की अदाकारी बहुत अच्छी लगती है। खासतौर पर 724 का इतने के दाना बिचक जाना वाला गाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
1: तो कहने का तो यही, इन सब का यही अर्थ निकलता है ना सुमित जी कि जो पहले की अभिनेत्रियाँ होती थी वो यानी कि सभी में जो कला होती है सब जमाने के हिसाब से सभी की कलाकार अदाकारी अच्छी होती है, पर अभी दूसरी नरगिस फिर से नहीं मिलेगी। जैसे श्रीदेवी दूसरी नहीं हो सकती, वैसे ही नरगिस दूसरी नहीं हो सकती, उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता। और उनकी जो आवाज भी, मैं एक खिंचाव से थी अगर जब उनको फिल्मों में देखते थे, उनकी आवाज सुनते थे तो ऐसा लगता था हाँ कि एक अलग ही खिंचाव सा रहता था उनकी जो डायलॉग होते थे
0: जी जी।
1: और बहुत मैं यानी कि अभी जब देखती हूँ यूट्यूब पर ढूंढ कर फिल्मों को लगाती हूँ देखती हूँ तो सच में मन छू लेता है उनकी जो अदाकारी होती है, जो उनकी जो एक्ट्रेस की जो भूमिका वो निभाती थी बहुत ही सराहनीय है। और उन्हीं के बदौलत जब मैं मदर इंडिया की जिक्र कर रही हूँ तो हर पहली मई को वो दुख भरे दिन बिते भैया वो गीत भी, वो अगर यानी कि हर पहली मई को वो गीत हम सुनते ही रहते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो ये इन्हीं सब बातों के साथ मैं समाप्त करती हूँ सुमित जी, और फिर से कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कार्यक्रम को सजाने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी जो आप लोग इतने प्यार से साथ देते हैं जी। बिल्कुल नरगिस जी के बारे में अगर आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बेशक आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। जैसे हर एक एक्टर एक्ट्रेस के करियर में आता है कि एक समय आता है जहां पर बैक टू बैक जो है पॉपुलर फिल्में हिट फिल्में हम देते हैं वो देते हैं, और वहीं पर एक दौर ऐसा भी नरगिस जी के जीवन में भी आया जहाँ पर सक्सेस के साथ साथ इन्हें जो है नाकामयाबी भी देखनी पड़ी थी, जहाँ पर कुछ इनकी फिल्में जो है उस हद तक काम नहीं कर रही थी और उस हद तक चल नहीं रही थी। तो 1949 से 54 तक का दौर इनका ऐसा रहा कि जहाँ पर इन्होंने कामयाबी भी देखी, जहाँ पर नाकामयाबी का भी सामना इन्हें करना पड़ा। जैसे कि बेवफा जैसी फिल्में जो 50s के सालों में आई थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली जब 1955 में श्री 420 ये फिल्म आई राज कपूर जी के साथ, एक बार फिर इनके करियर ने एक बड़ी लंबी छलांग लगाई और इन्हें कामयाबी के शिखर पर फिर से पहुँचा दिया। और श्री 420 इस फिल्म को कौन भूल सकता है, राज कपूर साहब के साथ ये नज़र आई थी। एक सोशल ड्रामा थी इस फिल्म में, वो एक स्कूल टीचर थी और राज कपूर साहब जो है प्यार में पड़े आशिक थे, और फिल्मों के गाने बड़े कमाल के थे। और इस फिल्म का जो गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ इतना आइकॉनिक तराना है कि आज भी बहुत से लोग जो है एनैक्ट करते हैं इस पर। और नरगिस जी सफ़ेद साड़ी में, राज कपूर साहब काले कोट में काला छाता लिए हुए, और इन्हीं के कोलैबोरेशन में इन्होंने और काफ़ी अन्य फिल्में की जैसे कि चोरी चोरी जो 56 में आई थी और ये भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सक्सेसफुल रही, वही फिल्म मदर इंडिया जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी उस समय 57 में ये फिल्म आई थी। अभी थोड़ी देर पहले आशा जानवी जी ने कॉल किया था तो मदर इंडिया इस फिल्म की बात भी की थी। और इसी फिल्म के दौरान सुनील दत्त जी के साथ इनका मिलना हुआ था एक रोल में जो है, इनफैक्ट इस फिल्म में सुनील दत्त जी की माँ का रोल किया था नरगिस जी ने, और इसी फिल्म में एक रोल के दौरान जो है थोड़ा एक छोटा सा हादसा हो गया था जहाँ पर सुनील दत्त जी ने अपनी जान पर खेलकर जो है नरगिस जी की जान बचाई थी। और उसके बाद जो है इनका जो है अफेयर शुरू हुआ था और उसके बाद जो है दोनों की शादी भी हुई थी। चलिए अभी के लिए श्री 420 का ये गाना हो जाए आप सभी के नाम। RM3 Radio.

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी, एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको

0: अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: इतिहास के झरोखों से
3: चलिए अब नरगिस जी के थोड़े निजी जीवन के बारे में बात करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि राज कपूर जी के साथ जब ये फिल्में करती थी तब काफ़ी लंबा इनका रिश्ता रहा है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद किया करते थे लेकिन राज कपूर साहब उस समय शादीशुदा थे और ऐसे में उनका जो रिश्ता है वो आगे नहीं बढ़ पाया था। नरगिस जी की ने जो है सुनील दत्त जी से शादी कर ली थी 11 मार्च 1958 को। और फिर जो है आपको तो पता ही है इनका जो बेटा है संजय दत्त, इनके तीन बच्चे हैं मतलब के संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। और संजय दत्त तो फिल्मों में काफ़ी अपना नाम कर चुके हैं। नरगिस जी को कहते हैं कि साड़ियाँ पहनना बड़ा पसंद था, उन्हें फ़ोन पर बात करना बड़ा अच्छा लगता था, उन्हें पानी पूरी खाना बड़ा अच्छा लगता था, खासकर जो रास्तों के किनारे मिलता है। और वो काफ़ी उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था अपने भाइयों के साथ। और सभी को पता है कि वो जो है काफ़ी जो है उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपनी किस्मत आजमाई थी। और पॉलिटिक्स की बात करें तो जो है राज्यसभा में जो है ये राज्यसभा से जुड़ी थी और पॉलिटिक्स में भी इन्होंने जो है काफ़ी लोग इन्हें पसंद किया करते थे। लेकिन इनके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जहां पर ये काफ़ी बीमार पड़ गई और लंबी बीमारी के चलते जो है ये चल भी बसी थी और इनका जो निधन है वो हुआ था 3 मई 1981 को। और उसी दौरान जो है इनका बेटा जो है फिल्मों में लॉन्च होने वाला था, तो वो सफ़र इनके परिवार के लिए बहुत ही कठिन रहा था, बहुत ही मुश्किल रहा था। और बहुत ही कठिन दौर से जो है इन्होंने इनके बच्चों ने जो है अपने जीवन को आगे ले जाया गया है। जैसे संजय दत्त के किसी इंटरव्यू में कभी आपको मौका मिले तो सुनिएगा, जहाँ पर इनके बेटे का लॉन्च होने वाला था और उसी समय ये काफ़ी बीमार थी और ऐसे में जो है उसी समय उनके जाने के भी खबर आती है। चलिए अभी के लिए एक और गाना हो जाए। यहाँ पर मदर इंडिया फिल्म की बात कुछ लोगों ने की जिन्होंने भी फ़ोन कॉल किया, तो चलिए गाना आप सभी के नाम हम करते हैं।

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: पिघला दे। और चलिए यहाँ पर इतिहास के झरोके इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं अभी के लिए। किसी की बात करें तो अवार्ड्स भी अपने करियर नरगिस जी की बात करें तो काफ़ी अवार्ड्स भी इन्हें अपने करियर के दौरान मिले हैं। 1958 में इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से नवाजा गया था फिल्मों में इनके योगदान के लिए कला के क्षेत्र में, और साथ ही मदर इंडिया इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था 1958 में। वहीं पर रात और दिन इस फिल्म के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। और यहाँ पर इनके करियर के बारे में कुछ और बातें जोड़े तो जब इनकी मृत्यु हो गई 1981 में और 82 में जब इनके बेटे की पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी उसके बाद संजय दत्त जी ने इनके नाम से एक अस्पताल बनाया था, क्योंकि नरगिस जी जो है कैंसर से जूझ रही थी और इसी के चलते इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो फिर इनके नाम पर एक जो है कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया था जहाँ पर बहुत सी सुविधाएं मिलती है लोगों को अपनी बीमारी के इलाज के लिए। और नरगिस जी के बारे में कुछ और बातें कहे तो जो है जब इन्होंने शादी कर ली थी सुनील दत्त साहब के साथ तो पूरी तरह से फिल्मों से किनारा कर लिया था और पूरा अपना समय जो है अपने परिवार को दिया करती थी। और उसके अलावा सुनील दत्त जी जो है फिल्म प्रोड्यूस भी किया करते थे, यहाँ पर ये इनका जो है साथ भी दिया करती थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नरगिस जी के बारे में हमने कोशिश की इस प्रोग्राम में कुछ बातें जोड़ने की, लेकिन अभी जो गाना हम आपके लिए चलाने वाले हैं वो नरगिस जी पर तो पिक्चराइज नहीं है लेकिन संजू इस फिल्म का गाना है जो इनके बेटे के लाइफ पर है, इनकी बायोपिक है, बायोग्राफी कहे जो भी कहे, संजय दत्त जी के जीवन पर है। और इसमें नरगिस जी का रोल जो है मनीषा कोइराला ने निभाया था, यानी कि संजय दत्त की माँ का रोल मनीषा कोइराला जी ने निभाया था और ये गाना बड़ा कमाल का है। तो चलिए इसी गाने के साथ आज के इस इतिहास के झरोखे के सफ़र को हम समाप्त करते हैं और 3 बजे आप सुन पाएंगे समाचार और उसके बाद आप आज की चर्चा इस कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट सुन पाएंगे। हम आपसे जल्द मिलेंगे, हमारी ओर से नमस्कार आप सभी को।
2: RM3 Radio.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पर ही सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मंत्री परिषद ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल को राष्ट्रसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानून को निरस्त करना और उसकी जगह पर एक आधुनिक और अधिक व्यापक तथा घरेलू हिंसा के पीड़ितों की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर कानूनी ढांचा लागू करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय रोकथाम को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्तर पर पहुंच बढ़ाने पर जोर दे रहा है। बुपलों में स्वास्थ्य अभियान के शुभारंभ के दौरान स्वास्थ्य पेशेवरों, अन्य अधिकारियों और आम जनता को एक ही उद्देश्य के तहत एकत्र किया गया। स्क्रीनिंग और रोकथाम के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मॉरिशस में रूस की राजदूत इरिदा ज़ेलानोवा ने अपने देश की मॉरिशस के साथ मजबूत सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। कलेबेन में आयोजित एक स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने ये बात कही। रूस के राष्ट्र दिवस के अवसर पर इस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शामिल रहे।

0: वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशन राउंड में कल कनाडा और बोस्निया के बीच ड्रॉ रहा 1-1। वहीं दूसरी ओर लॉस एंजेलिस के स्टेडियम में यूएसए की टीम ने पैराग्वे को 4-1 से हराया। आज रात ग्रुप बी में कतर का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। रात 11 बजे ये मैच खेला जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। टैगोरो थियोली में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की मिसिस बीबी आयशा रोहिमन पैराशी नाम उलिया और जो आयशा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा आज शाम 5:30 बजे उनके बेटे यासा रोहिमन के मकान टैगोरो थियोली से उठाकर दफनाने के लिए प्लेंडी पापाई का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: नारी शक्ति का स्वरूप है, इसीलिए 9 महीने तक अपने पेट के भीतर बच्चे को पालने की अहम और अद्भुत शक्ति है। इसी शक्ति के स्वरूप को पूजना मनुष्य का कर्तव्य है। नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज एक ऐसे विषय हम लेकर आए हैं जहां पर चिंतन मनन करने की बहुत ही आवश्यकता है। न केवल हम फरवरी या फिर मार्च महीने में हम विश्व महिला दिवस मनाते हैं, अपितु ये एक ऐसा दिवस है जहां पर मुझे लगता है बार बार इसको मनाना बहुत ही आवश्यक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नारी के बारे में जो दृढ़ता, मेहनती और रेजिलियंस की प्रतिमूर्ति है। साथ ही साथ वे मॉरिशस की एक ऐसी बेटी है जो बाहर जाकर के, खासकर भारत के गोवा प्रांत में जाकर के मॉरिशस का नाम रोशन किया है। जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम विषय इसी पर आधारित है, नारी सशक्तिकरण, द वुमन एम्पावरमेंट, अ स्कॉट एनालिसिस। स्कॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, यानी कि उनकी शक्ति। सी का मतलब है चैलेंजेस, यानी कि उनकी जितनी सारी जो चुनौतियां हैं। ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज, यानी कि संभावनाएं। और टी का मतलब है थ्रेट्स, यानी कि रिस्क, डेंजर्स या फिर खतरे। और इसी को ध्यान में रख करके आज हम बात करने वाले हैं हमारे मुख्य मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका नाम है मिस शागन रामचंद। सबसे पहले नमस्ते मिस शागन।
1: नमस्ते अभी।
0: बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम आपको यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। हम आपको जितने सारे जो दर्शकगण और श्रोतागण हैं आपको बताना चाहेंगे कि मिस शागन रामचंद एक मिस ऑफ वुमेन ऑफ वंडर्स हैं। साथ ही साथ वे यहाँ से निकल करके भारत गई और वहाँ जा करके उन्होंने मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया। और मिस शागन मिस जुवेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट जैसे खिताब प्राप्त करके मॉरिशस का नाम रोशन किया। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो शागन जी कि आप यहाँ पर आए हैं और मॉरिशस का नाम आपने रोशन किया। आप हमें बताइए कि मिस शागन रामचंद कौन है, इसके बारे में बताइए सबसे पहले।
1: तो मैं शागन रामचंद हूँ, मैं फोंडिसा के रहने वाली हूँ और मैं एक पीआर एजेंसी में काम करती हूँ। और मैं एक सिंगल मदर हूँ जो मेरी जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और मैंने बहुत पेजेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और जो भी हूँ ये मेरी जर्नी का हिस्सा है।
0: वो तो दिख रही हैं आपके जो साश हैं और आपके सर पर एक बहुत ही सुंदर मुकुट है। और इस प्रकार के मुकुट डालने के लिए एक बहुत बड़ा काम है ना इसके पीछे।
1: डेफिनेट।

0: इटली, तो मैंने बहुत लाइक बहुत चैलेंजर्स की तरह गुजरी है. लाइक मुझे पब्लिक स्पीकिंग से टैलेंट शो हमेशा काम से लौट के तब मैंने पब्लिक स्पीकिंग हमेशा किया है. और मैं सब हमेशा रोज़ टैलेंट शो मैं अपनी डांस सीखती हूँ. मैं टायर्ड भी हूँ तो भी सीखती हूँ.
1: मतलब अंदर में जिस तरह से मैंने आपको मैं बताया, अंदर में वो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन जो दृढ़ता और समर्पण भाव की जो भावना है अंदर. इसीलिए आप ये सब कर पा रही हैं.
0: डेफिनेटली.
1: तो आप हमें ये बताइए कि नारी फर्स्ट ज्यूवेल ऑफ इंडिया के जो कंपटीशन है, जो प्रतियोगिता है, वहां पर भाग लेने का मौका कैसे मिला, ये संभावना किस प्रकार से सामने आई?
0: तो मैं बचपन से मुझे फैशन डांस से बहुत लगाव था. तो मेरी जर्नी शुरुआत हुई थी मिस यूनिवर्सिटी और मॉरिशस से. फिर मैंने मिस इंडिया मॉरिशस वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट किया था. और मैंने मिस पॉपुलर फेस मिस फोटोजेनिक का खिताब जीती थी.
1: जब आप एक स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस?
0: यस, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस. तब मैंने मिस इंडिया मॉरिशस वर्ल्ड वाइड का खिताब जीती थी. फिर मैंने मिस वुमेन ऑफ वंडर्स का विनर, बेस्ट पब्लिक स्पीकर, बेस्ट टैलेंट शो का खिताब जीती थी. और तभी वहाँ से मौका मिली थी कि मैं मिस इंडिया ज्यूवेल ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकी. तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई और यहाँ तक मैंने वो हासिल किया है.
1: तो इस यात्रा में मिस शरण कौन कौन सी दिक्कतों, जैसे कि हम बात करें स्कॉट एनालिसिस, कौन कौन सी शक्तियाँ, दुर्बलताएँ, संभावनाएँ, खतरे, इन सभी को पार करके यहाँ तक आप आए?
0: हाँ, बहुत चैलेंजेस थे क्योंकि वहाँ पर 70 पार्टिसिपेंट थी. और वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इंडिया वो बहुत लाइक बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत करेज, बहुत पेशेंस दिखा रही थी.
1: और वे लोग वहाँ पर फैशन को जाने वाले हैं
0: क्योंकि वहाँ एक मीडिया वर्ल्ड है. सब काम वहाँ से शुरुआत हुई थी. तो वो बहुत प्रोफेशनल थी. तो मुझे थोड़ा घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी, लाइक मैं कैसे उनको फेस करूँगी. पर भी मैंने ये सब नहीं सोचा. मैंने सिर्फ अपने करेज, डिटर्मिनेशन और बहुत प्रैक्टिस लगाई थी क्योंकि दिन रात मैं सुबह 4 बजे उठती थी, प्रैक्टिस करती थी. लाइक क्वेश्चन आंसर, पब्लिक स्पीकिंग, वो बहुत एक वेरी इम्पोर्टेंट सेशन है वहाँ. और मुझे लाइक टैलेंट शो में बहुत जो कैसे कर रही, आज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि मैंने हमेशा रोज टैलेंट में डांस को सीखती रहती हूँ.
1: रिहर्सल करती रहती थी.
0: रिहर्सल करती हूँ.
1: तो वहाँ पर इस तरह के प्रैक्टिस करना, सुबह के 6 बजे उठ करके पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े जो काम है ये करना, डांस को मतलब प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना लगातार, तो आपके लिए आसान था क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे कंटेस्टेंट है ना?
0: हाँ, आसान रही थी क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था.
1: अच्छा.
0: पर वो घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि ऑडियंस क्या करेंगे. और वहाँ एक रिनाउ कोरियोग्राफर थी, संदीप सुप्रकर. सो उसे देख के वो बहुत प्रोफेशनल है. और वो मैं सोच रही थी क्योंकि कोई लाइक कोई डिफॉल्ट जैसे देख रहे हैं. तो मैंने ये सब बारे में सोच रही थी. पर कि मैंने भगवान का नाम लिया था और सब ठीक हो गई थी.
1: मतलब मॉरिशस का आशीर्वाद, मॉरिशस जनता का आशीर्वाद आपके सर पर था इसीलिए. अब आप हमें ये बताइए कि जब आप वहाँ पर उस कंपटीशन में, उस प्रतियोगिता में जब आपने भाग लिया एक मॉरिशन नारी के रूप में, किस तरह से आपने मॉरिशस को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया, आपका जो प्रतिनिधित्व कैसा रहा, रिप्रेजेंटेशन कैसा रहा?
0: तो मैं अपने मॉरिशस फ्लैग को हमेशा लेके जा रही थी क्योंकि मेरी शुरुआत हुई एयरपोर्ट से. मैंने अपने झंडा लिया था,
1: चौरंगा झंडा.
0: यस, मैंने लिया था. और सब लोग देख रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि मॉरिशस क्या बहुत बड़ा चीज कर रही है, क्योंकि हमारी मॉरिशियन गर्ल अब्रॉड जा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है मॉरिशस को। और मैंने पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी मॉरिशस भी डाली थी, और टैलेंट शो मैंने एक डांस किया था जो एक बॉलीवुड मेडली था, और सिगा भोजपुरी भी थी, और वो लोग बहुत लाइक दे फाउंड इट फैबुलस। और मैं

0: मैंने भी और एक टैलेंट शो थी लाइक एलिमेंट गाउंड में, सो मैंने अपने आउटफिट में शेल डाली थी,
1: सीपी,
0: या सीपी डाली
1: मतलब मॉरिशस के समुद्र तट में जा करके आपने वहां पर कलेक्शन किया ये शेल?
0: नहीं, मेरे फैशन डिजाइनर ने लगाई थी.
1: ओके ओके.
0: उसने लगाई थी. और इट लाइक दे फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज,
1: डिफरेंट, अलग
0: और वो नेचुरल शेल थी.
1: ओके.
0: यस, नेचुरल शेल. तो ये हमारी कल्चर अपने यूनिकनेस दिखा रही है कि हमारे ब्यूटीफुल ओशन को मैं पोर्ट्रे कर रही थी. यस.
1: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर इस बात की पुष्टि हो रही है कि नारी सशक्तिकरण से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आती हैं, साथ ही साथ खतरे भी आते हैं, लेकिन इन चुनौतियों और खतरों के अलावा अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि संभावनाएं भी उभर करके सामने आती हैं. और जब हम चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स जिसे हम कहते हैं सोचना शुरू करते हैं, तब जाकर के क्रिएटिविटी सामने आती है, जिसे हम कहते हैं सृजनात्मकता या फिर रचनात्मकता. इसीलिए मिस शागन के कपड़े में मॉरिशस के समुद्र तट में पाए जाने वाले जो सीपियां हैं, जो शेल्स हैं, लगा करके वहां पर उन्होंने मॉरिशस का प्रतिनिधित्व किया, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है. आपने एक पुख्ता इंतजाम किया इन सभी चीजों को लेकर के, इसके लिए हम आपको शत शत प्रणाम करते हैं. अब मिस शागन, आप हमें ये बताइए कि मॉरिशन नृत्य जब वहां पर आपने किया, जैसे कि आपने बताया आपने एक मेडली किया, इसमें सेगा है, इसमें भोजपुरी भी आपने शामिल किया, तो सेगा और भोजपुरी जो मॉरिशसीय जो संस्कृति है वहां पर जब आपने उसको डेपिक किया, उनको समझ में नहीं आ रहा था डेफिनेटली, तो कैसे उन लोगों का रिएक्शन था, कैसे उन लोगों की प्रतिक्रिया थी?
0: उनका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव थी और एनर्जेटिक नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रही थी कि वो पसंद करेंगे या अंडरस्टैंड कर रहे थे, पर कि उन्होंने बहुत लाइक उन्होंने मुझे बोला कि मुझे स्टेप सिखाओ लाइक सेगा का डांस, तो मैंने थोड़ा थोड़ा स्टेप उन्हें सिखाया,
1: उन लोगों को.
0: यस, उन लोगों को सिखाए है और उसे वो डांस बहुत पसंद आई थी और वो हम मेरे वीडियो को उनके पास रखे, वो बोल रहे थे कि वो हमेशा लर्न करेंगे जब घर में जाके, तो वो स्टेप लाइक दे विल लर्न द स्टेप.
1: और जब आप इस तरह के जो जो म्यूजिक है जब आप मतलब चुनना शुरू किया, तो ऐसे ऐसे म्यूजिक आपने क्यों चुना जो मॉरिशन जो सेगा और भोजपुरी के जो जो म्यूजिक है, मतलब आपने इसको लेकर के एक मतलब आपने सोचा, एक प्लेलिस्ट बनाई, किस तरह से था?
0: हाँ, मैंने एक महीने लगाई थी.
1: एक महीने?
0: यस, टू चूज अ सॉन्ग, बिकॉज क्योंकि मैं अपने रूट को, अपनी कल्चर को दिखाना चाहती थी. और मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से बात भी की थी लाइक मिसेस देविना मोंगो और याशना गुनंदन की एडवाइस भी दिया था, और उन्हें मुझे बोला था कि मॉरिशस का कल्चर इट इज़ डेफिनेटली ए मस्ट, लाइक हमें उन्हों को दिखाना चाहिए कि हमारे मॉरिशस कल्चर को, अपने रूट्स को, अपनी डाइवर्सिटी को, तो कैसे पोर्ट्रे करेंगे. सो हम पोर्ट्रे कर सकते हैं अपने आउटफिट पे, अपने डांस में. सो हम तो मैंने अपने डांस का इस्तेमाल किया और मेरी कल्चर को दिखाई.
1: मिस शागन, जब आप वहाँ पर पहुँचे, बहुत सारे अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग राज्यों के, डिफरेंट स्टेट्स के लड़कियां वहां पर आई हुई थी गोवा में, तो आप किस तरह से उन लोगों के साथ अपने मॉरिशस की जो संस्कृति है उन कंटेस्टेंट्स के साथ आप शेयर करते थे, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ बात करने का तरीका, हमारे किस तरह से आप वो जैसे कहते हैं विचारों का आदान प्रदान कैसे करते थे आप?
0: तो मैंने लाइक अपनी लैंग्वेज लिया, यूज़ किया था, क्योंकि मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी भाषा सिखाई है लाइक बोंजोर, ओ रेवोर, तो दे ट्राई इट. और मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख के आई थी. और एक राउंड थी, साड़ी राउंड.
1: साड़ी राउंड?
0: यस,
1: मीन्स साड़ी पहनना चाहिए.
0: यस, साड़ी पहनना, साड़ी बाय द बीच, तो हमें साड़ी पहन के बीच का जाना चाहिए इन द मॉर्निंग.

0: 6 AM
1: बाप रे सुबह
0: हाँ तो वहाँ मैंने सभी स्टेट ने अपनी अपनी साड़ी पहनी थी क्योंकि वो अपनी स्टेट का लाइक दे वांट टू शोकेस द स्टेट तो मैंने कंजीवरम तमिल कम्युनिटी से बहुत लगाव है तो मैं हमेशा जब वो औरतें को देखती हूँ वो लाइक कंजीवरम साड़ी पहन के तो मुझे बहुत लाइक आई सॉ देम वेरी ब्यूटीफुली ड्रेस तो मैंने कंजीवरम का इस्तेमाल किया है और द कलर वॉज ग्रीन तो मैंने उसमें पिकॉक थी मुझे पिकॉक से बहुत लगाव थी तो मैंने वहाँ की तो मैंने ये पोर्ट्रे किया है कि अपनी तमिल कम्युनिटी और अपने कावेदी को भी दिखाई थी क्योंकि ये हमारे समाज के बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है सो इसी तरह से हम मैंने अपनी कम्युनिटी अपने मॉरिशियन कल्चर अपनी यूनिकनेस दिखाई है
1: मॉरिशियस एक बहु सांस्कृतिक एक बहुभाषी और एक बहुजातीय समाज है इस समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं अलग अलग प्रकार की बोलियां यानी कि भाषाएं हैं और उन भाषाओं को प्रतिनिधि के रूप में ढाल करके हमारे जो मेहमान हैं मिस शागन भारत में जाकर के वहां पर उन्होंने कावड़ी और साथ ही साथ कंजीवरम साड़ी पहन करके मॉरिशियस संस्कृति को दिखाने की पूरी पूरी कोशिश की इसीलिए आज उनको हम मिस ज्वेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट के रूप में देख पा रहे हैं और मॉरिशियस की बेटी बनकर के उन्होंने मॉरिशियस के छोटे टापू को एक इंटरनेशनल स्टेज में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वहाँ पर सुशोभित किया और उभर करके सामने आया हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर इसके बाद हम फिर से आएंगे और बात करेंगे हमारे मुख्य मेहमान मिस शागन रामचंद के साथ

0: जय हो मॉरिशस। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी मॉरिशन नारी फर्स्ट यानी कि द मिस ज्वेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट के खिताब प्राप्त करने वाली हमारी मुख्य मेहमान मिस शारन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है और नारी सशक्तिकरण यानी कि वुमन एम्पावरमेंट को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक स्कॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ चैलेंज अपॉर्चुनिटी थ्रेट से जुड़े जो बातें हैं आज हम इस पर ज़्यादा चर्चा कर रही है। मिस शारन रामचंद, आप भारत में जाकर के किस प्रकार से वहाँ पर वुमन एम्पावरमेंट को लेकर के आपने मतलब वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया, क्योंकि आप वाओ जिसे कहते हैं वुमन ऑफ वंडर्स, तो यू ऑलरेडी गॉट द ट्रेनिंग, यहाँ पर आपको एक प्रशिक्षण मिल गया था ना?
1: तो हमारे प्लेटफॉर्म वुमन ऑफ वंडर्स इट इज़ नॉट ओनली ए ब्यूटी पेजेंट बल्कि सब एजेस की महिलाएं हैं
0: सभी।
1: यस, तो प्रीवियस ईयर में एक 60 ईयर्स ओल्ड का लेडी थी जो उन्होंने इंडिया से आई थी तो उसने क्राउन मिला था। तो ये एक एग्जांपल है,
0: एक इंस्पिरेशन,
1: यस इंस्पिरेशनल है। और हम हमेशा एडवोकेसी करते हैं क्योंकि हम सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं दिखना चाहते हैं, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि हम बिलीव करते हैं सब लोगों को एक यूनिक टैलेंट है जो हमेशा पोर्ट्रे करना चाहते हैं, सिर्फ डांसिंग फैशन से नहीं बल्कि वो सीविंग

0: इंस्पिरेशन,
1: yes, इंस्पिरेशनल है। और हम हमेशा एडवोकेसी करते हैं क्योंकि हम सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं देखना चाहते हैं, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि हम बिलीव करते हैं सब लोगों को एक यूनिक टैलेंट है जो हमेशा पोर्ट्रे करना चाहते हैं, सिर्फ डांसिंग फैशन से नहीं, बल्कि वो स्विमिंग
0: था, चैलेंजिंग था,
1: बहुत चैलेंजिंग थी क्योंकि वो सुबह जाके फिर वापस आके सबको तैयार करके लाइक दे हैव टू गो। मेरे पिताजी ने बोला था कि कैसे मेरी दादी स्ट्रगल कर रही थी, मेरी नानी और सो तो। और फिर मैंने अपनी माँ को देखी थी, मेरी माँ एक टेक्सटाइल में काम कर रही थी तो मैंने देखी थी कैसे मेरी माँ स्ट्रगल कर रही थी कि वो हमेशा लाइक सुबह उठ के हमें तैयार करके, ब्रेकफास्ट तैयार करके हमें स्कूल भेजती थी तो ये सब स्ट्रगल शो रहे थे कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट जागी थी
0: उस समय।
1: और नाउ कि मैं अपनी माँ को लाइक जो भी हूँ मैं अपनी एग्जांपल है क्योंकि मेरी माँ एक उन्हें लाइक भाग लिया था, लाइक प्रेसिडेंट ऑफ विलेज बन चुकी है। वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी पर भी उसने ट्राई किया है और बहुत लेडीज की मदद भी की है तो लाइक बहुत चीज़ ऑर्गेनाइज कर रही थी लाइक फुटबॉल, लाइक डोमिनो, पैडल, लाइक क्विज ऑल्सो। तो बहुत लोग ने बहुत पार्टिसिपेट भी किया है तो ये शो कर रही कैसे वुमेन एम्पावरमेंट, कैसे लाइक वुमेन दे शुडन्ट बी ओनली बी एजुकेटेड, दे कैन डू एनीथिंग विदाउट बीइंग एजुकेटेड ऑल्सो। क्योंकि मैं कहती हूँ कि शक्ति, उन्हें शक्ति चाहिए ताकि वो बढ़ सके जिंदगी में। और आज के समय देख रही हूँ कि बहुत लेडीज हैं कि वो पॉलिटिशियन बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, बस कंडक्टर बन रही है, पायलट बन रही है। तो ये एक एग्जांपल है कि हमारे सोसाइटी में कि कैसे बहुत लेडीज आगे बढ़ रही है और हमें एग्जांपल बनना चाहिए हमारी बेटियों को कि वो भी एक टॉर्च बियरर बन सके हमारे सोसाइटी के लिए।
0: एगो ऐसन बखत रहल जहाँ पर हमनी के जो दादी नानी, हमनी के जो बड़का माँ फजर के, खासकर फजर के 3 बजे उठ करके जब उन लोग कारों में जात हलन सा काम करे के बखत, तो उन लोग हौजा जा करके बहुत मतलब अपन कमर के तोड़ तोड़ के काम करत हलन सा, गन्ना के काट के या फिर चाय के पत्ता के तोड़ करके उन लोग अपन जो कमाई करके तब जा करके उन लोग घर वापस आवत हलन सा। हमनी के जो दादी, हमनी के जो नानी, हमनी के जो बड़का माँ बाते उ लोग हमनी के प्रेरणा स्रोत हवन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जैसी कि बोली लासा। और ऐसन बखत में हमनी के एगो एगो एगो शक्ति मिलल बाते अपन जो मार्ग बाते ओकरा आर जस्ती प्रशस्त करे की। और जितना हमनी के जो दादी नानी जे आज इस धरती में नहीं हवन जा, बल्कि हमनी MBC की पूरी टीम के बगल से, आज की चर्चा की भी पूरी टीम के बगल से उन लोग के शत शत प्रणाम करीला सा, उन लोग के आत्मा को सदगति प्राप्त हो या। अब आप हमें ये बताइए मिस शागन, जब वहाँ पर गए, वहाँ पर ऐसे ऐसे भी उम्दा कलाकार से मिलने का मौका मिला जो आपने सोचा भी नहीं था।
1: मैंने मलाइका को मिली थी और वो बहुत
0: मलाइका अरोरा,
1: यस मलाइका अरोरा से मिली थी और उन्हें मुझे ये साश और क्राउन भी पहना था जो एक ऑनर थी। और लाइक इट इज़ वेरी रेयर टू सी देम इन फ्रंट ऑफ अस। और मैंने भी एक कलाकार सीरियल में काम कर रही थी, मुझे नाम थोड़ा याद नहीं है। और तो डिलाइटेड थी और वो बोल रहे थे क्योंकि पिछले नेक्स्ट सीजन में वो भी मॉरिशस में भाग लेंगी हमारे कंपटीशन में, दे विल असिस्ट आवर कंपटीशन और मे बी दे विल एक्ट एज ए जज आल्सो।
0: अच्छा, तो ऐसे लोगों के साथ मिलने के बाद आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ?
1: मैं बहुत प्राउड, मैं शॉक में थी क्योंकि मुझे लाइक आई डिडंट कैम टू यूज माई वर्ड। तो मैंने फिर सोचा था नहीं कुछ बात करूंगी।
0: हाँ, तो ऐसे लोगों के मिलना ये तो बहुत अहोभाग्य की बात है ना।
1: हाँ, क्योंकि लाइक इट इज वेरी रेयर क्योंकि हमें मौका नहीं मिलती है टू मीट देम। तो मुझे प्रिविलेज मिली है और मैंने उसे पूरा एडवांटेज भी लिया था, बहुत सम क्वेश्चन आंसर भी पूछा था और वो भी हमारे

0: very Mauritius culture, mein, like they were asking how it is, how is the ocean and so on. So I had a lot of details about my Mauritian, how is our Mauritian culture, we are multicultural, we have different culture, different tradition. So I had all of bullet and they were very, like, they love Mauritius because they have like holiday bhi kiya hai
1: Mauritius.
0: Yes. So they thought that the next year they will come and run Mauritius. So now tell
1: us, when you came back to Mauritius, in a Mauritian beti ke roop mein jab aap वापस आए और यहाँ पर किस तरह से आपका स्वागत किया गया और लोगों मॉरिशन जनता का जो रिएक्शन कैसा था?
0: ये बहुत गर्व की बात थी क्योंकि बहुत लोग मुझे कॉल कर रहे, कंग्रेचुलेट कर रहे थे फेसबुक में, टेलीफोन के, पर भी एक प्राउड मोमेंट थी जब वो मेरे माँ बाप को बोल रहे कि अपनी बेटी को कंग्रेचुलेट कर रहे थे, तो मेरे माँ बाप भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे. तो ये काम में जहाँ जाती हूँ लोग मुझे देख के फेलिसिटेट कर रहे थे, लाइक दादा नानी सब सब देख रहे थे कैसे कैसे हमने लाइक डिस्प्ले किया है अपने टैलेंट को, अपनी पब्लिक स्पीकिंग को, ये सब हमने शोकेस किया. तो बहुत लोग बहुत लाइक दे वर फेलिस कंग्रेचुलेटिंग मी. यस,
1: मतलब ऐसे ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत ही गर्व महसूस होता है, खासकर जब हम कड़ा परिश्रम करते हैं और अंततः हमारी मेहनत रंग लाती है और हमें अच्छा लगता है कि एक एक अंदर में एक तसल्ली भी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन भी मिला था आपको?
0: हाँ, मिली थी. क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है कि मैंने अपने मॉरिशन चंदा को लेके अब्रॉड गई थी. और मैंने सिर्फ जब मैं वहाँ भाग ले रही थी तो मैं हमेशा अपनी कंट्री के बारे में सोच रही थी कि क्यों मॉरिशस नहीं अपने विनर कर सकती, क्योंकि बहुत लोग आगे बढ़ रहे थे. तो मैंने बहुत लाइक आई वॉज टेकिंग ए बर्डन ऑफ आर माई कंट्री, आई हैव टू मेक माई कंट्री प्राउड. ये सब मेरे दिमाग में, मेरे हाथ में कि मैं आगे बढ़ सकूँ, कुछ कर सके. तो मैंने बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत करेज लगाए थे कि मैं कर सकी हूँ अपने लेडीज को, अपने वुमन को, अपनी नारी को. कि मैं शक्ति, मैं बोल रही थी कि वुमन इज ऑलवेज ए सिम्बल ऑफ माता दुर्गा. लाइक इट इज़ नॉट लाइक माता दुर्गा जो बहुत हाथ हैं कि वो डिफरेंट टॉस कर रही है कि लाइक वुमेन यही सिंबलाइज करती है कि वुमेन काम जा रही है, बच्चे को समा रही है, एजुकेट कर रही है, काम कर रही है. लाइक दे वर डूइंग मल्टीटास्किंग. सो मैं ये एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम सिर्फ लाइक किचन में नहीं स्टिक कर सकते हैं, हमें बहुत फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि लर्निंग doesn't stop here. It keeps on continuing till our death. So हमें हमेशा कुछ सीखना चाहिए.
1: बिल्कुल.
0: Learning हमेशा कुछ, हमेशा it should be updated, it should be ongoing.
1: अब हम ये बताइए कि अभी आपने बताया है कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए, तो आप एक एक स्त्री होने के रूप में घर का काम है, आप काम भी करते हैं, आपकी फैशन की दुनिया है और आपने कहा आप एक सिंगल मदर हैं, तो किस तरह से आप इन सभी को मैनेज करते हैं, समय को कैसे बांट करके आप अपने काम करते हैं?
0: मैं सच कहूँगी बहुत डिफिकल्ट थी, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मैं 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के सभी काम कर रही थी. क्योंकि अभी मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक फ्री टाइम है, बल्कि प्रीवियसली बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि मुझे लाइक मैं कह रही थी लाइक पब्लिक स्पीकिंग हमें क्वेश्चन आंसर 36 क्वेश्चन थी और 5 को राइटिंग में लिखना चाहिए. तो ये सब क्वेश्चन हमें लाइक वी हैव टू लर्न इट और उसे लाइक शुडंट बी इररिलेवेंट. एंड देन अपने टैलेंट को हमेशा रिहर्सल करना चाहिए, क्या आउटफिट पहनने चाहिए. मैंने बहुत रिहर्सल किया कि ये डांस चेंज करके, ये सॉन्ग चेंज कर, मैं डिफरेंट डांस करूँ. तो मैंने बहुत ट्राई किया है, तब भी मैंने देन आई कम टू द फाइनल डिसीजन टू आद सेगा और भोजपुरी को एक मेले बना सकूँ और मैं पोते कर सकूँ कि अपनी

0: डाइवर्सिटी अपने कल्चर को और लाइक माय डॉटर देन अपने बेटी को मुझे लाइक उसका होमवर्क सिखा सकूं तो इट वाज डिफिकल्ट पर भी मैंने ये लाइक आई डिड नॉट
1: मतलब हार नहीं मानी
0: हार नहीं मानी तो यही कहती है रेजिलियंस
1: कैसे करके फिर से संभल जाना
0: yes, कैसे करेंगे
1: कैसे करेंगे
0: इट इज ऑलवेज सेड योर हार्ड वर्क ऑलवेज पेड
1: एग्जैक्टली
0: तो ये सब हुआ
1: मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे जो मुख्य मेहमान मिस ज्यूवेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न स्त्री है चाहे वो एक माँ के रूप में हो या फिर एक मिस के रूप में हो या फिर मॉरिशस की बेटी के रूप में हो या फिर एक कामकाजी महिला के रूप में हो अलग अलग रूपों में वे अपने जो कार्य हैं वे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं बहुत ही सक्रियता के साथ उसको निभा रही हैं और आप हम कह सकते हैं मिस शाहन कि आप वुमन एम्पावरमेंट यानी कि नारी सशक्तिकरण का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है जिस तरह से आपने कहा कि आपकी जो दादी आपकी जो नानी सुबह उठ करके वे लोग गन्ने के खेत में जा करके काम करते थे तो जो शक्ति उन लोगों में थी उस जमाने में उस शक्ति का जो संचरण है जो सर्कुलेशन ऑफ द स्ट्रेंथ आप में आ गई है और आप आधुनिक समाज में इस मॉरिशसीय समाज में आप उसी शक्ति का भरपूर प्रयोग कर रही हैं और ये शक्ति आप अपने बेटी को भी दे रही हैं और वे भी आगे जा कर के इस समाज के विकास के लिए इस समाज के नाम को रोशन करने में लगेंगे। अब आप हमें ये बताइए हम बात कर रहे हैं स्कॉट एनालिसिस के बारे में आप हमें बताइए कि जब भी आपको एक फोन कॉल मिलता है या फिर एक काम मिल गया या फिर एक न्यू असाइनमेंट मिल गया और आपको लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊंगी या फिर इसमें चैलेंजेस बहुत हैं तो क्या आप उस असाइनमेंट को ले लेते हैं करने के लिए?
0: डेफिनेटली क्योंकि मुझे चैलेंजेस नहीं देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए क्योंकि आप चैलेंजेस देखोगे तो नहीं बढ़ सकेंगे आगे तो इसीलिए मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी को देख रही थी। अभी अभी मुझे एक कॉल मिली थी कि मेरी लाइक कोच मिसेस शाइना रायडू ने मुझे बोली थी कि एक वर्कशॉप है हमें जाना था मंडे के पर मंडे आई वर्क तो मुझे ये सब अगर मैं देखूंगी कि मैं काम करती हूँ तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी वहाँ वर्कशॉप पे तो मैं ये लाइक आई हैव टू डू सम एडजस्टमेंट
1: कांच छाट के सेटिंग फिटिंग
0: या मैं सुबह लाइक आई विल वर्क एक्स्ट्रा आवर्स सम अदर डेट इन ऑर्डर टू कवर दैट पार्ट तो ये सब करना चाहिए क्योंकि हमें लाइक उसे अटेंड करना चाहिए वर्कशॉप को
1: मतलब इस तरह से आप मतलब खतरे या फिर चुनौती को न देख करके अपॉर्चुनिटी और शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी या कि संभावना इन दोनों को देखते हैं।
0: डेफिनेटली
1: जितने सारे जो नारियां खासकर जो महिलाएं जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रही हैं सुन रही हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि जिंदगी में बहुत सारे असाइनमेंट्स बहुत सारी जिम्मेदारियां बहुत सारे काम हमें मिलते हैं लेकिन हम उन काम में से जो संभावनाएं हैं जो शक्तियां हैं उनको नकार करके उन खतरों और चुनौतियों को देख करके हम कहते हैं नहीं मैं नहीं करूंगा या फिर मैं नहीं करूंगी ये नहीं कह करके ही हम पीछे हट जाते हैं जैसे कि भोजपुरी में बोली जाती ना हमने पछुआ जैसा तो जब हम लोग पीछे निकल जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे हमारे सामने जो दूसरे लोग उभर करके चले जाते हैं उन खतरों को उन चुनौतियों को गले लगा करके आगे बढ़ जाते हैं तब हम पछताते हैं कि मैं भी ये कर सकता था ना तब इट्स टू लेट बहुत ही देर हो जाते हैं। अब आप हमें ये बताइए आपने कहा कि आप नृत्य करते हैं और नृत्य की दुनिया में भी आपने बहुत दक्षता हासिल की है और उसमें आपने मॉरिशस की जो सेगा और भोजपुरी है उसमें शामिल किया तो किस तरह से आपने ये फ्यूजन किया और किस तरह से आपने अपना प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास किया?
0: तो मैं बचपन से डांस की बहुत लगाव थी। मैं

0: हमेशा स्कूल में कॉलेज में डांस में भाग लेती थी डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग में सेगा फ्यूजन बॉलीवुड हॉलीवुड सबको लाइक आई एम इंटरेस्ट इन एवरी डांस तो जब ये सब किया था तो मुझे ये डांस का जुनून बहुत लगाव थे तो देन आई स्टार्टेड डांसिंग फ्रॉम चाइल्डहुड एंड देन मैंने हमेशा रोज म्यूजिक डाल के डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग पे डांस नाचती थी और जो भी न्यू सॉन्ग आउट होती थी तो मैं हमेशा नाचती थी
1: और कोरियोग्राफी
0: और मैं अपनी ओन कोरियोग्राफी डालती थी और मेडले करती थी उसके लाइक द कोरियोग्राफर ऑफ द सॉन्ग एंड मेरी कोरियोग्राफी सो एक मेडले करती थी लाइक मैं हमेशा लाइक टूट फूट के ये नया करती थी और मैं एक कथक डांसर भी थी यस मैंने लर्न किया था विद मेरे गुरु संदीप भीम जी जो अब नहीं हैं तो मैं हमेशा उसका ये कथक कीप रहती हूँ अलाइव तो मैं हमेशा ये कथक करती हूँ डांस करती हूँ न्यू सीखती हूँ एक शो है इंडिया में डांस इंडिया डांस वो बहुत प्रोफेशनल है तो मैं हमेशा उसका स्टेप देख के लर्न करती थी
1: सीखते थे
0: सीखते थे तो ये सब लाइक इट वाज ए जर्नी और मैंने जब ये सब देखी थी तो मैं एक ये एक आइडिया मिली थी कि मैं अपनी लाइक मॉरिशस को एक अपने कल्चर को सिगा जो कल्चर अपने रूट है सिगा भोजपुरी सो मैं ये दिखा सकती हूँ और मैं कहती हूँ कि लाइक इवन इफ आई हैव अदर प्रोजेक्ट टू गो अब्रॉड टू पार्टिसिपेट इन दूसरे इवेंट में दूसरे कंपटीशन तो इसी मैं अपनी कल्चर अपनी मॉरिशस कल्चर को दिखा सकूं
1: आप हमें ये बताइए कि एक मिस ज्वेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट कि खिताब मिल जाने के बाद क्योंकि आपने कहा कि वहां पर 70 कंटेस्टेंट थे 70 पार्टिसिपेंट्स वहां थे उनमें उनमें से आप सेकंड रनर अप पहुंच गई हैं ये बहुत ही बड़ी बात है एक अचीवमेंट है न केवल आपके लिए बल्कि पूरे मॉरिशस के लिए एक उपलब्धि है आप हमें ये बताइए मिस शाहन कि आने वाले दिनों के लिए या फिर आने वाले भविष्य में आपकी क्या परियोजना है न्यू प्रोजेक्ट क्या है
0: इनफैक्ट बहुत आइडिया हैं लाइक अभी अभी एनवायरनमेंटल डे है तो मैंने मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट से 300 प्लांट्स की रिक्वेस्ट किया है क्योंकि मुझे ये सब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉरिशस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ लाइक मैं स्कूल में ताकि मैं बच्चों को सिखा सकूँ कि एनवायरनमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है और मैं मेरी जुम्बा क्लासेस में जो औरतें हैं मैं
1: अच्छा, आप जुम्बा भी सिखाते हैं
0: यस मैं जुम्बा
1: ये तो आपने मुझे बताया नहीं चलिए
0: यस मैं जुम्बा भी सिखाती हूँ तो मैं उन्हों देंगी या और 50 पब्लिक को देंगी सो मैं डिवाइड कर रही हूँ ये प्लांट कैसे कैसे बांटेंगे ताकि हर इस सर हर पॉट्स में मिल सके और मैं दिखा रही हूँ कि हमारे एनवायरनमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है और जो म्यूजिक डे आएंगे तो मैं जुम्बा टीचर हूँ तो मैं ये पब्लिक को लाइक इट इज़ ए फ्री फॉर ऑल द पब्लिक टू कम टू शो कि मैं उनको बता सकूँ कि म्यूजिक के साथ कि अपने सेहत के बहुत इम्पोर्टेंट रखना चाहिए तो इट विल बी ए फन एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ तो मैं अक्वा जुम्बा भी करूँगी जो भी इंटरेस्ट है वो आ सके और मुझे कैंसर भी कि लोग लाइक आई हैव इनिशिएटिव फॉर कैंसर पीपल ऑल्सो लाइक मैं एक मार्च करूँगी और स्क्रीनिंग की भी इंतज़ाम भी करूँगी क्या ताकि लोग बहुत लेडीज आ सके और रेगुलर चेकअप कर सके तो बहुत प्रोजेक्ट है कि मैं करना चाहती हूँ और इसके मेरे ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत हेल्प करते हैं मिसेस देवीना मोंगा याशिना रघुनंदन सो वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं बहुत आइडिया भी देती है तो कैसे करेंगे और वो हमेशा कहते हैं कि हर लोगों हर लेडीज को अपने पास लेके जाओ और उन्हों भी एग्जाम्पल दीजिए कि वो काम में दे सके अभी अभी हमने एक इवेंट किया था मदर्स डे में तो बहुत लेडीज आए थे इवन दो दे डोंट हैव ए चाइल्ड तो भी आए सभी को गिफ्ट मिली थी तो एक प्रसन्नता मिलती है कि उन्होंने को लाइक ए स्मॉल स्माइल इट्स मेक अस ए बिग डे फॉर अस
1: बिल्कुल
0: यस तो हमने ये इनिशिएटिव भी लिया था और हम भी अभी हमने एक इवेंट किया है एक हमारे प्रेसिडेंट ने किया है मिसेस देवीना मोंगा ने किया है ओशन ओशन

0: प्रोजेक्ट वो दिखा तो हमने डिफरेंट आउटफिट लाइक यूज किया था क्योंकि हम अपने ओशन को पोर्ट्रेट कर रहे थे तो कैसे हमारी ओशन इम्पोर्टेंट है हमारे एक्वाटिक्स एनिमल्स वेरी इम्पोर्टेंट सो ये सब इवेंट उसने लाइक हमने इम्पोर्टेंस लगाई थी यस
1: मतलब आप विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं और सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं तो इन ये सब जब आप करते हैं तो आपको क्या सीखने को मिलता है और कौन कौन से स्किल्स आपने एक्वायर किया
0: मैं स्किल्स मिली हैं कि सब कुछ आसान नहीं है हमें बहुत पेशेंस रखना चाहिए और बहुत डिटर्मिनेशन भी रखना रेजिलियंस भी क्योंकि सब कुछ मिलती नहीं है तो हमें कुछ पेशेंस रखना चाहिए और समटाइम्स आवर प्रोजेक्ट डजंट स्टैंड तो हमें फिर भी अपने दूसरे आइडिया के साथ करते हैं और फंडिंग भी थोड़ा हम एक एनजीओ है तो हमें लाइक वी डोंट हैव दैट फंडिंग सो हमेशा लोगों से स्पॉन्सर मिलना
1: फंड रेजिंग
0: करते हैं सो ये एक डिफिकल्ट पाथ है पर भी लोगों ने हमें बहुत मदद भी किया है
1: अब जाते जाते आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे जितने सारे जो दर्शकगण जितने सारे लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं आप कौन सा मैसेज कौन सा संदेश देना चाहेंगे
0: मैं यही कहूँगी कि अपने ड्रीम्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए क्योंकि इट इज़ नेवर टू लेट तो आगे बढ़ना चाहिए और जो भी टैलेंट है दिखाइए क्योंकि सब लोग के एक यूनिकनेस है और एक यूनिकनेस को हमेशा हमेशा सोसाइटी में बांटना चाहिए तो यही संदेश है कि आगे बढ़ो और कुछ करो
1: जी हाँ बिल्कुल आगे बढ़ो और कुछ करो जब आप करेंगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा कि आप में वो बात है जिस तरह से कबीरदास ने कहा था कि करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान रसरी आवत जात सिल पर करत निशान सिल यानी कि जो पत्थर है जितना आप लगर लगर के काम करेंगे तब जाकर के उसमें एक निशान आएगा उसी प्रकार से आप लोगों को अभ्यास करते जाना चाहिए करत करत अभ्यास कीप ऑन प्रैक्टिसिंग कीप ऑन ग्रूमिंग योरसेल्फ तब जाकर के आप दूसरों के दिल में अपना छाप डाल पाएंगे इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मिस्टर शाहन कि आज आप आए और वुमन एम्पावरमेंट नारी सशक्तिकरण से जुड़ी बहुत सारी बातें आपने की शक्ति अपॉर्चुनिटी यानी कि संभावना चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस और फ्रेट्स यानी कि डेंजर या फिर खतरे इसके बारे में आपने बात की और मॉरिशस से निकल करके आप समंदर पार करके गोवा में जा करके सेकंड रनर अप आप पहुंच गए हैं ज्वेल ऑफ इंडिया नारी फर्स्ट इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा और मैं यही आशा करता हूँ और MBC की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देना चाहेंगे कि भावी परियोजनाएं भी जब आप जाएंगे करने के लिए तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आज आपने बताया कि किस प्रकार से एक नारी सिंगल मदर होकर के भी बहुत कुछ कर सकती है इसके लिए हम आपको शत शत धन्यवाद करते हैं तो दर्शकगण इसी के साथ आज की चर्चा कार्यक्रम यहां पर समाप्त हो चला आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद अभी उदय की बगल से सब कोई के नमस्ते और आदाब
2: आज की चर्चा
3: You're listening to RM3 Radio Man

0: शाम के 4:03 हो चुके हैं, ये सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। मंत्रिपरिषद ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल को राष्ट्रसभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा कानून को हटाकर एक अधिक व्यापक और बेहतर कानूनी व्यवस्था लागू करना है जो घरेलू हिंसा के पीड़ितों की जरूरतों को और बेहतर ढंग से पूरा कर सके। स्वास्थ्य मंत्रालय रोकथाम को और मजबूत बनाने के लिए लोगों के करीब पहुंचने पर जोर दे रहा है। पोपलों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की शुरुआत के अवसर पर स्वास्थ्य पेशेवरों, अन्य अधिकारियों और आम जनता ने एक साथ भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य जांच और रोकथाम के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। मॉरिशस में रशिया की राजदूत इरिडा ज़िलानोवा ने मॉरिशस के साथ मजबूत सहयोग के प्रति अपने देश की प्रतिबद्धता दोहराई। ये बात उन्होंने कल एबन में रशिया के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक स्वागत समारोह में कही। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थी जिनमें राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुर और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल थे। विदेश में कई हफ्तों की बातचीत के बाद ईरान और पाकिस्तान के मध्यस्थ यानी मीडिएटर ने कहा कि अमेरिका के साथ एक समझौता करीब है जिससे मध्य पूर्व में 3.5 महीने से चल रहे संघर्ष का अंत हो सकता है। उनका कहना है कि जैसे ही बातचीत के आखिरी चरण पूरे हो जाएंगे समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। 2026 विश्व कप का आधिकारिक रूप से उत्तर अमेरिका में आगाज हो चुका है और पहले नतीजे काफी ध्यान खींच रहे हैं। ग्रुप बी में कनाडा को बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। वहीं ग्रुप डी में यूएसए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया और न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में रोमांचक मैच निर्धारित है। ग्रुप सी में पहला बड़ा मुकाबला दो मजबूत टीमों के बीच खेला जाएगा। 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील का सामना मोरक्को से होगा जिसने कतर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक जगह बनाई थी और ये मुकाबला रविवार 14 जून को सुबह 2 बजे से एमबीसी पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में एक शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play. NBC Play.

0: MSCRadio.tv. MSCRadio.tv. टैगोर ट्रिवलेमी टैगोर ट्रिवलेमी 75 साल की 75 years old की मिसिज बीबी आयशा रोहिमन मिसिज बीबी आयशा रोहिमन पैदाइशी नाम ओलिया जो आयशा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज शाम साढ़े पाँच बजे उनके बेटे जनाब यासर रोहिमन के मकान टैगोर ट्रिवले से निकाल कर दफनाने के लिए पेंदे पापा के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: शाम के 4:07 हो गए हैं।

रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम ऐसे विषय रखते हैं जिसके जरिए हम अपने देश के बारे में ज़रा कुछ जान पाए। जैसे कि आप जानते ही होंगे पिछले 11 जून से दुनिया भर में वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है। वर्ल्ड कप 2026 जिसमें 48 देशों की नेशनल टीमें भाग ले रही हैं, ये 48 टीमें मेक्सिको, यूएसए और कनाडा के 16 शहरों के स्टेडियम में अपने अपने मैचेस खेल रहे हैं या खेलने वाली हैं। सो इसी संदर्भ में आज का हमारा गीत गाथा देश के प्रोग्राम के अंतर्गत हम मॉरिशस के फुटबॉल ग्राउंड्स पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। वहां पर 16 शहरों के स्टेडियम पर वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जा रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को उनका ध्यान मॉरिशस के फुटबॉल ग्राउंड्स पर केंद्रित करेंगे, यानी कि मॉरिशस के फुटबॉल ग्राउंड्स पर आज का ये प्रोग्राम होने वाला है। और इसके साथ साथ फुटबॉल की भी चर्चा होगी, आपकी फेवरेट टीमों की चर्चा होगी, चंद यादों को भी हम ताज़ा करेंगे। हमारा फ़ोन नंबर 402 80 70।

वर्ल्ड कप 2026 किस देश की टीम वर्ल्ड चैंपियन घोषित होगी, इसके लिए हमें जुलाई महीने का इंतजार करना पड़ेगा जब फाइनल खेला जाएगा। फाइनल में कौन सी दो टीमें होंगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ फेवरेट टीमें तो हैं, लेकिन फुटबॉल है, गेंद राउंड होता है, स्फेरिकल होता है और स्टेडियम रेक्टेंगुलर होता है। चले हम बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा फोन नंबर 402-4970। मॉरिशस की हाईएस्ट कैपेसिटी फुटबॉल पिच, मॉरिशस की हाईएस्ट कैपेसिटी स्टेडियम कहां पर पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? आपका जवाब ऑन 402-4970।

0: वाकई आज का प्रोग्राम कुछ हट कर है, संगीत भी होगा, कुछ यादें भी होंगी, आपकी ओर से पार्टिसिपेशन भी होने वाला है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के बारे में भी चर्चा होगी। सो हमने पूछा कि मॉरिशस की हाईएस्ट कैपेसिटी फुटबॉल पिच कहां पर पाई जाती हैं। चलें हम इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जय
1: सियाराम भाई जी।
0: जय सियाराम बाला जी, कैसी हैं?
1: जी सब ठीक, आप बोलो। सब ठीक।
0: सब ठीक। ये वर्ल्ड कप 2026 कैसा चल रहा है, कैसे जी रही हैं?
1: मैं फुटबॉल नहीं देखती।
0: फुटबॉल नहीं
1: देखती? मेरी पति देखते हैं तो मैं सुनती हूँ।
0: अच्छा, जब जब आप आपके पति देखते हैं तो आप बगल में सुनती हैं?
1: जी हाँ, जब गोल आती है तब मैं देखती हूँ।
0: दौड़ कर देखने जाती हैं?
1: जी हाँ।
0: आपने ओपनिंग देखी?

0: जी मेक्सिको सिटी में.
1: ओपनिंग मेक्सिको सिटी में, दैट वाज ऑन थर्सडे 11 को. बहुत ही बढ़िया है ना.
0: जी जी बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर.
0: और सभी देश ने भाग लिया तो बिल्कुल अद्भुत.
1: मैं भी सभी के सभी मैचेस नहीं देखता हूँ. जो मैचेस रात के 11 बजे खेलते हैं हम देखते हैं, और जो हमें सबसे प्यारा लगता है, सबसे दिल को छू जाता है, जब जब सभी के सभी दोनों टीमें, जब आजकल दे आर नॉट स्टैंडिंग इन वन रो, दे आर मेकिंग अ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में जब देशों के राष्ट्र धुन चलते हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ही रोचक.
0: और मुझे वो अच्छा लगा जब हमारे बच्चे भी कनाडा में हैं, जब वो पत्ता अंतिम है,
1: हाँ,
0: जब वो लोग वहाँ पर स्टेडियम में दिख लेकर रहे थे, तो वो पत्ता नेशनल तो बहुत सुंदर हुआ.
1: अच्छा
0: जी.
1: और सोशल मीडिया पर हमें ये देखने को मिला कि एक अभिनेत्री है, बॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने वहाँ पर परफॉर्म किया. डांसर है, शी इज अ डांसर.
0: नोरा फतेही.
1: यस, नोरा.

0: पिच कहाँ पर पाई जाती है?
1: श्रद्धांजलि
0: कहाँ पर पाई जाती है? श्रद्धांजलि बेल्वी मोगल। और उस स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी की है?
1: 16,000।
0: बहुत खूब माला जी, बहुत खूब। और वहाँ पर जो दो टीमें होम खेलती हैं वो पॉपुलर मिसेस एससी और आईएस रिवेजुआपा, दोनों वहाँ पर होम खेलती हैं। आप जानते हैं कि लिवरपूल की होम पिच कहाँ पर है? लिवरपूल एनफील्ड और मैनचेस्टर यूनाइटेड की होम फील्ड ओल्ड ट्रैफर्ड।
1: जरूर याद रखूंगी।
0: सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको माला जी, और फिर से मिलेंगे। जय सियाराम, जय मॉरिशियस,
1: जय सियाराम।

साहित्य का आधा देश की ये प्रोग्राम चलता है हर शनिवार की शाम 4 से लेकर 5 बजे तक और इसमें हम हमेशा एक ऐसे विषय रखते हैं जिसके जरिए हम अपने देश के बारे में अपने देश की सुविधाओं के बारे में अपने देश के इतिहास के बारे में सीखते हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम वर्ल्ड कप 2026 सभी जी रहे हैं

सो इसी संदर्भ में हम सभी जो फुटबॉल स्टेडियम है मॉरिशस में उनके बारे में प्रश्न पूछे हैं। सो अभी महाराज जी ने हमें सही जवाब दिया कि मॉरिशस की हाई कैपेसिटी फुटबॉल पिच स्टाद अंजली में पाई जाती हैं। बेलवी मुगल की ये स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 16,000 की हैं और जहाँ पर अपने मॉरिशस एससी और आईएसएल जगहों पर होम खेलते हैं। जो दूसरा प्रश्न हम आपसे पूछते हैं कि मॉरिशस की दूसरी हाईएस्ट कैपेसिटी स्टेडियम रोजहिल में पाई जाती है, 6,500 जगह की ये स्टेडियम। इस स्टेडियम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, इस स्टेडियम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, किस महान व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? आपका जवाब 402 80 70।

0: 4:32 आप सुन रहे हैं गीत गाथा देश की संजय के साथ। हमने सवाल किया कि मॉरिशस की दूसरी हाईएस्ट कैपेसिटी स्टेडियम रोजियर में पाई जाती हैं, 6500 की ये कैपेसिटी वाली स्टेडियम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। चलें हम लाइन पर इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो भैया, नमस्ते।
0: नमस्ते रंजन जी, कैसे हो? बोला था

0: Ukrainian Vaccine numéro 5.
1: Ha?
0: Où est ce Gaëtan Duval?
1: Ce Gaëtan Duval Stadium, जो आप वहाँ पर गए हुए हैं?
0: हाँ जी, मैं एक समय वहीं पर काम करता था, रोजिनी में, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में.
1: अच्छा अच्छा, तो आप वहाँ पर जाए, आपने वहाँ पर कभी खेला है?
0: वहाँ पर?
1: हाँ.
0: मैं खेला नहीं हूँ वहाँ पर. एक पहला पहला बार पहली बार के लिए वो ऑर्गेनाइज किया था रिंडेक.
1: हाँ, हमको याद है जब जब एते कॉलेज होता था.
0: हाँ, कॉलेज. हाँ,
1: तो हम वहाँ पर खेलने गए हैं. जावलो के कंपटीशन में हमने भाग लिया था. ट्रिपल जंप के कंपटीशन में हमने भाग लिया था वहाँ पर. बहुत सी पुरानी यादें उस स्टेडियम के साथ जुड़ी हुई हैं. हाँ, तो आप फुटबॉल, आप कोई स्पोर्ट्स करते हैं? आप कोई स्पोर्ट्स करते थे?
0: हमारे ही गांव में एक लेकिप छोटा सा, उस समय बड़ा लेकिप नहीं था.
1: हाँ,
0: हम अपने अपने ऐसे बनाकर छह सात सात व्यक्ति एक टीम में.
1: हाँ,
0: छोटा सा स्टेडियम था हमारा, लापटन जिसे बोलते हैं.
1: हाँ,
0: तो उस समय हम बोलते थे रोमांस दे फुटबॉल से तिर दे बोले बोल. कैसे स्पीकर बोले बोल के लापटन में.
1: आप हमें बताएं कि पुराने जमाने के जो जो खिलाड़ी, उनमें से चंद नाम आपको याद है?
0: हाँ, हमारा एक कुजन है, उसका नाम है प्रेम परमानंद रामचंद.
1: परमानंद रामचंद?
0: हाँ, मेरा फूफू का बेटा है वो.
1: अच्छा,
0: वो अब नहीं है दुनिया में.
1: शाम्बुदत जैसे, मुकेश राम, मुकेश राम रेखा, सौ जो गावी शंकर,
0: गावी शंकर अभी कुछ दिनों के बच्चे राज्य में.
1: हाँ, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े नाम.
0: चिनन की जाए, चिनन. चिनन वोटर जो के
1: एक एक गोलकीपर था, उसका नाम मैं भूल गया. बहुत ही बड़ा गोलकीपर था, जो हिंदू कॉलेज के लिए वो खेलता था. आपको याद है उनका नाम? नहीं
0: नहीं नहीं याद नहीं रहा.
1: अच्छा,
0: उस समय हिंदू कॉलेज और मुस्लिम स्काउट में जबरदस्त मैच चल रहा था ना.
1: हाँ, आप जॉर्ज फिफ्थ स्टेडियम में मैच देखने गए हैं?
0: हाँ, गया हूँ, बार बार गया था वहाँ पर.
1: मैं सिर्फ एक ही बार गया था. एक ही बार वहाँ पर गया था जब मॉरिशस और सेशेल्स के बीच मैच हो रहा था, काउंटिंग फॉर जुडिजिल, और जिसमें मॉरिशस की 3-1 से जीत हुई थी. बहुत बहुत साल पहले.
0: मैं जहाँ पर बोल रहे हैं आप, क्यूबी स्टेडियम में.
1: हाँ,
0: वहाँ पर एक व्यक्ति को हिंदू का जब खेल रहे थे, एक व्यक्ति को चाकू से मार दिया था.
1: ये सब बातें तो अब नहीं करेंगे, इसे इसे भूलना ही बेहतर होगा. हम जो अच्छी यादें हैं उनको मन में रखेंगे. बहुत बहुत
0: धन्यवाद आपको
1: भी, बहुत बहुत धन्यवाद.

गीत गाथा देश की आज जिस विषय को हमने लिया है वर्ल्ड कप 2026 के संदर्भ में हमारे अपने देश के स्टेडियम हमने बात की एंजेलिस स्टेडियम की जिसकी कैपेसिटी 16,000 की है सबसे बड़ी स्टेडियम मॉरिशस में इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी फिर उसके बाद हमने बात की रोजेल की

500 दोंजीवाल स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 6500 की है और अभी कुछ समय पहले हमने बात की जॉर्ज फिप्स स्टेडियम की जिसकी कैपेसिटी 6200 की है क्रिप्ट में स्थित ये स्टेडियम जिसके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और जहां पर क्यूबिप स्टारलाइट एससी आईएस वोका फिनिक्स और सेक्ल दु जोआकिम एससी होम खेलते हैं। अब जो अगला प्रश्न हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और जिसका जवाब आप दे सकते हो बाय कॉलिंग उनका संदू का तुम्हें सुसंजीस बॉम्बू स्टेडियम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है बॉम्बू स्टेडियम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है बॉम्बू जो एक और स्टेडियम है सुप्रसिद्ध स्टेडियम इन द वेस्ट किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है आपका जवाब 402 का तुम्हें सुनजीस पर

0: जो कि हमारे श्रोता लाइन पर इंतजार करें, इसलिए हम उनको ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे। चलिए हम मिलते हैं इनसे। हेलो हेलो
1: हेलो, मैं पुत्र हमलत से धर्म शिवारी जी।
0: धर्म जी
1: बोलते हैं,
0: धर्म चाचा जी बोल रहा।
1: स्टार के नाम जैमे कुमामो स्टेडियम,
0: जैमे कुमामो स्टेडियम 5,000 की कैपेसिटी, यानी कि 5,000 लोग वहाँ पर बैठकर वहाँ के जो डिसिप्लिन्स हैं, वहाँ के जो फुटबॉल भी देख सकते हैं, और वहाँ पर बॉम्बू एटॉल जो लोएस्ट ऐसी और पिछतरविया ऐसे। ये बोला धर्म जी कि आप जब जवान रहा था स्पोक कर था। फुटबॉल खेला था, वॉलीबॉल खेला था, कौन सी खेला था?
1: फुटबॉल खेला था जवान में।
0: अच्छा, आजकल फुटबॉल देखेला?
1: हाँ, अभी तो मेरा उम्र 81 साल के हो गया है, अपने रिटायर हो गया है।
0: 81 साल के?
1: हाँ।
0: तो फुटबॉल आंगले में तुहार लेकिन फुटबॉल आंगले में तुहार कौन लेकिन था?
1: हाँ,
0: अच्छा, लिवरपूल के देखेला।
1: हाँ,
0: हाँ। तो धर्म जी आपसे बात करते हुए हमें बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा।
1: जी, मैं खुदा राम लिखी बोल रहा।
0: हाँ, तो धर्म जी ऐसे ही हम लिखे प्रोग्राम सुनते रहिए।
1: हाँ, हाँ।
0: और फिर से मिलम जा। नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार। सो नोफ में अंजलि स्टेडियम, रोजहिल में सगैदों जीवाल स्टेडियम, क्यूरपिप में जॉर्ज फेम स्टेडियम, और अभी अभी धर्म जी से हमने बात की बॉम्बू में जैमे कुमामो। इसके अलावा फ्लैक में भी एक स्टेडियम है, अगर आपको पता है उस स्टेडियम का नाम तो हमें फ़ोन करिए 402 80 70।

गीत गाथा देश की। आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि मॉरिशस में जितने भी स्टेडियम्स हैं, जो स्टेडिया हैं, उनके नाम सामने आए, क्योंकि फुटबॉल देखना सही बात है, फुटबॉल के बारे में जिक्र करना सही बात है, लेकिन अगर हम अपने नौजवानों को प्रोत्साहित करें जिससे कि वे भी फुटबॉल खेलें तो कितनी अच्छी बात होगी। एक स्वस्थ जनता के लिए स्पोर्ट्स करना अनिवार्य है। सो, आज के इस प्रोग्राम के जरिए हमने स्तादांजलि के बारे में बात की, जो बेल्वी मुगल में है, फिर उसके बाद सोगैटन जुवाल स्टेडियम के बारे में बात की, रोजिल में जॉर्ज फिप्स स्टेडियम के बारे में बात की, बॉम्बू के जमे कुमवामो के बारे में बात की, और अभी अभी जो प्रश्न हमने पूछा उसका जवाब शोभा जी ने हमें दिया ऑफलाइन, और जवाब है स्टाड ऑगस्ट वलेयर,

जहां पर 4000 लोग ठीक तरह से बैठकर फुटबॉल देख सकते हैं. ये सेंट्रल फ्लैक में पाया जाता है और इट इज द होम स्टेडियम फॉर फोको फ्लैक एससी. इसके अलावा बेशक कोडो में सैंपिया कोडो स्टेडियम है जहां पर एफसी लिवरपूल एकेडमी के लिए ट्रेनिंग स्थान माना जाता है. सैंफ फ्रांसवा जावियर स्टेडियम जहां पर 2500 लोग बैठकर और जो पोर्टविस आइसपेल ड्यूमिल का होम स्टेडियम है. मेबर्ग में स्टाद अरिलाटू जहां पर 2000 लोगों को की बैठने की सुविधा है और जहां पर सवान एससी होम खेलती हैं. और स्टाद गी रोजमो जहां पर 1000 लोग बैठकर कटरबोन में जो स्थित हैं ये स्टेडियम हैं. इसके अलावा हर एक इलाके में ऐसे ऐसे स्टेडियम हैं और सुनने को मिलता है जब अरविंद हमारे दोस्त अरविंद अपने स्पोर्ट्स सेगमेंट में बात करते हैं. अनेक बार रीजनल कंपटीशन जहां पर होता है गांवों में शहरों में ऐसे जो स्टेडियम हैं वहां पर काफ़ी बहुत एंबियंस के साथ फुटबॉल टूर्नामेंट खेले जाते हैं. सो आज का ये कार्यक्रम यहां पर समाप्त होने को चला. ऐसे ही हम नौजवानों को प्रोत्साहित करेंगे कि अपने देश के बारे में सोचें, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, सिर्फ फुटबॉल के बारे में बात न करें अपितु ट्रेनिंग लें और फुटबॉल खुद खेलें. हमारे बाद सितारू भाई आपका साथ निभाने आ रहे हैं. हमारी आपकी मुलाकात गुरुवार की शाम को होगी 5:30 बजे राम रसधारा प्रोग्राम में. तब तक हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार. जय सियाराम. जय

0: घड़ी मिला लीजिए, इस समय मॉरिशस में शाम के ठीक 5 बजे है।
1: Continuous music
0: RM3 Music lovers, साज़ आवाज़ के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों स्वीकार कीजिए और जय प्रताप सिंह सितालू का प्यार भरा नमस्कार। आज शनिवार, शनिवार 13 जून 2026 शाम के 5:02 हो रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर आपका स्वागत है। फ्रीक्वेंसीज यू नो बाय हार्ट 94.95.6 98.2 MHz। पुराने नगमे, जी हाँ पुराने नगमे, अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक। और आज इस प्रोग्राम को हम खास बनाएंगे, हम दो फिल्मों के गीत लाए हैं और पहला फिल्म है रंग और दूसरी फिल्म है चांदनी। और फिल्म रंग जो है इसमें आवाज़ें दी हैं आका याग्निक, कुमार सानू, फिर पी सुनंदा और उदित नारायण साहब। अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म रही थी फिल्म रंग, जिसमें कमल सदाना, दिव्या भारती, जितेंद्र, अमृता सिंह आदि आदि इस फिल्म में नज़र आए थे। तो इस पहले हिस्से में अभी से 5:30 बजे तक फिल्म रंग के गाने आप सुनेंगे और शाम के 5:30 बजे आप सुनेंगे फिल्म चांदनी के गाने। तो सभी का स्वागत है पुरानी नगमी कार्यक्रम।

रेडियो मनोरंजन पर आप सुन रहे हैं अभी फिल्म रंग के गाने और बहुत ही प्यारे गाने हैं, है ना। इस गीत को सुनकर यादें ताज़ा हो गई। 1993 की एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इसका निर्देशन तलत जानी ने किया था। यह फिल्म अपने संगीत, प्रेम कहानी और अभिनेत्री दिव्या भारती की वजह से बहुत चर्चित हुई। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे दिव्या भारती, आयशा झुलका, कमाल सदाना, जितेंद्र, अमृता सिंह। फिल्म की कहानी दो युवतियों पूजा और काजल के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों को जिंदगी और परिवारों के बीच पुराने रिश्ते और गलतफहमियां होती है। कॉलेज के दौरान दोनों का जीवन योगी से जुड़ जाता है और फिर प्रेम, त्याग और परिवार के रिश्तों की कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में भावनात्मक मोड़ और पारिवारिक मेल मिलाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस फिल्म का संगीत नदीम श्रवण ने दिया था और इसके गाने उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे।

ना देखूं तो चैन तुम्हें देखे मेरी आंखें तेरी मोहब्बत ने दिल और दिल चिर के देख तेरा ही नाम होगा गीतों के पूरे बोल समझा नहीं कर गीत के बोल जो है बहुत प्यारे हैं और दिल को छू जाते हैं यह फिल्म दिव्या भारती की मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी इसलिए इससे इनकी उनके प्रशंसकों में विशेष रूप से याद रखा जाता है और दिव्या भारती बहुत यंग थी जब उनकी मृत्यु हुई थी और बेशक आज भी लोग जब उसकी मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते जिस प्रकार से वह इतनी ऊंची इमारत से नीचे गिरी थी और उसकी मौत हो गई थी शी वाज सो यंग यू नो दिव्या भारती ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया दीवाना रंग एंड सो ऑन पर उनकी सभी फिल्में अच्छी रही और खासकर सात समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गए दैट वाज अ वंडरफुल ट्रैक ऑन व्हिच शी डांस पर अफसोस बहुत ही कम उम्र में दिव्या भारती की मौत ट्रेजिकली हो गई तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म रंग का अंतिम गाना और इस गीत के बाद हम बढ़ेंगे अगली फिल्म की गीत की ओर और वो फिल्म होगी चांदनी सो फिल्म रंग के एक अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं आका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ों में

0: continuous music. RM3.
1: पुराने नगमे।
2: शाम के 5:35 हो रहे हैं 94.6 पर आप सुन रहे हैं और एम्फ्री रेडियो मनोरंजन एमबीसी का म्यूजिकल चैनल और पुराने नगमे प्रोग्राम चल रहा है शाम के 5 से 6 बजे के बीच। पहले हिस्से में आपने सुना फिल्म रंग के गाने और इसे दूसरे हिस्से में हम चलाएंगे फिल्म चांदनी के गाने। यस, लेट श्रीदेवी पर पिक्चराइज यह जो मूवी है अपने ज़माने में सुपरहिट रही थी। यस, और चांदनी मूवी जो थी एक रोमांटिक फिल्म थी जो लोग बरसों याद करते रहेंगे। इस फिल्म के सभी गाने बहुत बहुत अच्छे हैं। यस, एंड चांदनी 1989 की एक बेहद प्रसिद्ध हिंदी रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म रही। इसका निर्देशन यास चोपड़ा ने किया था। यह फिल्म अपने खूबसूरत गीतों, भावनात्मक कहानी और अभिनेत्री श्रीदेवी के यादगार अभिनय के लिए आज भी बहुत प्रसिद्ध है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे श्रीदेवी, जिसने चांदनी का रोल निभाया था, ऋषि कपूर ने रोहित का, विनोद खन्ना ने ललित का, वहीदा रहमान और अनुपम खेर भी इस फिल्म में थे। चांदनी एक साधारण और खुश मिजाज युवती है जिसकी मुलाकात रोहित से होती है और दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं, लेकिन एक दुर्घटना उनकी जिंदगी बदल देती है। परिस्थितियों के कारण दोनों अलग हो जाते हैं। बाद में चांदनी की मुलाकात ललित से होती है, यानी कि विनोद खन्ना से, जो उसके जीवन में नया सहारा बनता है। कहानी प्रेम, त्याग, भावनाओं और जीवन में सही निर्णय के इर्द गिर्द घूमती है। चांदनी फिल्म के संगीत को तैयार किया शिव हरि ने और एल्बम और एक और यह जो शिव हरि ने जो म्यूजिक तैयार किया इस फिल्म को सक्सेसफुल बनाया। कुछ प्रसिद्ध गीत इस तरह से हैं इस फिल्म के। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, चांदनी ओ चांदनी, लगी आज सावन पर्वत से काली घटा। और इस फिल्म ने 37th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का सम्मान जीता।

जैसे हिंदी सिनेमा में रोमांटिक म्यूजिकल शैली को फिर से लोकप्रिय बनाने वाली फिल्मों में माना जाता है। खास बात यह है कि सफ़ेद साड़ी में श्रीदेवी का लुक इस फिल्म के बाद एक आइकॉनिक बॉलीवुड शैली बन गया और बहुत सी जो महिलाएं हैं श्रीदेवी की तरह सजती थी सवरती थी श्रीदेवी को इस फिल्म में देखकर, स्पेशली इन हर वाइट साड़ी। और इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, आवाज़ें होंगी लता मंगेशकर, विनोद राठौर, आशा भोसले, सुरेश वाडकर, नितिन मुकेश और बाबला की। तो चलिए अभी से लेकर 6 बजे तक हम आपको सुनवाते हैं फिल्म चांदनी के कुछ मज़ेदार गाने।

हाँ,

सांस रवाज़ के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों डियर ऑडियंस मिथवा जी हाँ चांदनी फिल्म के अंतिम गीत के साथ ही इस प्रोग्राम को हम विराम देंगे और आशा करते हैं कि इन गीतों से आपका भरपूर मनोरंजन हुआ होगा। पहले हिस्से में आपने सुना फिल्म रंग के गाने और दूसरे हिस्से में आपने सुना फिल्म चांदनी के गाने और इसी गीत के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। याद रखिएगा ठीक 6 बजे होगा पूरा समाचार बुलेटिन और हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी और बेशक आशा करते हैं कि फिल्म रंग और चांदनी के गीतों से आपका मनोरंजन जरूर हुआ होगा और एक मुलाकात तक हमें दीजिए इजाज़त। और जय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार आदाब। हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। टिल देन गुड बाय फ्रॉम मी, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: के 6 बजे है। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ईरान और अमेरिका के बीच अगले 24 घंटों में समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की प्रबल संभावना है। वहीं वार्ता में प्रगति के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। जनवरी से फरवरी 2026 के बीच घरेलू हिंसा के 1200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। बदलते स्वरूप और बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है और इसी उद्देश्य से मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद राज्यसभा में डोमेस्टिक अब्यूज बिल पेश किया जाएगा। 17 जून 2026 से सेंट्रल प्लेटू के कुछ इलाकों में पानी वितरण की नई समय सारणी लागू होगी। वाक्वा, क्यूपिप और सैंपियर में पानी की आपूर्ति प्रतिदिन सीमित घंटों के लिए होगी। रोकथाम को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्रालय जमीनी स्तर पर जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। भोपाल में आयोजित हेल्थ प्रमोशन कैंपेन के शुभारंभ पर स्वास्थ्य कर्मियों, अधिकारियों और आम जनता को स्क्रीनिंग और रोकथाम के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए एक मंच पर लाया गया है। और फुटबॉल विश्व कप की दुनिया में 2026 विश्व कप की शुरुआत उत्तरी अमेरिका में रोमांचक रही है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 से बराबरी पर रहा, जबकि अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराकर दमदार जीत दर्ज की है। और भव्य उद्घाटन के बाद अब सभी की नज़रें ग्रुप सी के ब्राज़ील और मोरक्को के बड़े मुकाबले पर टिकी है, जिसका सीधा प्रसारण रविवार 14 जून को सुबह 2 बजे एमबीसी पर होगा। और अब समाचार विस्तार से। आगामी 24 घंटों के भीतर ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की प्रबल संभावना है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में प्रगति के बावजूद दक्षिणी लेबनान में अलग अलग इजरायली हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी सुमेरा अकबर अली के साथ।
1: लेबनान के जनूबी शहर में इसराइल ने जबरदस्त हमले किए हैं। कम से कम 5 बाशिंदों की मौत हुई है। ये हमले तब किए गए जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने कहा कि अमेरिका के साथ एक समझौता तय होने वाला है। इस संधि के जरिए इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान भी सुलह की शर्त होगी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएटर की हैसियत से अमन कायम करने की कोशिश की। उन्होंने पुष्टि की कि आते 24 घंटों में दोनों मुल्क जंग को खत्म करने के लिए ये समझौता तय करने वाले हैं। इसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। युद्ध की वजह से ज्यादातर देशों पर बड़े असरात पड़े हैं। अब नए हुर्मूज पर कभी घेराबंदी तो कभी पाबंदी से अनेक मुल्कों की अर्थनीतियों को गहरा सदमा पहुँचा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बाधाएं उत्पन्न हुई। शांति समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए जाएंगे, जिसके बाद अगले हफ्ते एक टेक्निकी बैठक लगाई जाएगी।
0: जनवरी से फरवरी 2026 तक घरेलू हिंसा के 1200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। घरेलू हिंसा का मतलब केवल दिखाई

0: देने वाली शारीरिक चोट नहीं नहीं है बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक भावनात्मक और वित्तीय शोषण भी शामिल है। हाल के वर्षों में इस अभिशाप के बदलते स्वरूप और इसके मामलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार अपने कानूनी मेकानिज्म को और मजबूत करना चाहती है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय सभा में डोमेस्टिक अब्यूज बिल पेश किया जाएगा जिसे कल मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। ज्यादा जानकारी रजनी बीकर के साथ।
1: 5 वर्षों के अंतराल में घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या 5,000 से अधिक पार कर गई, लेकिन हिंसा केवल शारीरिक नहीं, ये वित्तीय एवं मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग का रूप भी ले सकती है। घरेलू हिंसा ज्यादा जटिल हो रही है और नया नया रूप भी धारण कर रही है। डोमेस्टिक अब्यूज बिल अब से इस समस्या से हर एक रूप से निपटने की राह पर है। इस तरह घरेलू हिंसा का एक ज्यादा बड़ा अर्थ पेश हुआ है, चाहे आर्थिक हो, भावनात्मक हो या फिर यौन संबंधी, सभी कानून द्वारा दंडित। मंत्री आर्या नवामारी ने कहा,
2: Ce nouveau projet de loi là les plie large dans le sens qu'il couvre plusieurs types de violences, pas seulement abus sexuels. Quand nous cause violence, nous cause surtout violence physique. Ou abus est capable dans plusieurs genres, plusieurs types. Il y a aussi, mais qui pas dans ce projet de loi là, il y a des affaires qui pourraient introduire également. Il y a le marital rape, viol marital et féminicide. Parce que vous connaissez ces derniers temps, il y a beaucoup madame qui finit perdre la vie.
1: लेकिन डोमेस्टिक अब्यूज बिल यही तक सीमित नहीं, इस विधेयक में एक ज्यादा कारगर न्यायिक प्रणाली का भी प्रावधान है जो घरेलू हिंसा के खिलाफ कदमों से संबंधित है।
2: Quand il y a une victime, les sauver pour du secours ou soutien, et pas nécessairement dans l'endroit qu'il peut rester. Il peut avoir du soutien ailleurs, dans un autre endroit, à côté de son maman, à côté d'une cousine, etc., une voisine, une famille qui ne reste pas dans la localité qu'il peut rester. Donc ça veut dire, du moins là, la victime là, est capable donne sa déclaration à la police côté lié était n'importe quoi de ça. Donc ça les une nouveauté besoin dire.
1: इस साल के पहले 2 महीनों के लिए हिंसा के 1,259 मामले दर्ज किए गए और प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए 195 मांगे प्राप्त हुई। इस विधेयक के साथ अधिकारगण हिंसा के शिकार लोगों की रक्षा बढ़ाने और मौजूदा हकीकतों के लिए एक अनुकूल न्यायिक ढांचा कायम करने का इरादा रखते हैं।
0: 17 जून 2026 से सेंट्रल प्लेटू के कुछ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के नए समय लागू किए जाएंगे। वाकुआ क्यूपिप और सैंपिया में पानी की सप्लाई अब दिन में केवल कुछ घंटों तक सीमित रहेगी। इस फैसले को लेकर स्थानीय लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग चिंतित हैं, कुछ असंतुष्ट हैं, जबकि कुछ पहले से ही इस स्थिति के लिए तैयारी कर रही है। मॉरिशस में रशिया के राजदूत इरिडा ज़िलानोवा ने मॉरिशस के साथ मजबूत सहयोग के प्रति अपने देश की प्रतिबद्धता दोहराई। ये बात उन्होंने कल एबेन में रशिया के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित एक स्वागत समारोह में कही। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थी, जिनमें राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम भी शामिल थे।
3: हर साल 12 जून को रूसी जनता अपना राष्ट्रीय दिवस मनाती है। अपने भाषण में रूसी राजदूत ने रूस और मॉरिशस के बीच 58 सालों के अच्छे कूटनीतिक संबंधों की सराहना की। इरिडा ज़िलानोवा ने खुशी व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच सहयोग अब शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति सहित कई अन्य क्षेत्रों तक विस्तृत हो चुका है। उन्होंने शागस द्वीप समूह पर भी बात की। सस्यु सागर राम गुलाम के नक्शे कदमों पर चलते हुए मॉरिशस शागस द्वीप समूह पर अपनी संप्रभुता के लिए संघर्ष कर रहा है। रूस हमेशा से मॉरिशस का समर्थन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। 21वीं सदी में किसी भी प्रकार के उपनिवेशवाद का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए। राजदूत ज़िलानोवा ने प्रधानमंत्री को 17वीं शताब्दी के मुगल चित्रकार उस्ताद मंसूर की एक कलाकृति भेंट की, जो रूस की ओर से मॉरिशस की जनता के लिए एक भेंट है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अलावा 1968 की मॉरिशस की तस्वीरों की एक प्रदर्शनी भी लगी। सोवियत फोटोग्राफरों की ये कृतियां, जो टस एजेंसी की कृतियां हैं, मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंप

0: पी गईं।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय रोकथाम को और मजबूत बनाने के लिए लोगों के करीब पहुंचने पर जोर दे रहा है। भोपाल में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की शुरुआत के अवसर पर स्वास्थ्य पेशेवरों, अन्य अधिकारियों और आम जनता ने एक साथ भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य जांच और रोकथाम के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है।
2: Au résultat, il est OK, il est normal, on peut passer avec médecin seul pour une petite consultation.
3: कुछ ही पल काफी होते हैं अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। भोपाल में कई लोग अपनी सेहत की जांच करने पहुंचे, जहां उन्हें विभिन्न परीक्षणों और व्यक्तिगत परामर्शों की सुविधा दी गई।
4: इसी में गए बहुत कोंसेज जमा कोंची फेम ट्रीटमेंट कोंची प्रम कॉम्प्रिमे मो जाबे पा मोंटे इजिस
5: मो पे सुवि ट्रीटमेंट कार्डियक आलो मो विन फेन टेसन को मो गेटन कोटिन अरिवे पाफा नो बजाल दान लोपिटाल अटनन पाके लिया दान को वी विन एवे प्री प्रे ऑन नू से प्री बों।
3: ये स्वास्थ्य अभियान एक ही स्थान पर कई सेवाओं को एकत्र करता है, जिसका उद्देश्य जनता को गैर संचारी रोगों के बारे में जागरूक करना और रोज की सेहत की देखभाल के महत्व को समझाना है। स्वास्थ्य का ख्याल मात्र मधुमेह या रक्तचाप से बचना नहीं, वजन, आहार आदि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी आए हुए हैं। आजसू के अफसर भी हैं जो ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ा रहे हैं। वहाँ मौजूद महानुभावों ने गैर संचारी रोगों, विशेषकर मधुमेह की प्रारंभिक जांच के महत्व पर जोर दिया और कहा कि ऐसे अभियान स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के और करीब लाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कई लोगों को आज पता चला कि उन्हें डायबिटीज है। सभी नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के लिए टेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। मंत्रालय अन्य जगहों तक ये पहल बढ़ाने का इरादा रखता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो।
1: कलेक्टिव अकाउंसियल के आह्वान पर 21वीं मौश दे फियर्ती इस शनिवार रोजल में आयोजित की गई। गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने आंसम न्यूप्लीफो विषय के तहत एकजुट होकर भाग लिया। उत्सव जैसा माहौल होने के बावजूद उनकी मांगे अब भी मजबूत है, खासकर समान अधिकारों के मुद्दे को लेकर। अधिकारियों ने टिकाऊ भविष्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संतुलित और सटीक कृषि को अपनी रणनीतियों के केंद्र में रखा है। इस उद्देश्य से लालूगा मालेंगा में ग्रीन हाउस खेती की एक पहल जौदन लालूगा शुरू की गई है। ये पहल अधिक जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल कृषि की दिशा को दर्शाती है, जिसमें उर्वरकों का उपयोग जरूरत के अनुसार और नियंत्रित तरीके से किया जाता है। पूरी व्यवस्था एक स्मार्ट और सटीक प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाती है, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन में तेजी से अपनी जगह बना रही है और हमारे युवाओं में ये देखा जा रहा है कि ये देश की कुछ चुनौतियों को हल करने में भी योगदान दे सकती है। नेशनल लर्न एआई इनोवेशन चैलेंज के इस दूसरे संस्करण के दौरान ग्रेड 10 और ग्रेड 12 के स्कूली छात्रों ने कई क्षेत्रों में एआई पर आधारित प्रोजेक्ट पेश किए। प्रतियोगिता के समापन पर सुधना कैसेसिस की छात्राओं और लंदन कॉलेज के छात्रों ने अपनी अपनी श्रेणियों में जीत हासिल की। विदेश में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी 6 दिवसीय यात्रा के लिए फ्रांस और स्लोवाकिया के लिए रवाना हो गए हैं। अपने रवानगी के बयान में श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण में फ्रांस का एक विशेष स्थान है। मोदी ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर होगा। और 2026 विश्व कप का आधिकारिक रूप से उत्तर अमेरिका में आगाज

हो चुका है और पहले नतीजे काफ़ी ध्यान खींच रहे हैं। ग्रुप बी में कनाडा को बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने एक एक की बराबरी पर रोक दिया। वहीं ग्रुप डी में यूएसए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।

0: साथियों, जैसे कि हम बता रहे थे 2026 विश्व कप का आधिकारिक रूप से उत्तर अमेरिका में आगाज़ हो चुका है। इसी पर आधारित कल के मैच पर आधारित ग्रुप बी में कनाडा को बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने एक एक की बराबरी पर रोक दिया। वहीं ग्रुप डी ने में यूएसए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इस पर आधारित ये रिपोर्ट पेश है।
1: सह मेजबान देश कनाडा पहले से ही अपने स्टेडियम को रंगारंग माहौल से सजा डाला। एक विशाल खुला रंगमंच, ऊर्जा से भरपूर माहौल, कलाकारों के परफॉर्मेंस से, ऐसे संगीतमय माहौल में स्टेडियम के दर्शक एक साथ इस वर्ल्ड कप के प्रतीक एकता में सामने आए। इसके बाद मैदान में कनाडा की टीम वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत के साथ टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत करने के इरादे से उतरी। यह एक बहुत ही कड़ा मुकाबला साबित हुआ। कनाडा के सामने भी बोस्निया हर्ज़ेगोविना की टीम बहुत अनुशासन और सटीक टेक्निक के साथ खेलने आई थी और कनाडा के खिलाड़ियों को काफी कठिनाई हुई और पहला गोल स्कोर किया बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने। योवो लुकिच ने 21वें मिनट पर गोल स्कोर किया। अपने होम फैंस की गूंज पर कनाडा की टीम सेकेंड हाफ में बराबरी कर पाई। साइल लारिन का गोल रहा जो सब्स्टिट्यूट के रूप में आया। एक सुंदर सामूहिक खेल का नतीजा रहा ये गोल। फाइनल स्कोर 1-1 और वर्ल्ड कप के इतिहास में कनाडा का पहला अंक। तीसरे मेजबान देश यूएसए में भी गर्म संगीतमय रोमांचक माहौल। अपना वर्ल्ड कप कैंपेन दमदार तरीके से शुरू करने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन। मैदान में टीम यूएसए शुरू से ही पैराग्वे पर टूट पड़े और फाइनल्स को यूएसए 4-1।
0: न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम में रोमांच अपने चरम पर होने वाला है। ग्रुप सी में पहला बड़ा मुकाबला दो मजबूत टीमों के बीच खेला जाएगा। 5 बार विश्व चैंपियन ब्राजील का सामना मोरक्को से होगा, जिसने कतर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक जगह बनाई थी। ये मुकाबला कल रविवार 14 जून को सुबह 2 बजे से एमबीसी पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। देश विदेश की खबरों के बारे में अब मौसम का हाल सुनते हैं। पूर्व की ओर पाए जा रहे सक्रिय बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज रात आसमान साफ रहेगा, लेकिन देश के पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर रह रहकर वर्षा हो सकती है और कल दिन के दौरान भी बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। वैसे आज सूर्यास्त शाम के 5:37 पर हुआ और कल सूर्योदय 6:42 पर होगा।

0: की साथ ये समाचार समाप्त हुई इसे आप तक पहुंचाने में हमें यजुर का साथ मिला उन्हें धन्यवाद कहेंगे जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Branch Road, New Grove में Branch Road, New Grove में 77 साल की 77 years old की श्रीमती आमिका देवी संपत श्रीमती आमिका देवी संपत जो आमिक नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हम क्या थी कल दिन के दो बजे उनके बेटे श्री शाकिल संपत के घर ब्रांच रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए एक होपियों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 2 PM ऋषि दयानंद रोज भॉय में 65 साल की 65 years old की श्रीमती गीता रत्नू पैदाइश नाम गनु और जो अनीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उनके बेटे श्री गणेश रत्न के घर ऋषि दयानंद रोज भॉय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लनमानियों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट नून लिजाली बॉम्बू मोंटाई ओरी मोकामी 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री देवेंद्र नाथ नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके घर लिजाली बॉम्बू मोंटाई ओरी मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैन पियर की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 2 PM रॉय रोड मालेंगा सैंपिया में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदीश गुरुदयाल जो सुनील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनकी पत्नी श्रीमती मालिनी गुरुदयाल के घर रॉय रोड मालेंगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 10:30 AM Block C7, Cité Ramfo, Cambertou, Britannia. Sathatar Saal ki, 77 years old ki, Shrimati Chandramani Bujhawan, Paidashi Naam Bihari, aur jo dadi La Cantine Amrita naam se, zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi unki arthi. कल दिन के 11 बजे उनके घर Block C7 सिटी रामफो कॉम्बेटू ब्रिटानिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ताया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM रॉय रोड प्रिजेवियाजिया में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड के श्री देवनानंद राम की सुन जो देवनानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती लीलावती राम के सुन के घर रॉय रोड भजेवियाजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पों वोंजियो की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM केडन लेन फ्लोरियाल में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सोहिनी केडन पैदाइशी नाम जगरूप और जो ज्ञानती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी मंगलवार 16 जून को दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर केडन लेन फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिकारा की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन ऑन ट्यूसडे 16 जून एट 9:30 PM शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio.

नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 6:40 हो चुके हैं शाम के और हम जुड़े हुए हैं आपके साथ आप ही के फेवरेट प्रोग्राम में, नई सोच में, क्योंकि सबको बहुत दिल करता है नई सोच में कोई नई चीज़ हमारे दिल में आए, हमारे दिमाग में आए, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सोचने को और सीखने को मिले। तो आजकल क्या हो गया है कि ज़िंदगी में ज़्यादातर दूसरों की ज़िंदगी में हम ज़्यादा देखने लगे हैं, किसी के पास क्या है, कहाँ पहुँच गया वो इंसान और हम कहाँ रह गए, क्योंकि हमेशा यही दिल में रहता है कि शायद मैं भी सक्सेसफुल इंसान बनूं या कोई लड़की बनूं या कोई औरत बनूं। और कई बार होता है कि हमारे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं और हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, बट नई सोच सिर्फ इतना सा कहती है कि दूसरों से तुलना बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी तरक्की पर आपको खुद ही ध्यान देना। अगर आपको लगता है कि वो तरक्की किसी कारण से कर बैठे हैं, जैसे उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई करी, कोई अच्छा कोर्स किया, या कोई ऐसी चीज़ होती है ज़िंदगी में जो अचानक से उनकी ज़िंदगी में आ जाती है, जैसे कि उनके पास कुछ पैसा आ गया और उन्होंने उस चीज़ को सीख लिया जो वो पहले नहीं सीख पा रहे थे, और आपके पास वो चीज़ें नहीं अवेलेबल हुई, तो आपको लगता है कि हाय मैं तो पीछे रह गया। बिल्कुल इस चीज़ को मत सोचिए, क्योंकि आपका भी समय आएगा, आपको भी एहसास होएगा कि हाँ मेरे पास सब चीज़ें हैं। और यही है कि अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने से आपकी ज़िंदगी सवर सकती है, तो आप वो कोर्स कीजिए, आप वो एजुकेशन लीजिए, वो पढ़ाई कीजिए, या घर में अपने बड़ों से सीखिए, क्योंकि नई सोच सिर्फ इतना कहती है तुलना से कुछ नहीं होता, सीखने से सब कुछ होता है। RM3 Radio.

0: छः बजकर 46 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और मैं हूँ आपके साथ पूनम और ये है आपका ही प्रोग्राम नई सोच। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक साल पहले आप कहाँ थे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें उस समय हो और आज के समय में आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हो सकता है कि आज आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी टेंशन है और पहले सब कुछ बहुत अच्छा था। तो पर कोई बात नहीं, आप अलग से पैदा हुए हैं, अलग संस्कारों से पैदा हुए हैं, अलग घर से पैदा हुए हैं, तो फिर क्या जिंदगी में सब कुछ एक जैसा तो नहीं रहेगा। रोबोट जैसे तो नहीं है कि स्विच दबाया और सब कुछ सही हो गया। धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, ज़िंदगी बदलती है, प्यार बदलता है। बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको नई डायरेक्शन और नई ज़िंदगी सिखाते हैं। कई लोग ऐसे भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज़ तुम कर सकते थे और तुमने कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, पर एक अचानक से कोई क्लिक होता है दिमाग में और लगता है कि हाँ अरे ये तो मैं चीज़ कर सकती थी या कर सकता था, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर ध्यान दूँ। तो अगर आपको भी कहीं लगता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, आपका कहते हैं ना आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे जो सुख जो इंसान को चाहिए होते हैं वो मिल सकते हैं, तो आप उस चीज़ों को सीखिए। उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हर वक्त ये मत सोचिए कि काश मैं ये चीज़ें करूँगा तो ही मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, आपकी ज़िंदगी अपने आप बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। नई सोच सिर्फ इतना कहती है, दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, सिर्फ अपने आप को बेहतर करो।
1: RM3 Radio.

नई सोच। 6:52 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ। दूसरों की सफलता देखकर खुश होना चाहिए। कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हम दूसरों की सफलता देखकर खुश नहीं होते और सबसे बड़ी मुश्किल ये भी हो जाती है हमारे साथ कि अपनी मेहनत की भी तारीफ खुद हम नहीं कर पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमारी तारीफ करे तो क्यों करे। हो सकता है कि हमने बहुत मेहनत की है, रात दिन पढ़ाई की है, रात दिन लगकर कुछ चीज़ सीखी है और हमें खुद अपनी तारीफ़ खुद करनी चाहिए। कभी कभी ये नहीं कि सिर्फ ये कहना कि सिर्फ मुझे ही आता है, हर कोई काम हर कोई सीख सकता है, बट इतना कहना कि हाँ मैंने मेहनत की है, मैंने ये सफलता जो प्राप्त की है उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है और उन सभी को श्रेय देना चाहिए जो भी आपके साथ में उस समय उस तकलीफ के समय आपके साथ खड़े थे। अगर आप उस चीज़ को नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो एक दिन उसे भी एहसास होगा कि मैंने इस इंसान का कितना ख्याल रखा है, कितना ध्यान दिया, पर ये मेरी बात को सुन ही नहीं रहा, कभी इसने मेरा नाम लिया ही नहीं। आप सच मानिए, अगर आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो वो इंसान आपको बहुत मानता देगा और कहेगा हाँ सच में तुमने सफलता प्राप्त की है। RM3 Radio.

तो दोस्तों, हम इतना ही कहेंगे कि तुलना अक्सर खुशी छीन लेती है, ज़िंदगी से सारे सुख छीन लेती है और तरक्की पर ध्यान हमें आगे बढ़ाती है और हमें हमेशा अपने आगे रास्ता देखना चाहिए। इसलिए दूसरों की कहानी देखने से पहले अपनी कहानी पर गर्व करना सीखिए। आपने कौन से, आपके माँ बाप कितनी मुश्किलों से आपको बड़ा किया, कैसे आपने पढ़ाई लिखाई की, कैसे अपनी ज़िंदगी को संवारा, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। आज की बस थोड़ी सी ऊपर नीचे ज़िंदगी हो जाती है तो हम एकदम से टेंशन में आ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। नहीं, पीछे मुड़ के भी कभी कभी इंसान को देखना चाहिए कि मैंने कितना कुछ पाया है। चाहे छोटी छोटी चीज़ें हैं पर उसको अप्रिशिएट कीजिए। और इसके साथ में ही मैं आपको यही कहूँगी कि नई सोच का कार्यक्रम ख़त्म होता है, इसके बाद आप जुड़ पाएंगे दिलों की आवाज़ के साथ और मैं मेरे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। इंजॉय कीजिए आपका ये आखिरी गाना इस नई सोच का। RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:12 हो चुके हैं और शाम का ये वक्त बहुत ही खास होता है। बहुत सारे लोग आराम चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप में मस्ती आ जाए, क्योंकि रात को आपको देखना है बहुत सारे लोगों को फीफा वर्ल्ड कप, और बहुत लोगों को रेस्ट चाहिए, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है कि सैटरडे हो या संडे, वीकेंड पे हमें थोड़ी सी राहत मिलती है, कुछ चीज़ों में बहुत सी शांति चाहिए होती है और ये शांति का टाइम है। तो भाई चलो, हम शांति तो आपको देंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, पर साथ में आपको इंजॉय भी कराएंगे आपके गानों के साथ। इस समय हम टिकटॉक जुड़े हुए हैं आपके साथ, इंजॉय कीजिए अपने गाने। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250-6200 पर, अगर कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 4028070 पर। मैं हूँ आपके साथ पूनम, इंजॉय कीजिए आपका ये गाना, क्योंकि अभी आपने जो सुना गाना वो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में था, और ये आवाज़ क्या होगी आशा भोसले की, क्या बात है। ये आंखें मूवी जो थी ना, बहुत ही ज़बरदस्त थी, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़े थे जो कि नॉर्मली नहीं तोड़ पाते। तो चलिए भाई, इंजॉय करते हैं ये गाना आप सबके लिए।
0: RM3 Radio.

आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800। RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:31 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ यानी कि दिलों की आवाज़ के साथ, और हम हैं आपके साथ यानी कि पूनम। तो चलिए, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आज तो हम जुड़े हुए हैं टिकटॉक के साथ भी, तो हमने सोचा थोड़ी थोड़ी बातें कर ली जाए अपने दोस्तों से। कई बार होता है कि सब लोग बोलते हैं कि हमने देखा नहीं, बात नहीं की, और बहुत सारे हमारे आरजेस रेगुलरली आते रहते हैं, तो आज मैंने बोला चलो मैं भी क्यों ना चली जाऊँ टिकटॉक पे। तो चलिए भाई, अगर जिसको भी हमारे साथ कुछ बातें करनी है, थोड़ी सी शैतानियाँ करनी है, तो आप आ सकते हैं टिकटॉक पे, जुड़ सकते हैं। साथ में इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं टिकटॉक पे भी और यहाँ पर भी साथ हैं, तो अगर इस बहुत सारी टेंशनों से थोड़ा सा दूर बाहर आना है पुराने गानों के साथ में, तो बस हमारे साथ जुड़ जाइए। इस समय यहाँ पर है हमारे साथ लीना जी, माला जी, संगीता जी, सूरज शर्मा, साजदा जी। आज उनके बेटे का निशाल का बर्थडे, और हम उसे विश करेंगे कि बहुत लंबी उम्र हो, खुश रहो, पढ़ाई अच्छी सी करना और अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत से बनाना। निमेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, मिस्टर सिंह जुड़े हुए हैं पंजाब से, काजल, नौशीन, ऐसे अनिल त्रिभू, आश, किरण, सुदेवी जी भी साथ जुड़ी हुई हैं और अपने पूरे परिवार के लिए गाना की रिक्वेस्ट कर रही हैं। साथ में ही हमारे साथ गुलशन जी भी जुड़े हुए हैं और एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं सैनिक मूवी का, कह रहे हैं कि आयशा जल्दी आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। मम प्रभा, सिस दीक्षिता एंड भोला फैमिली के लिए सभी को कह रहे हैं जल्दी से मेरी दुल्हन को रेडी कर लो। तो चलो भाई, हम रेडी करते हैं, मेकअप का सामान लेकर आते हैं और इन्जॉय करते हैं आपके गाने को।
0: RM3 रेडियो रेडियो

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों
1: की आवाज। शाम का समय हो और इतने प्यारे से गाने चल रहे हो आप सबकी पसंद के, तो आपको तो अच्छा लगता है पर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सभी की फरमाइश तो होती है पर उनकी फरमाइश में जो गाने होते हैं उनकी सिलेक्शन होती है बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि आप सबकी पसंद बहुत अच्छी है इसीलिए तो ऐसे गाने चलते हैं। तो इस समय हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हैं लोग टिकटॉक पर भी और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे फ़ोन कॉल्स पर भी और साथ में व्हाट्सअप मैसेजेस के साथ भी। इस समय ललित जी USA से जुड़े हुए हैं साथ और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं इन गानों को। प्रकाशवंती जी बेल्जियम से जुड़ी हुई हैं और इंजॉय कर रही हैं अपने गानों को। और साथ में इंदिरा जी रमेश सन SUN वाला, सन SON वाला नहीं क्योंकि उन्होंने कहा स्पेशली SUN वाला है। तो लिंगम जी जो जुड़े हुए हैं साथ में, नजरीना जी के लिए एक गाना सुनाना चाहते हैं, ईशा जी जो कि प्रवेश जी को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। और साथ में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग जिसमें कि कहते हैं सेतुल जी जुड़े हुए हैं, सुदेवी जी जुड़ी हुई हैं और उसके साथ में कमल जुड़े हुए हैं नीदरलैंड से, उसके साथ में इंडिया से बहुत सारे मिस्टर हैरी जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़े हुए हैं मिसेस कमलेश रानी। चलिए भैया आप सब जुड़े हैं, आप हमारे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात होती है आप सबका होना, आपका प्यार देना, आपकी मोहब्बत इतना इतना ज़्यादा टिकटॉक के थ्रू भी मिल रही है आज। तो भाई आप सब ने जो अपने दिल भेजे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ में और इन्जॉय कीजिए आपके गाने।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:53 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं पूनम के साथ, यानी आपके फेवरेट प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। इस समय हमारे साथ फ़ोन कॉल्स पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे मैसेजेस वन बाय वन आ रहे हैं, पर हम आपको इतना ही कह रहे हैं कि आप मैसेजेस करें या कॉल करें, बात तो होती है दिल की। और दिल से अगर आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी कि अपने प्रोग्राम के साथ, तो सबके गानों को सुनना चाहिए, इंजॉय कीजिए। आप सबके गाने इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फुलवंती जी, उनका फ़ोन मैं ले नहीं पाई, पर आपको मैं मिस बहुत कर रही हूँ इस समय। और साथ में इब्राहिम जी जुड़े हुए हैं, बाबू अनंतवा जी जुड़े हुए हैं, शारदा जी, नवीन, थियाना एंड मनीषा, विकी, विनीता एंड विमल और अनीता जी भी साथ दे रही हैं और इन्जॉय कर रही हैं ये गाने। और सब यही कह रहे हैं कि क्या ये गानों के साथ में थोड़ा सा डांस हो जाए। तो मैं कहती हूँ आप सभी को, अगर आप जहाँ पे भी हैं अपना मूड चेंज करना है तो बस थोड़ा सा डांस कर लीजिए, थोड़ा सा थिरकना बहुत ज़रूरी है। और मैं उन सारे लिसनर्स को कहना चाहूँगी कि जो थोड़ी सी उम्र में आ जाते हैं और बिल्कुल अपने शरीर को ऐसे कह कर देते हैं कि बिल्कुल नहीं हिलाना, नहीं, आप अपने बच्चों के साथ हो, पोतों के साथ हो, पोतियों के साथ हो, इन्जॉय कीजिए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, प्यारी सी है, तब तक आपका इन्जॉय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्जॉय कीजिए अपने गाने और साथ में ये गाना जो है किशोर कुमार का दाता फिल्म से, बहुत ही प्यारा गाना है। तो चलो इस गाने को सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं।
0: RM3 Radio.

दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज। आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800। RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की
1: आवाज। 8:12 हो चुके हैं दोस्तों, और इस समय आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम हमारे साथ, यानी कि MBC के साथ। और ये प्रोग्राम है ही बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें यहाँ पर हम सिर्फ आपकी पसंद के गाने चलाते हैं। हम 50s से लेके 2026 तक के गाने चलाते हैं, जिसकी जो पसंद होती है उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और हम सराखों पर भी रखते हैं आपके मैसेजेस को भी, और आपकी बातों को भी, और आपके दिल की हर जो आपने कही होती है हमें, हम उसके मैसेजेस को दिल से पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये जो गाना महालक्ष्मी की आवाज़ में आपने सुना, सुर मूवी से कभी शाम ढले, बहुत ही प्यारा गाना, जो कि बेल्जियम से चूज़ किया था हमारी प्रकाशवंती जी ने, जो हमारे साथ रेगुलरली सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ किसी ना किसी रूप से जुड़ी होती हैं। तो हम अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच मैम आपका साथ देने के लिए। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इब्राहिम जी पोर्टलुई से, जो कि एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं, और उनकी आवाज़ इतनी मीठी है, वो इतने प्यार से बोलते हैं, दिल खुश हो जाता है। थैंक यू आपका हमेशा कॉल के लिए। और मैं साथ में कहूँगी भारती जी, जो कि शालिनी जी, रवि और नीरव के लिए गाना सुनना चाहती हैं। ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम उन्हीं के लिए चल रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वाला गाने ज़रूर चलाना, क्योंकि जो अब आने वाला है, क्योंकि उनको कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और अपने बच्चे से, यानी कि नीरव से, और वो भी एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं, तो हम उनके लिए भी चलाने वाले हैं। साथ में बाबू अनंतवा जी भी जुड़े हुए हैं, और वो भी एक प्यारे से गाने को सुनना चाहते हैं, जो कि बार बार कॉल कर रहे हैं और मैं उठा नहीं पा रही, पर अभी उनका कॉल लूँगी, तो थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। साथ में स्वेनल जी जुड़ी हुई हैं, जो कि गंगा तलाव की ओर जा रही हैं। वो कह रही हैं कि मासिक शिवरात्रि है, तो एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाइएगा, क्योंकि हम शिव जी के लिए, शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और भाई श्रवण, भाभी कीर्ति, अभिनव, कियान, नव्या एंड तुकलक फैमिली के लिए एक प्यारा सा गाना, हर हर महादेव एंड स्पेशली RJ हंसनी के लिए उन्होंने विश किया है, तो चलिए उनके लिए उनकी पसंद का गाना सुनते हैं।
0: RM3 Radio. Radio. Radio.

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों
1: की आवाज। 8:30 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं हमारे साथ MBC के इस प्रोग्राम के साथ। कहते हैं ना दिलों की आवाज़, और दिलों की आवाज़ तभी आती है जब दिल में कोई मैसेज होता है, और आप जब मैसेजेस भेजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई अबू, जो एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। हम बिल्कुल उनके लिए चलाने वाले हैं, और साथ में पूरी अनंतवा फैमिली

0: फैमिली के लिए भी चलाने वाले हैं और सचिन जो कि पंपलेमुस से जुड़े हुए हैं उनका हम गाना चला चुके हैं पर फिर भी हम ये कहेंगे सचिन आपका नाम नहीं लिया था इसलिए दिल किया कि चलिए ले लेते हैं। साथ में अनीता चिफनिकॉफ लाख से जुड़ी हुई हैं उनका भी गाना चल चुका है इस समय में पर हमें कहा कि बस एक बार उनका नाम ले लें। तो चलिए भाई बहुत सारे गाने हैं ऐसे जो दिल के बहुत ही करीब होते हैं चाहे वो फीमेल वर्जन हो चाहे मेल वर्जन हो बट गाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में चाहे किशोर दा की आवाज़ में राहत फ़तेह अली खां की लता जी की आशा जी की ये गाने जो है ना बहुत ही दिल के करीब हो चुके हैं क्योंकि हम इनको सुनते रहते हैं बार बार और मिलियन टाइम्स हमने सुना है फिर भी ना जाने ये गानों में क्या होता है किस टाइम ये गाने रिकॉर्डिंग किए गए होंगे और किस टाइम हम आज के डेट में भी इन गानों को उसी शिद्दत से सुन रहे हैं। तो चलिए ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दिल जो ना कह सका बहुत ही प्यारा सॉन्ग चलिए सुनते हैं इस स्पेशल सॉन्ग की स्पेशल रिक्वेस्ट पर।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: आठ बजकर 41 मिनट हो चुके हैं और मैं तो इतना ही कहूंगी, जो लोग अभी अपने बच्चों के साथ ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, थोड़ा सा उनके साथ बैठिए और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ बने बैठें, क्योंकि यही जो चीज़ें होती हैं, यही थोड़ा सा बैठना उठना होता है, कुछ बातें होती हैं, इंसान पता नहीं ना जाने वो कौन इंसान कैसी बात कर दे और वो हमेशा के लिए याद बनकर रह जाए। और फिर हम यही सोचते हैं कि अरे हमारे माँ बाप ने हमें टाइम नहीं दिया या वो काम पर बिज़ी रहे। और कभी कभी माँ बाप को बहुत शिकायतें होती हैं अपने बच्चों की कि बस अपने अपने कामों में बिजी हो गए और हमें टाइम नहीं देते। तो हम यही कहते हैं, जितना भी टाइम मिल सके, जहां पर भी आपको लगे कि आप अपने परिवार को साथ दे सकते हैं, साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, साथ में कुछ पका सकते हैं, खा सकते हैं, तो ज़रूर अपना टाइम ज़रूर स्पेंड करें अपने परिवार के साथ में। चलिए भाई, हमने अभी गाना चलाया था किशोर कुमार की आवाज़ में, उसके साथ में ही हम बहुत सारे गाने, 2-3 रह गए हैं क्योंकि उसके बाद तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। पर इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ललिता जी, जो कि हरीश भाई आत्मा भाई के लिए और एक ललिता दीदी के लिए साथ में एक गाना सुनाना चाहती हैं छोटी जी, और वो साथ में कह रही हैं कि मैं उनको बहुत प्यार करती हूं और मैं उन्हें यही कहना चाहती हूं कि भई आपके बिना मैं जी नहीं पाती हूं, इसीलिए मैं हर वक्त उनका नाम ज़रूर लेती हूं। साथ में रिहाना जी जुड़ी हुई हैं और वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, अगर मुझे टाइम मिला रिहाना तो ज़रूर चलाऊँगी, अगर नहीं मिला तो सो सॉरी आज के लिए, पर जब जल्दी आना तो ज़रूर गाना चलेगा। तो उसके साथ में मैं यही कहूँगी, ये गाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, मुझे लगता है कि ये मूवी भी बहुत अच्छी थी और ये गाना भी बहुत अच्छा है। तो एंजॉय कीजिए आपका ये गाना।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: आठ बजकर 50 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपका साथ मिला, आपके इतने प्यारे फ़ोन कॉल्स और आपके मैसेजेस, और आज तो मैंने टिकटॉक भी किया, उसके लिए सबके लिए थैंक यू। और जो भी दोस्त, मैं कहती हूँ कि परिंदे, जो भी फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले देखने के लिए जागने वाले हैं रात को, बस खूब मज़े से देखना और अपनी पसंदीदा टीम को जताना और सपोर्ट करना। और मुझे उम्मीद है कि सुबह अच्छे स्कोर्स आएंगे और आप बहुत चेहरे पे स्माइल होगी और कहोगे कि अरे देखिए भाई, हमारी टीम जीती है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आपकी जो भी टीम हो वो जीते, बस अपने इंजॉय कीजिएगा। और रात को बस यही कहना कि हाँ, रात थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जाओ, क्योंकि आप सबको बहुत देर तक जागना है, तो जो इंजॉय कीजिएगा। ये लास्ट गाना जो है वो आपको पता है हमेशा से मेरी तरफ पसंद का होता है, बाकी सारे गाने आपके पसंद के होते हैं। तो चलिए भाई, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलती हूँ और मेरा नाम है पूनम। आप बस ये गाने के साथ मैं इतना कहूंगी, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, सुबह मुलाकात होगी।
0: RM3 Radio.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का।
3: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का। रात के 9:02 हो गल बाटे। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के तहे दिल से स्वागत करत है। आप सब कोई बस मजे में हवा नहाइए आशा करब जा, और अभी से ले के रात के 11 बजे ले आप सब कोई के साथ है देवब जा बढ़िया बढ़िया भोजपुरी संगीत जे रही तोहार पसीन के। तो चला श्रोता लोगन, आज तो सामदी के रात है और सामदी के रात तो बहुत मजेदार रात रहेला। काहे के बहुत कोई लोग अपन परिवार संगे एगो बढ़िया समय बितावेलन सा। तो चला आज के बढ़िया समय के संगे संगे बढ़िया बढ़िया गीत भी सुनब जा और बढ़िया चुटकुला तोहर खातिर लेके आल है। तो चला बढ़िया गीत सुने खातिर कौन सी करे के चाहिला जानत हो तू 4028085 पर तू हमने के टेलीफोने करे सकब अपन पसंदीदा गीत के तू फरमाइश करे सकब। और जे काम पर हवा या पोताप से मिसाज विदा करे खोजत हवा तो 5251705 सेकंड दे सकते हैं 5705 पर तू हमने के टेलीफोने करे सकब मिसाज विदा करे सकब टेलीफोने नहीं करिया। और चला आज के बढ़िया कार्यक्रम के शुरुआत करे खातिर एगो बढ़िया गीत लेके आल है, और है जोन गीत है बहुत मजेदार गीत है। गीत है अविनाश रामदेन के आवाज में और साथ देले हवन रेखा कुंजल और अमृता विशेषर। तो चला है गीत खूब जलीबा, और है जोन गीत है आज के पहला गीत भोजपुरी के रंग एल्बम से लेवल गयल। तो चला करब जा एगो बढ़िया गर्मा गर्म शुरुआत।
4: बाबू के जन्म होल बाहो थारिया बजावा।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का बस बहुत है मजेदार कार्यक्रम और इस हाइक कार्यक्रम के जस्ती मजेदार बनावे खातिन जितना तू मेहनत करे लंसा और खोज खोज के आने लंसा संगीत बहुत बहुत धन्यवाद और बढ़िया बढ़िया गीत के संगे हाई कार्यक्रम के चार चांद लग जाला। तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिन जलसा कोको आज के जन हाई अगला गीत है हाई गीत के मांग करा था वन बेनी प्रसाद परिवार की ओर से विजय बेनी प्रसाद हमनी के संगे जुड़ गल हवन शामनी के दूली परिवार और मोहताबाद से उनकर खास संगतिया हवन शास्त्री बोनोमाली उनकर खातिन हाई बढ़िया गीत किशोर खीमिया की आवाज में रखल बहुत मजेदार गीत और हाई बढ़िया बढ़िया गीत संगे हईजा पर सुनीता जी भी हमनी के साथ देवत हवन गाँव गोप बगल से साथ हवन उनकर बहिन विमला कोंगोमा से और गुडलैंड से हवन अमृता जी और घोंगोब से ही साथ देवत हवन वीना जी। तो चला प्यार से साथ है देते रहिए जा बहुत है मजेदार कार्यक्रम चला था और इजे तरह मन बा कोनो गीत सुने के तो हाली उठावा अपन टेलीफोन 4028085 पर हमने के टेलीफोन करिया और अपन पसंदीदा गीत के तो मांग करे सकबत है। चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा किशोर किमिया के हाई गीत के साथ और चाचा चाची के किस्सा कौन दिन चाचा बोले चाची के हाई कौन ची उठा के अन दे लग तू तो चाचा चाची बोले कौन ची होल कौन ची बोला था वो बोले हाई तोरा बोक्से आने के बोले रही हमर खातिन हमर सब बोक्से वा फाट गल बा तो बोक्से तू आन दे ले हवा तो इतना हाई का कुछ कर ले बोले हाँ तो प्रमोशन में रहल 12 उठा के आन देली हाई चली ना एक बरिस पूरा चल जाए बोले हाय तो ठीक है पर बोक्से तू आन देले हवा इतना एक गो रंग के 12 के करेला ऐसे तो बोले हाँ प्रमोशन में रहल हो तो प्रमोशन में किन देली

उन्हें हाइट सब तो ठीक आ कोई देखी तो कौन सी बोली हाई आदमी बॉक्सिया सांस ही नहीं कराता बोले के देखी तोरा बॉक्सिया में तो हम ही हाई तोरा देखे खातिर को और कौन देखा था तोरा बॉक्सिया में बोला था

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
0: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 11 बजे चलिए अभी तक 9:16 हो गल बा और ही मजेदार आज के गमट को चला गमट तो शुरू हो गल बा और हईजा पर गीता जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन गीता बा इनवल फ्रांस से साथ देवत हवन और उनका पूरा परिवार सब परिवार संगे हवन बेटा शिवाजी पतो हवन श्वेता बाई बेटी हवन सुधा बाई दूगो प्यारी नातिन बिजबी बाई दिया बाई और ही छोटा सन मल्हार और ही संगे संगे आज तक उनकर आजी खातिन आजी लागन खातिन चलाओ अब जाएगो बढ़िया गीत मौसी जी खातिन तो मैं सेता के हवन तो चला मौसी जी तोरा बहुत बहुत प्रणाम और आज के कार्यक्रम में बस हई गीत जो है राधा के शोभेला हई गीत तो बहुत खुशी अवस सुने के तो जरूर हई गीत चलाओ अब जा तो हर खातिर तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और खुशियाली के संगे का बोलब रात के सोते सोते सुतले सुतले चाची एक कुछ चचा के हाथ मार के उठैलक अरे चचा के बोले हाय सुना ना हमनी के एगो सवाल आवता मन में बोले अभी रात के 2 बजे के सवाल आवता तोहर मन में बोले एगो सवाल है ये हा कि एक के बार में मरे के अच्छा हा कि तड़प तड़प के मरे के बोले नहीं तड़प तड़प के मरे के अच्छा नहीं है एक के बार में मरे के अच्छा हा तो बोला हाँ रख दो दूसर गोड़वा हमरी पे एक एगो गोड़ मार के हमनी के एगो तड़प तड़प के मारे पे मजबूर कर दे हुआ रख दा दूसर गोड़ हमर पेट पे तो मर जाब निमन से
2: राधा के शोभेला

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रख रहे हैं एजाबर अब्बा भाई अबू हमनी के संगे जुड़गल हवन वाकवा बगल से और उनकर बेगम हवन आफेज साथ देवत हवन असलम आया जायान जही

रईस, खाला छोटी आपी और उनकर पत्नी और उनकर सब परिवार संगे आज के कार्यक्रम में वो भाग लेवत हवन। और धोती पोथी बगड़ी विक्रम कोलाचन के आवाज में रखल हई गीत, चाचा के बहुत भाई अबू के बहुत खुशी रहेलन हई गीत सुने के। तो चलो हई गीत चलावब जा तोहर खातिन, और चाचा के का बोलब जा जब देखा तब ऐसा ऐसा बतवा बोल देवेला, हमार चाची के दिल दुखा देवेला हो।

जितना दुख आल बा सब दुख में तू हमनी के संगे खड़ा हुआ हमनी के साथ दे देले हुआ। तो चाची तो ऐसे शर्मा के ओकर गाल तो ऐसे लाल हो गल, बोले इतना बरिस के बाद चाचा ओकर बढ़ावा करता इतना। और थोड़ा देर के बाद चाचा बोले हाँ बुझाता जैसे जब से शादी कर ले हैं तू दुख में साथ तो देवत हवा पर ऐसा बुझाता जैसे तू ही पनौती हवा।

0: भोजपुरी तड़का
1: नौ बजकर 34 मिनट हो गए। देखला हाली समय कैसे बीतता। और जब समय अच्छा रहेला ना तो बहुत हाली जाला। चलो मजेदार कार्यक्रम संगीत तू हमनी के साथ देवत हवा इतना प्यार से। और का चाहिला हो, हंसते रह मुस्कुराते रह, जिंदगी बहुत जोली है। और हैजा पर हमनी के प्यारी मानती जी हमनी के संगे जुड़ गल हवा नोएल फॉन्स बगल से, उनकर बहिन लोग आनंदी आरती और उनकर कुजिन चिंता। चलो आज उनकर प्यारी पतो उर्वशी के जन्मदिन है। और जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देवत हवन उनकर ससुर जी आनंद और पुपू सास मानती की ओर से, और खास कर उनकर पति उनकर बुढ़ा हवन निवेश। साथ हवन रानीश, अनुषा, मितिशा, गिरीशा, हितांशु, दूगो प्यारा बेटा भव्य और पुष्कल। तो चला हमारा टीम बगल से तोहरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई उर्वशी, जन्मदिन खुशियाली के संगे मनैया। और हमेशा जीवन में बस सदा सुखी रहिया, और हमेशा स्वस्थ रहिया। तो चला आज के कार्यक्रम के संगे संगे हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब सा। और चाची चाचा के बोले कौन दिन आहो सुना था हो, काल हरदी में गल रली तो हाउ गोरा छोकरी के तू देखले रल, उज्जर छोकरी के। तो चाचा बोले के जे लाल साड़ी पहले रहल, बोले नहीं हो कर सामने जोन ठड़ा रहल। तो चाचा बोले हाँ कौन जोन करिया साड़ी और ऐसन ऐसन पिट्ठी उघार के जोन चोली पहने रहल, बोले नहीं हो कर बगल में खड़ा रहलन उ पोताप से रील बनावत रहलन, सब कोई के फोटो निकालत रहलन। बोले हाँ देखले रहली ओकर हौजन पियर का सड़िया पहनले रहलन, बड़ा बड़ा कान में झुमका रहलन और हाथ में लाल पीला रंग के उ कंगन डले रहलन, और कितना जोली से सब कोई के फोटो निकालत रहलन, हमरो भी फोटो निकलन और उ तो एक्ट्रेस नियर लगल रहलन। बोले हाँ आउरी बोलता आउरी बोलता, बोले हाँ अगर चोली में ऐसा जोली जोली फूल के डिजाइन रहल हम देखले रहली, बहुत अच्छा लगत रहलन। बोले हाँ बुढ़ा हमने के बोला था काल कौन कुलिया के साड़ी हम पहनले रहली। चाचा बोले अरे ता हरियर

पन ले रहा ना नहीं नहीं नहीं हाउ हाउ बिलू बिलू कुलियर के पहन ले रलन बोले नहीं नहीं अजी आओ बोले हाँ दूसर छोकरी लोग कौन कान में जानो दिल ले हवन कौन कलिते के साड़ी पहन ले कौन कलिते के चोली पहन ले हवा हाई सब तू देखा था हाँ हमार साड़ी तो रह याद नहीं बा कौन कलर के साड़ी हम पहन ले रली देखा चचा लोग जितना कोई सुनत हवन याद रखिए तोहर बुढ़िया कौन कुलिया के साड़ी पहनता

भगवान बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद सब कोई के बस ऐसे ने जुड़ल रही है और छोटी हमनी के संगे जुड़ गल हवन पूर्ण लाओ जी से और पूर्ण लाओ जी से वो हमर खाती नेगो हमनी के बोले बिजमावती संपत के आवाज में रखल है गीत वात तू तनी चला दम मांग के सिंदूरवा बहुत जोली लगेला ओकरा है गीत और है गीत दीदी ललिता खातिन भाई आत्माराम हरीश भैया खातिन जेबो बासे से हमेशा हमनी के साथ देवेलन और सुभाष बोलक का थो बोन से हमनी के साथ देते रहेलन और चला हईजा पर सुदेवी जी वाकवा से हमनी के हमेशा बहुत प्यार से साथ देवेलन और हमेशा मिसाज विदा करेलन बहुत बहुत धन्यवाद सुदेवी जी तो हर मिसाज हमेशा हर घड़ी हमनी के पहुंच जाला त चला है ये गीत करब जा दीदी ललिता खातिन कुशल परिवार से हवन त्रियोले से और आत्माराम भैया खातिन दीदी सुनीता शोभा देवी ना मालेंगा के हवन राम रतन राम गुलाम और कुआरू परिवार और बोलत हवन की कोनो भी गीत हमर खातिन प्यार से चला दे जरूर हो काहे न यार बहुत बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे तू साथ देवत हवा है ये बहुत बड़का बात है और चाची के का बोलब चाची के कौन दिन एगो टेलीफोन चला और उ त फूट फूट के रोवे के शुरू कर दे लगता चाचा बोले कौन ची होल बोले हाँ हमर माँ टेलीफोन कले रलन त बोले हाँ कौन ची होल कौन ची बोलन बोले हमर माँ हमनी के बोले तू त काम चोर हवा कोढ़िया हवा बोले के रहल तोहर माँ रहल कि हमर माँ रहल बोले नहीं हमर माँ रहल हमर माँ हमनी के बोल देलक हम कोड़िया हैं हम काम चोर हैं कुछो काम नहीं करीला बोले कैसे बोल देलक तोरा काम चोर हो ऐसे कैसे तोरा बोल देलक तू तो एक काम बोलब तो तू तो तीन चार गो काम निमन से संगे संगे करेला अब देखा हम तोरा एगो निमन उदाहरण देला तोरा जब बोलब जाके चाय बना के आनब चाय बना के आन तो पहला तो तू मुंह बनेब और फिर तीन चार गो बतवा बनेब तब जाके तोरा मोड़ रही तोरा मन करी तब जाके तू चाय बनावे ला हो रानी काहे तोहर माँ ऐसे बोल देला कि तू कुछो काम नहीं करत हवा

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला तनी हाली हाली बतियाप सा काहे के अभी थोड़ा घड़ी में 10 बजा था और ही जितना कोई रात के काम करत हवन बस मजे से काम करते रहिए हंसते हंसते लोटपोट होते होते काम करते रहिए और ही अगला गीत जन हा चाची ललिता खातिन चलाओ अब जा ललिता जी हमनी के संगे प्यार से जुड़ल हवन त्रियोले से और सब कुशल परिवार संगे जुड़गल हवन अपन बहिन सुदेवी संगे हवन देवीना ज्ञानी सुखलाल मौसी माला राम जियावन भाई आत्मा राम हरीश भैया और दादी प्रभावती और खासकर छोटी खातिन लागी ना ही छूटे राम और हई ये गीत करब जा गायत्री जी खातिन भी ऊ भी बहुत खुशी रहेलन हई गीत सुने के बेटा आ जाए मामी कल्याणी मोहन और उनकर भौजी हवन शकुंतला मोताइलोंग से और साथ देवत हवन उनकर खास सखी गीता बार ये गीत करब जा श्यामा जी खातिन श्यामा रघुनंदन ऊ भी बहुत खुशी रहेलन लागी ना ही छूटे राम हई गीत सुने के तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और विजय बंधन भी हाई गीत के बहुत खुशी रहे तो चला लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में रखल हाई गीत सुनब जा

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला बिना कार्त के बंतार करे के बहुत लोग बहुत खुशी हवन भैया पर पंडित राज वर्मा जी हमनी के संगे जुड़ गेल हवन अभिमन्यु हरिपाल के आवाज में रखल है गीत उ बहुत खुशी रहे रन सुने के और है गीत खास कर उनकर खातिर जे बहुत बंतार करे लन स और बीस में घूमे खुशी रहे लन स चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा

गौरी का बोलब जा बढ़िया बढ़िया चाचा जी हमनी के कौन दिन बहुत ज्ञान के बाद झाड़े लंसा चाचा जी औरी चाचा जी हमनी के बोले जाना था वह 50 बरिस के बाद 50 बरिस के बाद तोहर बार कारा रही करिया करिया बिल्कुल करिया ओकर एगो राज के बात तोर अब बतावत है हम बोलनी हाँ चाचा सब कोई खुशी रही सुने के बोलो ना कैसे कैसे है बरवा कारा कैसे रहेला काला औरी कैसे 50 बरिस के बाद काला कैसे रही बोले हाँ देखा रोज फजीरे उठ के तू आधा घंटा चलिए पैदल चले के औरी रोज 20 मिनट अपन कपार पे ठड़ा रहे के शीर्षासन करे के योगासन करे के आधा घंटा योगासन करिए औरी संगे संगे जानत हवा हाउ हरियर सब्जी खाए के भा भाजी बहुत नीमन से पका के खाए के फल खाए के और ताजा ताजा सब्जी खाए के औरी हर 15 दिन पे हाँ चाचा 15 दिन पे कौन चीज 15 दिन पे नहीं भूलैया कौन सी करे के चाहिला चाचा बोला 15 दिन के बाद अपन कलर कर लिया अपन कपार पे तनी डाई लगा लिया तो हर बार हमेशा करिया रही का हो चाचा इतना मेहनत करके जे कलर ही करे के रहल तो इतना मेहनत के करी

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
3: घड़ी मिला ले जा अभी रात के 10:12 और ही रेडियो मनोरंजन और रेडियो मनोरंजन के जितना कोई श्रोता लोगन हमनी के साथ दिवत हवन एक बार फिर से आप सब कोई के स्वागत करा था माइक पर। आप सब कोई के साथ दिवत हवन रत्ना प्यार से साथ देते रहिए जा रात के 11 बजे ले मजेदार कार्यक्रम और ही बढ़िया बढ़िया गीत जे तू हमनी खातिर ढूंढ ढूंढ के अनले हवा और हम कोशिश करत हई तोहर खातिर चलावे खे तरह तोहर खातिर एगो बढ़िया। और ही कबो कबो ऐसा हो जाला कि हमर परिवार में कबो एगो एगो लानिवेसिया रही, एगो जन्मदिन के अवसर रही, एगो शादी रही और तू खुशी करे खोजत हवा तोहर परिवार लोग के तो जरूर हमने के कार्यक्रम में भाग लिया 4028085 और अपन परिवार के नाम अपन परिवार खातिर एगो बढ़िया गीत के मांग करब बहुत खुशहाली हो जाई हो जाला। और ही चला अगला गीत आज के कार्यक्रम के जारी रखब जा और हईजा पर हमने के चाची शांता सुका ही साथ देवत हवन से या मिल फॉरेस्ट साइड से और उनकर पतो हवन किरण बेटा सुदेश अशोक हाविन सुज

0: जीत और संगे हवन उनकर नाती भावेश और नातीन संजना औरी अशोक भैया के जन्मदिन रहल 8 तारीख पे ता चला अशोक भैया तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलब जा और साथ ही साथ चाची शांता सुकागी हमनी के बोले उनकर भगीना संजय और चन के जन्मदिन रहल 60 बरिस के होगल चला 60 बरिस के तू होगल हवा और बहुत खुशियाली के मौका बा त हमर टीम देने से तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई बस हमेशा खुश रहिए अपन परिवार के प्यार उनकर कैसे बोलब जा उनकर साथ हमेशा तोरा मिलते रही और हमेशा तू खुशियाली के साथ अपन जीवन लेके जाइब ऐसे ने आशा करब जा और ही हंसते मुस्कुराते हम भी तोरा हंसावे के हैजा पर पूरा कोशिश करत है और हमर चाचा और चाची के तो का बोलब जब देखा तब झगड़ा करते रहेला झगड़ा काटते रहेला और ही कौन दिन चाचा खीस में आके चाचा चाची से बोले चुप हो जाइया चाची भी खीस में आके बोले हम काहे चुप हो अब तू चुप हो और जे तू चुप नहीं होइब त हम भाई घर छोड़ के चल जाब हमर त जीवन तू हमनी के नरक बना देले हो हम त खुशियाली है हमर जीवन में कोनो खुशियाली नहीं बा हम त बहुत बहुत रंज हो गल है तोहर से घर छोड़ के चल जा
1: भोजपुरी
0: चाचा बोले खबरदार ऐसन गुस्सा के माहौल में तू काहे हमनी के ऐसन अच्छा अच्छा सपना दिखावत हो

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम में और ये को जन्मदिन बा और जन्मदिन बा शांति जी के और सभी शांतों की परिवार की ओर से शांति जी तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बहुत बधाई और खास कर तोहर संगतिया हवन राधा जी जिन वेलफॉन्स से तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बहुत बधाई देवत हवन और संगे हवन गायत्री मामी बेटा अजय और दादी प्रभावती खातिन है अगला गीत चला हंसते मुस्कुराते बस साथ देते रहिए जा औरी खुशियाली के संगे आगे बढ़ब जा चाची कौन दिन नीमन से खाई के पकैलक और जब चाचा के परोस परोसे के रहल तो ओकर अगाड़ी चाची पूछे चाचा के कुछो खैलक तो चाची के खिसिया खिस करे के तनी खेल करे के चाचा बोले कुछो खैलक तो चाची बोले देखो हम फेरा से पूछा था कुछ खैलक तो चाचा बोले देखो हम फेरों से पूछा था कुछ खैलक तो चाची बोले हमार नकल करत हवा हो तो चाचा फेरों से बोले हमार नकल करत हवा हो तो चाची बोले चल तनी शॉपिंग जाब्स तो चाचा बोले नहीं खैले हई

0: भोजपुरी तड़का
1: 10:15 होवता औरी चला है जा पर पीतों से हमनी के संगे जुड़ गल हवन अमृता गणेश और उनकर दूगो नातिन हवन परी और सोनिया बेटा विशन और पतो हवन मीनाक्षी और उनकर सब गणेश परिवार खातिन एक बार फेरों से सुनीता नन को के आवाज में रखल चमेली चमेली के है गीत की मांग करत हवन। और चचा कौन दिन चाची के बोले तू तो नेगाचिव हवा तो चाची तो सुरुए हो गल बोले हाँ हम नेगाचिव हैं तू कैसे हवा तू तो बूढ़ा हवा जिद्दी हवा घमंडी हवा एक नंबर के कोड़िया आदमी हवा कंजूस आदमी हवा कबो हमर कदर नहीं करले हवा हमर परिवार के जब देखा तब तू बुराई करते रहिला जब देखा तब अपन संगतिया संगे घूमते रहिला हमर कबो तू कदर नहीं करले हवा तो चाचा बोले अरे बुढ़िया मुंह बंद कर तोहरा बोला था तोहर कोविड के जोन 3 साल बा ऊ नेगेटिव है तू तो हमनी के इतना बात सुना दिलक तू नारिये के

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला आगे बढ़ब सा औरी 10:20 हो गल बा औरी अगला गीत जन हा फट फटवा पर घुमावब सा तोरा कुणाल बाबूलाल के आवाज में रखल अगला गीत के मांग करत हवन महन जी पालमा से हमनी के साथ देवत हवन और उनकर खास दीदी मान खातिन है ये गीत और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन चचा गमट के कार्यक्रम है तो साथ देते रहिए जा औरी चचा गजोधर के का बोला भो चचा गजोधर कौन दिन गल रहल वाक्से कराए खातिर और इस सांझ ले तो ओकर जो नाक फुला गल हाथ गोड़

में तो प्लास्टर लगा दिलक। हाँ हो प्लाक चलाल तो गजोदर भैया के जो संगतिया हम मनोहर भैया बोले का होल वाक्से के तोरा कोनो कोनो ऐसा साइड इफेक्ट होल बाका बोले नहीं हो हम तो जब वाक्से लगा के आईनी तो तोहर भौजी से हम बोलनी के हाउ जो नर्स रहल वो बहुत जोली रहल तो हमनी के ऐसे पीट पीट दिलक कि हमनी के प्लाक दर पड़ल डाले

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:26 और सब कोई हंसता हाईजा पर हमनी के

जावेद से पत्नी रेखा चंदनी बिंदु कुमारी और उनकर तीन को बहिन संगे संगे हवन उनकर सब कोई संगतिया जितना परिवार संगे हवन सब कोई खातिन चलाओ अब जा। अगला गीत है एक बार फिर उसे सुनीता नन्कू के आवाज में रखल और हाय जोन गीत है बहुत मजेदार गीत है और चिरई बोले चुक चुक हाय जोन गीत हवन चला हाय गीत जितना कोई हमनी के साथ देवत हवन बहुत प्यार से और साथ देते रहिए जहाजा पर हमनी के विश्वानी जी साथ देवत हवन विश्वानी जी है गीत के मांग कर ले हवन उनकर बहिन इंदिरा शारदा सहेली हवन नीला और प्रतिभा साथ देवत हवन शोभा और गीता के जादर और चचा गजोदर चाची के बोले हाँ रामायण देख ले हो रामायण सुन ले हो रामायण में एको पात्र रहल बाली जाने ल न हाँ बोले हाँ काहे बोलत हवा बोले नहीं बाली के एगो वरदान मिलल रहल कि जैसे कोई ओकर सामने ओकर अगाड़ी खड़ा हो जाए तो ओकर जितना शक्ति रही बाली के शरीर में चल जाए बोले हाँ तो हमनी के काहे बतावत हवा बोले नहीं हमनी के भी जानत हव ऐसने बुझाता बोले कौन से बुझाता बोले जैसे तू हमर सामने चलावेला ना हमनी के हमर हम हमनी के कपार घूमे लगेला बोले तो काहे बोले हमनी के भी लगता जैसे तू हमर सब जितना शक्ति हवन हमर शरीर में वो सब खींच लेवेला बोले कोनो काम नहीं हा तोहर शक्ति हम खींचब हमने के चाहिला तोहर शक्ति

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखत है। अगला गीत जन है सुना नयन के आवाज में रखल और है गीत करब जा साजिद जी खातिर ना रोज हिल से साथ देवत हवन और दीना सरोवर उनकर खास दोस्त खातिर है ये गीत दुनिया गोलबा। और चला है जा पर बेलगोज से हमनी के संगीत जुड़ गल हवन प्रभा दसोई और साथ हवन उनकर जितना लालुई मंदिर के सब सदस्य खातिर अगला गीत की मांग करत हवन और काल सब कोई साथ मिलके कांजी मनयन जा। तो चला बहुत बहुत शुभकामना देवत हैं तोरा और हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। और सुना नोयन के हाई गीत के संगे संगे चचा और चाची के किस्सा कैसे बोलब। चाची हमनी के बोले चाची चचा के सुनावत रहलन कि पड़ोसन गुजर गल तो चचा बोले हाय कैसे गुजर गल तो चाची बोले हाँ दाल के भाव तनी जस्ती बढ़ गल बा ना दाल महंगा हो गल बा हवे से मर गल तो चचा बोले पगला गल हवा का दलवा के भाव तनी लाहो चल जाए ता कोई आदमी मरेला। बोले हम झूठ नहीं बोला था दोक्तिया के हाइजन सर्टिफिका मिलल रहल ओकरा डेथ सर्टिफिकेट हवे में लिखल रहल। बोले का लिखल रहल बोले हम अपन आँख से देखले रही। बोले का देखले रहल बोले डेथ ड्यू टू हाई पल्स रेट हवे से गुजर गल। बोले बुढ़बक अंग्रेजी नहीं आवेला सलमा हाई हाई सब बतवा कहाँ से तू कपार में ढुकावेले। बोले पल्स रेट यानी ओकर धड़कन बढ़ गल हवे से वो गुजर गल का हो।

चचा का जोदर के भी हमेशा पोल खुल जाला औरी चारों बगल दुनिया दुनिया गोलवे बात चला आगे बढ़ अब सब बहुत मजेदार गीत के कार्यक्रम आगे बढ़ा हुआ था अभी 10:40 हो गल बा औरी रतन हमनी के संगे जुड़ गल हवन खो बे बगल से रतन भैया खातिन औरी हवन करुणा जी उनकर पत्नी और उनकर सब परिवार खातिन चला हुआ अब

ठंडा के मौसम में गर्मा गर्म दाल औरी ऐसा खाई के आहा पेट भर जाला। बहुत बहुत मजेदार गीत के संगे चला आगे बढ़त है विनोद सिद्धत के आवाज में रखा लगला गीत। कौन चिले के आल हवा कौन चिले के जाएगा भाई गीत भाई आत्माराम की ओर से चलावत है। बेलिया से उसाद देवत हवन उनकर चार गो बहिन दादी प्रभावती संगे हवन दीदी छोटी दीदी ललिता और सुदेवी खातिन और विष्णु परिवार जे बेलिया से हमनी के संगे

बहुत बढ़िया गीत और स्वर्गीय विनोद सिद्धत की आवाज में रखल हई गीत और एकर संगे चला आगे बढ़ब सर संतोष महादेव की आवाज में रखल अगला गीत और हई जोन गीत है मरमिट में चढ़ल बा गरम पानी। हई गीत के मांग करत हमार अनिता जी फ्लिक ऑन फ्लाक से बहुत है मजेदार गीत और चला थोड़ा घड़ी रह गल बा 11 बजे के तो हाली से चलाओ अब जा हई अगला गीत।

कहूँ मरमिट में गरम पानी चढ़ल बा तो कहूँ चटनी बनावता कोई और हैजा पर अवेदानंद बीजन के आवाज में रखा लगला गीत के मांग करत हवन उमा जी फूजू साक से और है गीत जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन जितना सुनत हवन श्रोता लोगन सब कोई खातिन चलो सेंशुलिया विलास से नीता खेदनी जी भी हमनी के संगीत जुट गल हवन वैसे चाची नीता तू एगो गीत के मांग कर ले हवन तो कोशिश करब जा अगला कार्यक्रम में है तोहर पसंद के गीत चलावे खातिन काहे के अभी समय बहुत कमती रह गल बा और तोहर खेदनी परिवार खातिन हये गीत करब जा श्यामा रघुनंदन जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन गांव गोब से उनकर सब रघुनंदन परिवार के साथ।

0: चला इसी के साथ आज के कार्यक्रम के हिजा पर समाप्त करेंगे। समय हो गलबाज शो भाजी का खुबोन से हमनी के साथ है दिव्य धवन और उनकर प्यारी नातिन वर्षा के जन्मदिन है। उनकर मामा, उनकर पापा प्रदीप और बहिन नेहा के ओर से बहुत बहुत प्यार वर्षा के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई वर्षा तोहरा, और बस खुश रहिए। और आज के है आखिरी गीत तोहर खातिन कर अब जा हैप्पी बर्थडे एक बार फिर उसे हमार टीम देने से। जितना कोई आज जन्मदिन बना हुआ था उन सब कोई खातिन हमार टीम देने से हैप्पी बर्थडे बोल अब जा। और फिर उसे आज के कार्यक्रम के बस हाइजा पर समाप्त करे के समय हो गल बा।
1: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
0: चला इसी के साथ जाए के बेरा होगल बा। आप सब कोई अपन ख्याल रखिया और आवत सामदी के फेरों से भेट आप सा हाइजे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर रात के 9 बजे से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, जहां पर बढ़िया बढ़िया गीत बढ़िया बढ़िया चुटकुला सुनाओ अब जा आप सब कोई के मनोरंजन करे खाते। चला इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि, नमस्कार।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। प्रणाम श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल हैं और हमारा इंतजार कर रहे थे क्योंकि यह है सुनहरे पल कार्यक्रम। तो आइए देर न करते हुए आज एक ऐसे महान कलाकार के बारे में हम बात करेंगे। वैसे वे एक निर्माता, निर्देशक, फिल्म मेकर जैसे कहते हैं, फिल्म बनाने वाले इंडियन सिनेमा में मशहूर आप रहे प्रसिद्ध लेखक नाजिर हुसैन। नाम तो सुना ही होगा आपने, तो साथ निभाते रहिएगा। उनके जीवन, उनके फिल्मों के बारे में आपको और भी बताते चलेंगे।

जी हाँ, जैसे कि हमने कहा, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक नासिर हुसैन का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने बॉलीवुड को सिर्फ सफल फिल्में नहीं दी, बल्कि एक नई सोच, नई कहानियों और मनोरंजन का एक अलग अंदाज भी दिया। उनका जन्म 16 नवंबर 1926 को भोपाल में हुआ था और उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत एक लेखक के रूप में की थी। बाद में वे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बने और हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्मकारों में शुमार हुए।

नासिर हुसैन को अक्सर म्यूजिकल एंटरटेनर सिनेमा का बादशाह कहा जाता है। उनकी फिल्मों में रोमांस, दोस्ती, परिवार, संगीत, हास्य और रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। उन्होंने 1957 में फिल्म तुम सा नहीं देखा से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म ने शम्मी कपूर के करियर को एक नई पहचान दी और नासिर हुसैन को एक प्रतिभाशाली डायरेक्टर के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद दिल दिखे देखो, जब प्यार किसी से होता है और फिर वही दिल लाया हूँ जैसे सफल फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

नाज़िर हुसैन की फिल्मों की एक विशेष पहचान उनका मधुर संगीत था। उन्होंने कई बार प्रसिद्ध संगीतकार आरडी बर्मन के साथ काम किया और दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड को अनेक अमर गीत दिए। तीसरी मंजिल, कारवान, हम किसी से कम नहीं के गीत आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसते हैं। साल 1973 में आई उनकी फिल्म यादों की बारात को हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक माना जाता है। कई फिल्म विश्लेषक इसे पहली सफल मसाला फिल्म मानते हैं जिसने एक्शन, रोमांस, ड्रामा और म्यूजिक को एक साथ जोड़कर एक नई परंपरा शुरू की। इस फिल्म के साथ और कहानी ने दर्शकों को दीवाना बना दिया और ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में अमर हो गई।

नाज़िर हुसैन की एक और बड़ी उपलब्धि थी नए कलाकारों को मौका देना। उन्होंने अपने परिवार और फिल्म जगत के कई युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने बेटे मंसूर खान के साथ मिलकर कयामत से कयामत तक और जो जीता वही सिकंदर जैसे यादगार फिल्मों का निर्माण किया। इन फिल्मों ने 1980s और 1990s के दशक में रोमांटिक सिनेमा को एक नई दिशा दी और आमिर खान को भी सुपरस्टार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

0: गाइए ना।
1: दिल की उमंग है जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

0: करेंगे ना एक बार और।
1: दिल की उमंग है जवान, रंग में डूबा है समा।

पुरस्कार की बात करें तो नाजिर हुसैन को उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। कयामत से कयामत तक के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला। जो जीता वही सिकंदर को भी बेस्ट फिल्म का फिल्मफेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। साथ ही उन्हें स्पेशल फिल्म अवार्ड और बाद में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी नवाजा गया।

नाजिर हुसैन की सबसे बड़ी विरासत उनकी फिल्मों का सदाबहार मनोरंजन है। उनकी फिल्मों में गीत, संगीत, प्यार, जज्बात और जीवन की रंगीन तस्वीर नजर आती है। आज भी जब बॉलीवुड के सुनहरे दौर की बात होती है तो नाजिर हुसैन का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। उन्होंने हिंदी सिनेमा को सिर्फ हिट फिल्में ही नहीं दी बल्कि एक ऐसी फिल्मी परंपरा दी जो आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। 13 मार्च 2002 को मुंबई में उनका देहांत हुआ, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गीत और उनकी रचनात्मक सोच उन्हें सदा अमर बनाए रखेगी। हिंदी सिनेमा के इस महान शिल्पकार को हम हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करेंगे। प्रणाम, शुभ रात्रि।

सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। बियनवेनिडा अ मेक्सिको, वेलकम टू मेक्सिको। 2026 वर्ल्ड कप चल पड़ा रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी लेजेंडरी आस्तेका स्टेडियम में। मेक्सिको सिटी में चमक दमक और स्टार परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस मेक्सिको की फुटबॉल टीम की ओर से भी रही। ओपनिंग मैच में 2-0 की जीत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। अपने 80,000 प्लस फैंस को निराश नहीं किया टीम मेक्सिको ने। फर्स्ट हाफ में जुलियान क्विनोनिस का गोल, फिर सेकंड हाफ में राउल यिमेनेज का गोल। वर्ल्ड कप फाइनल्स में ये इसका पहला गोल है। इस मैच में 3 रेड कार्ड्स भी दिए गए, 2 साउथ अफ्रीका के लिए, 1 मेक्सिको के नाम। ब्राजील से रेफरी विल्टन सम्पायो पूरी शक्ति के साथ मैच ऑफिशिएट कर पाया, अपना काम किया। एक ही मैच में 3 रेड कार्ड, जबकि पिछले वर्ल्ड कप में कतर 2022 में टोटल 4 रेड कार्ड दिए गए थे। मतलब

साल रेफरी से बचना होगा खिलाड़ियों को। राउल यिमेनेज अपनी टीम का हीरो बना, ये वही खिलाड़ी है जो 2020 में फुटबॉल मैदान में मर जाता फ्रैक्चर्ड स्कल के साथ। वुल्व्स का स्ट्राइकर वापस आया है, 6 साल बाद हीरो बना। इमोशनल घड़ी यिमेनेज के लिए जो अपनी आंसू नहीं रोक पाया। परफेक्ट स्टार्ट मेक्सिको के लिए जो अपने वर्ल्ड कप में बहुत दूर जाना चाहता है। आज 6 बजे से दूसरा मैच शुरू हुआ है साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच। अभी फर्स्ट हाफ पूरा हुआ है, स्कोर 0-0। आपको थोड़ी देर बाद पूरा मैच यानी फुल रिजल्ट देंगे। आज ग्रुप बी की बारी है, होस्ट कंट्री कनाडा वर्सेस बोस्निया हर्जेगोविना, मॉरिशन टाइम 11 बजे, किक ऑफ ये लाइव होगा एमबीसी टीवी पर। ग्रुप बी का दूसरा मैच कतर स्विट्जरलैंड ये कल रात 11 बजे, और ब्राजील की एंट्री होगी संडे सुबह 2 बजे मोरक्को के खिलाफ। ये मैच भी एमबीसी टीवी पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। ग्रुप स्टेज के 17 मैच एमबीसी टीवी पर लाइव दिखाए जाएंगे, और एमबीसी ऐप डाउनलोड करने पर और पेमेंट करने पर सभी मैच देख पाएंगे। इसके लिए एमबीसी में खास डेस्क है, फोन के द्वारा भी आप अपने मोबाइल लैपटॉप या टीवी पर सभी मैच देख पाएंगे एमबीसी ऐप के साथ। वर्ल्ड कप एक तरफ, ट्रांसफर बाजार में भी कारोबार होने लगा है। द स्पेशल वन योजे मोरिनो ऑफिशियली औपचारिक रूप से रियल मैड्रिड का मैनेजर बन गया है। 3 ईयर कंट्रैक्ट उसको वापस लाने के लिए रियल मैड्रिड को बेनफिका को 13 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग कॉम्पेंसेशन देने पड़े। 2010 में वो आया था योजे मोरिनो रियल मैड्रिड में, ला लीगा टाइटल, कोपा डेल रे और स्पैनिश सुपर कप जीत पाया। अब उसे लाया गया है रियल मैड्रिड में चैंपियंस लीग ट्रॉफी वापस लाने के लिए। सोमाली का रेफरी ओमा आर्टन, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स में एंट्री नहीं मिली थी और जो वर्ल्ड कप में ऑफिशिएट नहीं कर पाएगा, यूईएफए सुपर लीग का रेफरी नॉमिनेट किया गया है। ये होगा पेरिस सेंट जर्मेन और एस्टन विला के बीच। यूईएफए ने ये फैसला लिया क्योंकि ओमा आर्टन एक बहुत ही काबिल रेफरी है, अफ्रीका का लीडिंग रेफरी। पहली बार होगा कि अफ्रीका से एक रेफरी यूईएफए सुपर कप का रेफरी होगा। नॉटिंगहम फॉरेस्ट का स्टार इंटरनेशनल खिलाड़ी एलियट एंडरसन के लिए मैनचेस्टर सिटी ने इस बार 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा, पर इससे भी ठुकरा दिया गया, रिजेक्टेड आउटराइट। एंडरसन इंग्लैंड की टीम के साथ वर्ल्ड कप में खेलने गया है, पर सिटी और नॉटिंगहम फॉरेस्ट के बीच इंटेंस मालामाल डील हो रही है। 4 साल पहले एंडरसन लीग 2 में था ब्रिस्टल सिटी में, अब इंग्लैंड का सबसे कीमती खिलाड़ी बनने जा रहा है। मैनचेस्टर सिटी के अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड भी एंडरसन पर फिदा है, पर जितने पैसे नॉटिंगहम फॉरेस्ट मांग रहा है, यूनाइटेड रेस से हटने लगा है। न्यूकासल यूनाइटेड स्पेन के विक्टो मुनोज को साइन करना चाहता है। मुनोज ओसासुना का खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड की नजर न्यूकासल यूनाइटेड के डिफेंडर लेविस हॉल पर है, लेविस हॉल जाना चाहता है। फिर बेर्नार्डो सिल्वा के लिए एल क्लासिको रियल मैड्रिड और बार्सिलोना दोनों उसे साइन करने के रेस में है। और एथलेटिक्स में यूएसए का याकोबे टॉप 110 मीटर हर्डल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर गया। अमेरिकन कॉलेज चैंपियनशिप में ये नया रिकॉर्ड बना, 12 सेकंड्स 75, पहले रिकॉर्ड 12 सेकंड्स 80 था जो 2012 में एरिस मेरिट के नाम था। क्रिकेट, बांग्लादेश ने इतिहास रचा, ऑस्ट्रेलिया को दूसरे ओडीआई में हराकर पहली बार के लिए सीरीज अपने नाम किया। इधर अफगानिस्तान ए ने इंडिया ए को हराया, और वीमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से इंग्लैंड में शुरू हो रहा है। इनॉग्रल मैच आज इंग्लैंड श्रीलंका के बीच। 2 ग्रुप है, ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, नेदरलैंड्स, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। ग्रुप बी में इंग्लैंड, श्रीलंका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज। टीम इंडिया का पहला मैच संडे को होगा पाकिस्तान के खिलाफ। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, वर्ल्ड कप 2026 शुरू हुआ और पहले ही मैच में मेक्सिको ने 2-0 से साउथ अफ्रीका को हराया, और अभी इसी समय मैच खेला जा रहा है दक्षिण कोरिया और चेक रिपब्लिक के बीच। फर्स्ट हाफ में स्कोर 0

0: जीरो था। सेकंड हाफ में गोल बनेंगे तो आपको बताएंगे जरूर। हमारा साथ दीजिएगा RN2 पर 7:30 बजे, वहां पर स्पोर्ट्स बुलेटिन लेकर आएंगे और वर्ल्ड कप स्पेशल ये होगा 8:30 बजे RN2 पर ही। नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।